मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। आज सोमवार है, राष्ट्रीय शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुद्दुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा

0: है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देशभक्ति हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी, सम्मान और समर्पण का भाव सिखाती है। देशभक्ति ही वह भावना है जो हमें एकता में बांधती है, कठिन समय में राष्ट्र के प्रति खड़े होने की प्रेरणा देती है और समाज को मजबूत बनाती है। इससे ही एक सुरक्षित, विकसित और गौरवशाली देश का निर्माण होता है।

भक्त की शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि उसके भीतर बसे अटूट विश्वास, समर्पण और प्रेम में होती है। एक सच्चा भक्त साधारण दिखाई दे सकता है, पर उसके अंदर ऐसी अद्भुत आंतरिक शक्ति होती है जो उसे हर कठिनाई से लड़ने और जीवन के हर संघर्ष को पार करने की क्षमता देती है।

एक सच्चा भक्त अपने जीवन की हर क्रिया को ईश्वर को अर्पित कर देता है। वह अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता, बल्कि केवल अपना कर्तव्य निभाता है। यह समर्पण उसे मानसिक शांति देता है, क्योंकि वह परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाता है। जब मन में कोई बोझ नहीं होता, तब व्यक्ति अधिक स्पष्ट और संतुलित तरीके से सोच सकता है।

भक्त के भीतर प्रेम की अपार शक्ति होती है। यह प्रेम केवल ईश्वर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी जीवों तक फैलता है। सच्चा भक्त हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखता है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। उसके हृदय में दया, करुणा और सहानुभूति का भाव होता है। यही प्रेम उसे दूसरों से अलग बनाता है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।

भक्त की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, इसमें अनेक परीक्षाएं आती है, लेकिन सच्चा भक्त इन परीक्षाओं से घबराता नहीं बल्कि धैर्य के साथ उनका सामना करता है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसके विश्वास को और मजबूत करने के लिए है। यह धैर्य ही उसे अंततः सफलता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख गौरव अरोरा का है और वाचन स्वर है मुकाम सिंह चौहान का।
1: हम सब एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, बेहतर समाज, ईमानदार व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण, संवेदनशील लोग और शांत परिवार। हम चाहते हैं कि लोग बदलें, समय बदलें, परिस्थितियां बदलें। लेकिन एक प्रश्न है, क्या कभी हमने सोचा है कि जिस परिवर्तन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या वह किसी नेता से होगी, किसी व्यवस्था से होगी या किसी बड़े आंदोलन से, या वह मुझसे शुरू होगी? हर व्यक्ति कहता है लोग ईमानदार नहीं है, समाज बिगड़ गया है, रिश्तों में सच्चाई नहीं रही, बच्चे बदल गए हैं, समय खराब है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब हर व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है तो स्वयं की बात कौन करेगा? हम सब आईना ढूंढते हैं पर स्वयं दर्पण बनने से बचते हैं। एक मोहल्ले की सड़क हमेशा गंदी रहती थी, लोग रोज शिकायत करते थे नगर पालिका कुछ नहीं करती, लोगों में समझ नहीं है, यह देश कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन वहां रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने सुबह उठकर अपने घर के सामने की सड़क साफ कर दी, लोग हंसे भी। दूसरे दिन एक पड़ोसी भी जुड़ गया, तीसरे दिन तीन लोग और जुड़ गए। कुछ सप्ताह बाद पूरी गली साफ रहने लगी। जो काम शिकायत से नहीं हुआ वह एक झाड़ू से शुरू हुआ। परिवर्तन भीड़ से नहीं, एक व्यक्ति से शुरू होता है। हम बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि दूसरों को बदलना आसान है, स्वयं को बदलना कठिन। दूसरों की गलती दिखती है, अपनी आदतें नहीं। हम चाहते हैं लोग समय पर आएं पर हम देर से निकलते हैं, लोग सच बोलें पर हम सुविधा का झूठ बोलते हैं, लोग सम्मान दें पर हम कटु भाषा बोलते हैं। यही विरोधाभास परिवर्तन को रोक देता है। एक पिता अपने बेटे से कहते थे, अच्छा इंसान बनो, झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो। लेकिन वही पिता घर में क्रोध करते, फोन पर झूठ बोलते और दूसरों की निंदा करते। एक दिन बेटा बोला, पिताजी मैं आपकी बात मानूं या आपका जीवन,

0: पिता मौन हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आया बच्चे कानों से कम आंखों से अधिक सीखते हैं। यदि समाज बदलना है तो घर बदलना होगा, यदि घर बदलना है तो स्वयं बदलना होगा। बोलने का तरीका, सुनने का धैर्य, धन्यवाद कहने की आदत, क्षमा मांगने का साहस, समय देने की संवेदना। परिवर्तन बड़े नारों से नहीं, छोटी आदतों से आता है। एक घर में रोज तनाव रहता था, पति कठोर स्वर में बोलता, पत्नी चुप सहती, बच्चे सहमे रहते। एक दिन पति ने पहली बार कहा धन्यवाद, फिर अगले दिन कहा मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, क्योंकि कभी कभी घर बदलने के लिए दीवार नहीं स्वर बदलना पड़ता है। हम कहते हैं देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या हम छोटे छोटे लाभ के लिए नियम नहीं तोड़ते? हम कहते हैं लोग स्वार्थी हैं, लेकिन क्या हम केवल अपने बारे में सोचते नहीं? हम कहते हैं सम्मान खत्म हो गया, लेकिन क्या हम घरेलू काम करने वाले बुजुर्ग, कर्मचारी, मजदूर सबको बराबर सम्मान देते हैं? समाज हमसे अलग कोई वस्तु नहीं, समाज हम सब हैं। दुनिया बदलने से पहले मन बदलना होगा। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, नफरत, शिकायत, तो बाहर का परिवर्तन क्षणिक होगा। भीतर शांति होगी तो बाहर व्यवहार बदलेगा। आज का युवा पूछता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? उत्तर है बहुत कुछ। एक युवा पेड़ लगा सकता है, एक युवा सत्यनिष्ठ व्यवसाय कर सकता है, एक युवा परिवार बदल सकता है, एक युवा प्रेरणा बन सकता है। इतिहास में अधिकांश परिवर्तन युवाओं ने शुरू किए हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार पीढ़ियां बदल सकता है। अब अपने भीतर से पूछिए, मैं किस परिवर्तन की शिकायत करता हूँ? क्या उसकी शुरुआत मुझसे हो सकती है? क्या मैं वैसा ही जी रहा हूँ जैसा दुनिया से अपेक्षा करता हूँ? आज मैं कौन सी एक आदत बदल सकता हूँ? परिवर्तन के लिए हमेशा क्रांति नहीं चाहिए, कभी कभी केवल चाहिए समय पर पहुंचना, झूठ ना बोलना, कचरा ना फैलाना, धन्यवाद कहना, सुनना, क्षमा मांगना, सही के साथ खड़ा होना। छोटे कदम धीरे धीरे संस्कृति बन जाते हैं। यदि हर व्यक्ति कहे पहले दूसरा बदले, तो कुछ नहीं बदलेगा। यदि एक व्यक्ति कहे शुरुआत मुझसे, तो इतिहास बदल सकता है। दुनिया बदलने का स्वप्न सुंदर है, पर उससे भी सुंदर है स्वयं बदलने का साहस। परिवर्तन बाहर नहीं उतरता, भीतर से उगता है, और उसकी पहली मिट्टी है मैं।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख था गौरव अरोरा का और वाचन स्वर मुकाम सिंह चौहान का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए सुनिए खेती की बातें। इसमें आज आप सुनेंगे बीजोपचार कैसे करें। वाचन स्वर है स्मिता दुबे का।
2: खेती की बात कार्यक्रम में तुम्हारी स्मिता बेन की राम राम स्वीकार करो। आज हम जानेंगा कि बीजोपचार कैसे करा और बीजोपचार को कई महत्व रह गए। भाई बहनों, और जद भी हम बोनी करा हाँ, उका पहले बीज ना के कदी उपचारित करी ला, तो उससे हमारी फसल में अंकुरण भी सही होए और अच्छी से अच्छी पैदावार होए है। बीजोपचार जो है उका करने का कई तरीका है, जिका में पहलो तरीको रासायनिक बीजोपचार। रासायनिक बीजोपचार करना में बीज ना के फफूंदनाशक दवाना से उपचारित करियो जाए है, जिका में जैसे कि कार्बन डाइजाइम और थायरम इन्हीं दवाई ना से भी बीजोपचार करे है। इका में 2-3 ग्राम दवा लेनी और उके प्रति किलो बीज का हिसाब से उनके उक में बीजना में लगाई देनी, फिर बीज के साफ कपड़ा या बर्तन में रखनो, दवा डालनो, अच्छी तरह से मिलाई देनो और ऐसे तरह से मिलानो जिससे कि दवा जो है वह अच्छी तरह से पूरा बीजना पे चढ़ी जाए। और उना बीजना पे जब चढ़ी जाए तो उके एक साफ कपड़ा पे अच्छे से फैलाई के और छायला में सुखाई देनो। ऐसे दूसरो तरीको रहे जैविक बीजोपचार को। जैविक बीजोपचार को मतलब रहे जिका में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव ना रहे उनको उपयोग करीने और बीजोपचार करनो, जैसे कि राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा, इकी भी 5-10 ग्राम प्रति किलो बीज का मान से इकी मात्रा लेनी और उका बादे इके में हल्का पानी या गुड़ का घोल बने के उके बीज पे लगानो, फिर जैविक कल्चर मिलने जो है उपमें भी लगाई के और उके भी छायला में सुखाई देना।

0: इन्हीं तरीका से भी कभी हम बीजोपचार करा तो उका से हमारी फसल भी अच्छे आवे है, हमारी जो बीजना है भी उपचारित रहे तो कोई बीमारी भी नहीं लगे, है नहीं। और एक तरीको यो भी रहे जिका में घरेलू पारंपरिक तरीका जो रहे उका से भी हम बीजोपचार करी सका। हाँ भाई बहनों, नमक पानी या गौमूत्र को उपयोग हम चाहवा तो नमक का पानी में के घोली के और उक में बीजना के अच्छे से उन पे बीजना के निकाली लेने और उका बादे उके भी छायला में सुखाई के या फिर गौमूत्र में भी हम बीज के उपचारित करी सका। हाँ 10-12 घंटा इका में हमारे बीजना के भिगोनो पड़े, या तो वो पान नमक का पानी में भिगो या गौमूत्र में भिगो और उका बादे भी इके भी 10-12 घंटा का बाद जब बीज उपचारित हो जाए तो इके छायला में अच्छा से सुखाई देनो है। भाई बहनों, कभी भी हम बीजोपचार करा तो हमारे कई बात ना ऐसी रहे जिके ध्यान रखनो है, जैसे कि बीजोपचार बोने से बोनी करा उका ठीक पहला करा, ऐसो नहीं कि बीज के उपचारित करीने रखी दिया है नरादन पड़िया है और उका बाद हम बोनी करी रहे। हाँ तो यो खास करके ध्यान रखनो है। फिर उपचार करना का बाद है बीज ना के धूप में नहीं सुखानो है, यो खास कर ख्याल रखनो है। और रासायनिक जैविक जैसे कि अभी अपन ने देखियो कि भी रासायनिक भी बीजोपचार होए जैविक बीजोपचार भी होए, तो कभी भी रासायनिक और जैविक उपचार जो है वो कभी भी साथ में नहीं मिलानो, पहला रसायन और फिर जैविक, ऐसो हम करी सका। हाँ कि भाई कोई भी बीज के उपचारित करना है तो पहले रसायन से उके उपचारित करी ला और उका बाद उके जैविक तरीका से भी हम उपचारित करी सका। हाँ तो भाई बहनों, और कभी ये सोच हम जान चाहा तो बीज उपचार करी ने और हम हमारा खुदे ज हमारी फसल ना का सारू स्वयं बीजोपचार करी सका। हाँ और हमारी फसल के अच्छे से अच्छी पैदावार हम ली सका। हाँ क्या हम खेती की बात में आज इतरोज तुम्हारी स्मिता बहन के दो अनुमति राम राम।
1: ये थी खेती की बातें जिसमें आप सुन रहे थे बीजोपचार कैसे करें, वाचन स्वर था स्मिता दुबे का। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। संगीत नियोजन है सतीश भाटिया का और स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर अनुराधा पौडवाल का था और संगीत नियोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। इसमें आप सुनेंगे विश्व अस्थमा दिवस पर चर्चा, विश्व मिडवाइफ्स डे और विश्व रेड क्रॉस डे पर जानकारी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9 हम आपको सुनवाएंगे मराठी कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। इसमें सुनिएगा वायलिन वादन। कलाकार होंगे रामचंद्र भागवत। इनसे सुनिएगा राग नट भैरव। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 10:05 पर। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय होगा सुबह 10:05 से लेकर 11:00।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 11 बजे हम रिले करेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। भोपाल केंद्र से ही दिन में 12 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। अपनी संध्याकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे शाम 5 बजे से। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम के ठीक 5 बजे। शाम 5:45 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगे गुरमीत सिंह डंग।

शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत लेकर हम आएंगे रात 9:15 पर।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 10 बजे। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे ख्याल गायन। कलाकार होंगे उस्ताद शराफत हुसैन खां। इनसे सुनिएगा राग मलुहा केदार।

0: सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार और 7 दिल्ली केंद्र से ही होंगे हिंदी समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः 8 प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति तथा वैद्युतिकी मतदान यंत्राणां गणना प्रातः 8:30 प्रारप्स्यते। असम राज्ये 26 केरलम राज्ये 44 तमिलनाडु राज्ये 34 आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 30 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले 93 आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य 21 दिनांके भविष्यति। तत्रैव मतगणना च मईमासस्य 24 दिनांके भविष्यति।
2: जनादेश 2026।
3: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टि नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मित बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रह अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45-19 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षा त्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिक क्षमतायाः संगम भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामंत्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मंच रूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 4 पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फौलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना आपको दे दें। आज सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम की अवधि होगी सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। इस कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गीत। तो कॉल करना न भूलिएगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, कृपया नोट कीजिए 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224। STD कोड है इंदौर शहर का 0731। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर कॉल कीजिएगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक और सुनिएगा अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई जो थी सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की राह पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। ग्वालियर में आज होगा दुग्ध उत्पादक सम्मेलन। चार राज्यों और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू। डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी। इंदौर बनेगा वैश्विक कृषि विमर्श का केंद्र। जून में 21 देश होंगे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल। और आईपीएल में कल गुजरात ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 20,000 पशुपालक और दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना है और इसी दिशा में लाभार्थियों को स्वीकृति और प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जबकि ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से होगी और शुरुआती रुझान दोपहर तक आने की उम्मीद है। इन 5 राज्यों में कुल 823 सीटों पर मतगणना होनी है, जिसमें अकेले तमिलनाडु की 234 और पश्चिम बंगाल की 293 सीटें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इंदौर के ग्रैंड शेरटन होटल में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत कृषि कार्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति निर्धारक शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल तैयारियों की समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि
1: ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की माँ अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है। विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा, मेजबानी भी करेगा, जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: हमारे लिए इंदौर का यह गौरवशाली मौका मिला है। कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है, ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है। जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं, ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पन्ना जिले में बन रही मजगाएं और रुंज सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के बाद 86 गांवों के करीब 45,000 किसान परिवारों को सिंचाई का फायदा मिलेगा। परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर के ग्राम निनौद में 2,360 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन किया। करीब 20 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर इंदौर और पीथमपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगा और 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 60% विकसित जमीन वापस देने का ऐलान किया है, ताकि वे भी विकास में भागीदार बन सके। इसके अलावा डॉ. यादव कल जैन समाज के प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य महिला आयोग में नई नियुक्तियां की हैं। रेखा यादव को आयोग का अध्यक्ष और पूर्व विधायक साधना स्थापक को सदस्य बनाया गया है। दोनों का कार्यकाल 3 साल का होगा। रेखा यादव वर्ष 2008 में छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से विधायक रह चुकी हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। बेंगलुरु स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कल विकसित उपग्रह मिशन दृष्टि को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसकी मदद से प्रतिकूल मौसम आपदा के असर, कृषि और सीमा निगरानी से जुड़ी तस्वीरें प्रभावी ढंग से मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिवसीय उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 280 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम स्वदेशी रक्षा तकनीकें प्रदर्शित करेंगी और देशभर से एमएसएमई, स्टार्टअप और सैन्यकर्मी भी शामिल होंगे। दिल्ली की शुभ्रा रंजन आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर को उनके ही पूर्व छात्र और फ्रेंचाइजी पार्टनर प्रियंक शर्मा ने नई ब्रांच दिखाने के बहाने भोपाल बुलाकर बागसेवनिया के एक फ्लैट में बंधक बना लिया और पिस्टल तानकर 1,89,00,000 रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। शोर छुपाने के लिए आरोपियों ने बाहर सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी एम्स के आईसीयू में भर्ती हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 3 अभी भी फरार हैं। मंदसौर जिले के तुरकिया गांव में एक मुंडन कार्यक्रम में दाल बाफले, लड्डू और लस्सी खाने के बाद 79 लोगों को उल्टी, दस्त और घबराहट की शिकायत हो गई। 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा जबकि बाकी का इलाज गांव में ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है और सभी मरीजों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में कल यानी 4 दिन बाद भी 2 और शव बरामद किए गए, जिससे मृतकों की कुल संख्या 13 पहुंच गई है। सुबह 9 साल के मयूरन और 40 साल के कामराज का शव पानी से निकाला गया, जिसमें कामराज की 4 साल की बेटी श्रीतमिल का शव एक दिन पहले ही मिला था। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी को लेकर आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू होगी, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख लोग शामिल होंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2026-27 की पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के मुताबिक हों और ग्रामीण समुदायों को इसका सीधा फायदा मिले। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से मात दी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए थे। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने 57 रन की पारी खेली, जबकि जैसन होल्डर ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से बदले मौसम का असर अगले 4 दिन यानी 7 मई तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी बारिश और भिंड, दतिया, निवाड़ी तथा टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आंधी की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यह मौसम बना हुआ है, जबकि मई में आमतौर पर भीषण गर्मी का दौर रहता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल महू के सुशीला देवी बंसल कॉलेज के प्लेसमेंट प्रोग्राम में पहुंचे और विभिन्न कंपनियों में चयनित युवाओं को प्रमाण पत्र बांटे। 1 से 3 मई तक अवकाश रहने के कारण मासिक राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का आयोजन आज सुबह 10:15 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में किया जाएगा। हेलमेट विशेष अभियान के तहत खंडवा पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले 357 लोगों पर 1,25,900 रूपये का जुर्माना लगाया। बैतूल में हुई आगजनी के बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत एवं शीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में 73वीं शलाका चित्र प्रदर्शनी के तहत भील जनजाति चित्रकार सुनीता भावोर के चित्रों की प्रदर्शनी 30 मई तक देखी जा सकेगी। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मिसरौद और प्रतापनगर में 4.5 लाख लीटर क्षमता की 2 पानी की टंकियों का भूमि पूजन किया। बरगी डैम क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद युवा कांग्रेस ने कल भोपाल में पर्यटन मंत्री के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। उज्जैन में ट्रक से 900 पेटी अवैध बियर और इंदौर में कार से 43 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। दोनों कार्रवाईयों में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगरमालवा में आज आरसीटी के 1 दिवसीय शिविर में पंखा, मोटर रिपेयरिंग और वाइंडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। छिंदवाड़ा की बास्केटबॉल खिलाड़ियों के केंद्रीय विद्यालय वेस्ट जोन प्रतियोगिता जीतने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने खिलाड़ियों का सम्मान किया और नीमच जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि उपार्जन केंद्रों पर नए और अच्छी गुणवत्ता के बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की राह पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव। ग्वालियर में आज होगा दुग्ध उत्पादक सम्मेलन। 4 राज्यों और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू। डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी। इंदौर बनेगा वैश्विक कृषि विमर्श का केंद्र। जून में 21 देश होंगे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल। और आईपीएल में कल गुजरात ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर।

श्रोताओं, मई का महीना हमें तीन महत्वपूर्ण अवसरों की याद दिलाता है। जी हाँ, विश्व अस्थमा दिवस जो हमें सांस से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करता है और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है।

कहा जाता है सांस है तो जीवन है, और जब सांस लेने में ही कठिनाई हो तो जीवन कितना कठिन हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण, धूल और धुआं ने आज अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दे दिया है। इसीलिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। धुआं जब बढ़ता है हवाओं में, मुश्किल हो जाती है सांसों की राहों में। चलो चले इन हवाओं के साथ, गुजारे दो पल इन नजारों के साथ।

सेवा, समर्पण और मानवता की पहचान है रेड क्रॉस। जी हाँ श्रोताओं, जहाँ दर्द हो वहाँ मरहम बन जाते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ सहारा बन जाते हैं, ऐसी ही सेवा भावना का प्रतीक है रेड क्रॉस। श्रोताओं, इस हफ्ते हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं, जो मानवता, सेवा और निस्वार्थ सहायता की प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना कितना जरूरी है।

0: तो क्या जिए।
1: श्रोता, वैसे तो मई का महीना बहुत ही खास होता है, लेकिन एक और खास दिन हम मनाते हैं, विश्व मिडवाइफ्स डे। जी हाँ, जो उन समर्पित दाइयों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने का दिन है, जो माँ और नवजात शिशु की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि किसी को नया जीवन देना ही असली खुशी को पाना है।

0: श्रोताओं, मेरी इन बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बातें होंगी इस महीने के महत्वपूर्ण दिनों पर। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम में बात करते हैं इंदौर के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर प्रमोद झवर जी से। गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। नमस्कार प्रीति जी।
0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर प्रमोद झवर, इंदौर से सीनियर चेस्ट फिजिशियन, एलर्जी स्पेशलिस्ट एंड स्लीप ब्रीथिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।
0: डॉक्टर साहब, आज हमारा जो गुड मॉर्निंग इंदौर का विषय है वो है अस्थमा, क्योंकि हम वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा क्या है, ये किस तरह की बीमारी है?
1: अस्थमा एक दीर्घकालीन सांस की ट्यूब का रोग है, जिसमें सांस की ट्यूब में सूजन आ जाती है और उसके बाद में जब किसी ट्रिगर के संपर्क में आने से, ना किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को पोलन एलर्जी है, तो उसके बाद में या कोई इरिटेंट्स हैं, तो उसके बाद में उसकी सांस की ट्यूब के अंदर बलगम जमने लगता है और सांस की ट्यूब सिकुड़ जाती है और उसी कारण से सारे लक्षण उभरते हैं, जैसे सांस खोना, चलने से घबराहटे की आवाजें आना, चेस्ट में हेवीनेस लगना, कंजेशन लगना और सांस की कमी, ऑक्सीजन की कमी होने से थकान लगना, ये और खांसी, खांस खांस के छाती दुखना, ऐसे इसके कुछ लक्षण मुख्य रूप से हैं।
0: डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि अस्थमा के पीछे जो बढ़ते मामले हैं उनके पीछे क्या कारण है? क्या बढ़ता प्रदूषण है?
1: अस्थमा के यूजुअली तो जेनेटिक डिसीज होती है, वंशांकुत होती है, लेकिन कुछ लोग किसी खास ट्रिगर के संपर्क में आने से सेंसिटाइज हो जाते हैं, जैसे कि कोई खास ऑक्यूपेशन में काम करते, डस्ट एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या सतत उनके केमिकल के एक्सपोजर बॉडी पे है। प्रदूषण तो अपनी जगह है ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्हीकल इमिशन इतना ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे पोलन्स की साइज बड़ी है, उनका ड्यूरेशन बड़ा है, उनका ट्रेवलिंग डिस्टेंस बड़ा, तो पोलन एलर्जी भी बहुत ज्यादा कॉमन है। हम देखते हैं कि सिलन वाली एलर्जी, फंगल मोल्ड्स होते हैं हमारे घर में जो एरियाज होते हैं जहाँ पे हम लोग दीवारों पे सीलन फपूंद लग जाती है, और डस्ट माइट तो उसका मुख्य रूप से कारण है ही है, जो हम लोग घर की जो महीन कण होते हैं, मतलब वो स्किन पे भी हो सकते हैं, पर्दे पे भी हो सकते हैं, और जो पुराने लकड़ी के फर्नीचर से वहां पे भी हो सकते हैं। और हम लोग देखते हैं हमारे जो परिवारों में जब भगवान की पूजा होती तो उसमें अगरबत्ती का प्रयोग होता है, और घर के भी जो किचन के एरिया है जहाँ पर वेंटिलेट नहीं होते हैं, तो सारे खाने की फ्यूम्स हैं, गैस की फ्यूम्स हैं, ना इरिटेंट्स, डिओ खूब लोग लगाते हैं, डिओडोरेंट लगाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग मच्छर के रिपेलेंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ एलर्जेंस तो तीन ही है, डस्ट माइट्स, पोलन वैसे गाजर घास और फंगल मोल्ड्स, काकरोच, जिनका इलाज वैक्सीनेशन, ओरल सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी से संभव है, और बाकी इरिटेंट्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मतलब खास करके कोई लोग गाड़ी से जाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, तो ऐसे कुछ जगह हम लोग प्रिकॉशन रखें तो बहुत सी अस्थमा के दौरे से बच सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने डॉक्टर साहब। अस्थमा का जब दौरा पड़ता है, जब अटैक आता है, तो उस समय क्या तकलीफ होती है मरीज को?
1: जैसा मैं बात कर चुका हूँ कि सांस की ट्यूब में जो नॉर्मल उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो रास्ता होता है, वो रुक जाता है, मतलब बलगम के कारण से, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से, इन्फ्लेमेशन के कारण से, तीन चीजें होती है, ए बी सी, है ना, तो इनके कारण से सांस का वायुमार्ग अवरुद्ध होने से उनके लक्षण में से सांस भरना, घरघराटे की विजलिंग साउंड आना, खांसी होना और खांस खांस के चेस्ट पेन, वीकनेस और बलगम जमने से कई बार इन्फेक्शन होने से फीवर भी आ सकता है।
0: लोगों तक सही दवाइयों और इन्हेलर तक नहीं पहुंच पाता है, या उसमें किस तरह की बाधाएं आज हम देखते हैं?
1: अभी विश्व में सब जगह अब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो है इन्हेलेशन थेरेपी, यानी वो दवाइयां जो कि सीधे भाप से ली, भाप से मतलब वो नेबुलाइजर जो इमरजेंसी में प्रयोग होता है, जो गांव के लोगों को, बहुत से लोग स्मोकिंग करते रोटा के, उनको ज्यादा समझ में आता है, और एक बच्चे होते हैं छोटे, उनको मीटरडोस इनहेलर से, जो एक प्रेशराइज पंप होता है, उससे बेबी मास्क से दे सकते हैं। और आजकल दवाइयां की जो गोलियों से जो दवाई देते थे मुंह से, सर्प वगैरह, उनका प्रयोग सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो उनकी मात्रा पहले पेट में जाती है और उसका जब ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है तो कुछ मात्रा लंग्स में काम आती है, तो बाकी जो ओवरडोज से कई बार मरीज को हाथ पैर कांपना, धड़कन तेज चलना, घबराहट होना, ऐसे सिम्टम्स आते थे। तो इन्हेलेशन थेरेपी एक मुख्य रूप से इलाज है, जो कि प्रेग्नेंट महिला में भी और जो भ्रूण जो है या बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए भी सुरक्षित है, मतलब किसी भी अवस्था में, एडल्ट में, ओल्ड एज के अंदर भी वो इन्हेलेशन थेरेपी सुरक्षित मानी जाती है।
0: जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इस तरह की जो इन्हेलर है वो आज मार्केट में उपलब्ध हैं ताकि अस्थमा का किसी को अटैक आए तो वो इनका उपयोग कर सकता है डॉक्टर की सलाह से। जी, मरीजों को अस्थमा कंट्रोल करने के लिए आप क्या सलाह देते हैं?
1: मुझे लगता है कि पहले तो आदमी को अपने ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए कि कौन से कारक है जिनसे उनको तकलीफ होती है, नंबर एक। सेकंड, चेस्ट फिजिशियन से उसके लंग फंक्शन टेस्ट, पारोमेट्री, या बच्चों में एक इम्पल्स ऑसिलेशन आते हैं, 4 साल के बच्चे भी लंग फंक्शन कर सकते हैं जिससे वो आराम से हम लोग देख सकते हैं कि उसकी सांस की ट्यूब में वो रिवर्सिबल एयरवे है। बहुत से पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि साहब इसमें दवाइयां, इनहेलर में स्टेरॉइड्स होती है, ये तो काफी तेज दवाइयां होती है, इसमें हमें मरीज को हमारे आदत से पड़ जाएगी और ये तो लास्ट रिसोर्स है, तो वो कई बार कंफ्यूजन होने से वो सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हुए और अल्टरनेट ट्रीटमेंट पे जाते हैं जो कि कई बार घातक हो सकता है, क्योंकि आपको मेन अस्थमा का जो तकलीफ है वो सांस की ट्यूब की सूजन है। अगर कोई मरीज को बार बार ये अस्थेलिन टाइप की दवाया लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो अस्थमा कंट्रोल नहीं है। हमें हमारे अस्थमा का जो सूजन पे ध्यान देना चाहिए और कुछ ओरल वैक्सीनेशन होते हैं, और ये भी बताना चाहूंगा कि अब एडल्ट वैक्सीन भी उपलब्ध है जो कि इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल, सिंगस वगैरह, जो मौसमी तौर पे जो अलग अलग वायरसेस आते हैं उसके कारण भी कई बार अस्थमा का दौरा बढ़ जाता है। तो एलर्जी अलग है जो सबलिंगुअल वैक्सीन बनते हैं डस्ट माइट्स के लिए, गाजर घास के लिए, फंगल मोल्ड के लिए, जो कि आपके दवाई की मात्रा काफी कम कर देते हैं और कई बार लोग रिमिशन में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनको ठीक भी नहीं आते।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को किस तरह का अवेयरनेस देना चाहते हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि वो अस्थमा से हमेशा दूर रहें?
1: मुझे लगता है कि एक आदमी को 7 घंटे एडल्ट को सोना चाहिए, 2 घंटे बॉडी पे को भी देना चाहिए, उसमें प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सिंगिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को होना चाहिए। दिन के जो एक्सरसाइज होती है और उनके मनपसंद गाने सुनने से उनके इंडोर्फिन्स निकलते हैं, उनको काफी खुशी होती है और काफी अच्छे मूड में रहते हैं हमेशा। तो और ग्रीनरी लगाएं क्योंकि बहुत जरूरी है, हम लोगों ने हमारे विकास के लिए सारे पेड़ काट दिए। अब देखें इंदौर में भी 9 लाख देखें या भी रोड देखें तो कई प्लांट नाम की चीज नहीं बची है। नगर निगम का अच्छे प्रयास है, डेवलप करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना तो हमारा ही काम है। तो एक तो साइकिलिंग करें, मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं, और जहां पर भी ऐसे फ्यूम्स के चीजें हो स्मोकिंग से दूर रहें, प्रदूषण से दूर रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिससे काफी हद तक हम लोग बिगर दवाई के कम दवाई के भी ठीक रह सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब आपने। अब हम आपकी पसंद का एक गीत जानना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद हो।
1: मुझे बहुत पसंद है मेरा चांद मुझे आया है, नजर कुमार स्वामी जी का गाना है।
0: जी जी जी,
1: वो आप जरूर प्ले कीजिए।
0: लीजिए, आपके रेडियो सेट पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: श्रोताओं, इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं योगा एक्सपर्ट श्रीमती निशा गुप्ता जी। निशा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: निशा जी, सबसे पहले तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अस्थमा का जो रोग है उसके जो मरीज हैं उनके लिए योग कितना प्रभावी है?
1: योग के माध्यम से श्वसन संबंधित सभी जो बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, इसमें अपन 70-80% योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: क्या योग से अस्थमा पूरी तरह ठीक हो सकता है या सिर्फ नियंत्रित होता है?
1: जी, नियमित अभ्यास से योग के प्राणायाम है, आसन है, यदि हम नियमित करते हैं तो उसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, और यदि अपन नियमितता नहीं रखते हैं तो सारे मेडिसिन के साथ हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं।
0: अच्छा निशा जी, आप ये बताएं कि कौन कौन से आसन हैं या प्राणायाम हैं जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है?
1: करूंगी कि जैसे हम प्रार्थना लेते हैं तो प्रणवनाथ, ओमनाथ, ये ब्रीदिंग के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद हम आसनों की शुरुआत करते हैं। आसनों में जैसे ताड़ासन है, कोणासन है, और जितने भी हम फेफड़ों को विस्तृत करने वाले हैं, प्राणिक क्रियाएं हैं, वो हम सर्वप्रथम लेते हैं। उसके बाद हम उष्टासन लेते हैं, भुजंगासन लेते हैं, सर्पासन लेते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने चेस्ट की वायु कोशों को अच्छे से खोल सकते।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है, इस तरह के आसन है। क्या अनुलोम और विलोम और भ्रामरी ये भी बहुत आवश्यक होता है?
1: जी हाँ, अनुलोम विलोम की अपेक्षा हम अपने जो डायनासोर को अच्छे से और एक्टिव कर सकें तो उसके लिए हम लोग भस्त्रिका को ज्यादा और कपालभाति को ज्यादा महत्व देते हैं श्वसन संबंधित। उसमें तो सबसे पहले हम कपालभाति, फिर भस्त्रिका, फिर हम लेते हैं सूर्यभेदी और फिर अनुलोम विलोम।
0: जो आसन है ये बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे श्वास के लिए। प्राणायाम करते समय हमें ऐसी क्या सावधानियां रखना चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा हमें हो?
1: प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध वातावरण होना चाहिए, सुव्यवस्थित आसन होना चाहिए, और शांत स्थान को हम चुने, और अधिक से अधिक हमको ऑक्सीजन जो है हमको मिले और हम मस्तिष्क तक और फेफड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचा।
0: क्या हर उम्र के लिए एक ही प्रकार का प्राणायाम कर सकते हैं या कुछ अलग अलग होता है?
1: प्राणायाम के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। बच्चों के लिए स्टार्टिंग में उनको चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए बच्चों को सिर्फ हम दीर्घ श्वसन पर ज्यादा ध्यान दिलाते हैं, बाकी सभी वर्ग के लोगों के लिए प्राणायाम कारगर।
0: निशा जी, एक बात यहाँ जानना चाह रही थी कि अस्थमा के जो मरीज हैं उनके लिए आदर्श योग दिनचर्या कैसी होना चाहिए?
1: आदर्श दिनचर्या में जैसे है कि जैसे स्टार्टिंग सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, उसमें उन्हें गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, इसमें तुलसी है, अदरक है और शहद का प्रयोग करें, ताकि जितना भी बलगम और म्यूकस जो हमारा जमा रहता है श्लेष्मा वो दूर हो सके, और उसके बाद फिर भी प्राणायाम की शुरुआत।
0: वाकई में अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो एक स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं और जो अस्थमा जैसा जो रोग है उसको दूर कर सकते हैं, क्या कहेंगी आप?
1: जी हाँ, उसके लिए जरूरी है कि हमको जब भी हमें समय मिलता है तो हमें दिन में कम से कम 40 मिनट दीर्घ श्वसन करना चाहिए। दीर्घ श्वसन मैंने पेट में नहीं, पेट की अपेक्षा हमें धीरे धीरे धीरे धीरे श्वसन की मात्रा को फेफड़े तक पहुँचानी है, फेफड़ों को विस्तृत करना है, ताकि हमारे आगे जितने वायु कोशी वह खुल सके, ताकि म्यूकस है, श्लेष्मा है, अंदर की जितनी भी वायु कोशी अच्छे से खुल।
0: यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें इस तरह के प्राणायाम और आसन करना चाहिए ताकि जो हमारा सांस का जो नियंत्रण है वो अच्छा हो जाए और फेफड़ों को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके।
1: जी
0: निशा जी, अब अपनी पसंद का एक गीत बताएं जो श्रोताओं के साथ हम आपको सुनवाएं।
1: जी हाँ, मेरा मनपसंद गीत है साजन बिना सुहागन का, मधुबन खुशबू देता है।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत आपने पसंद किया। लीजिए, आपके रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
2: मधुबन

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर, मैं डॉक्टर राकेश गौड़ वर्तमान में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी इंदौर द्वारा संचालित रेडक्रॉस डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड बैंक का अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। सेवानिवृत्ति को अपना अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप रेडक्रॉस से जुड़े हुए हैं, तो हम आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडक्रॉस का समाज में क्या योगदान है, क्या महत्व है और रेडक्रॉस क्या है।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और भारत में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
0: जी जी।
1: और हमारे प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और हमारे संभागीय हेडक्वार्टर इंदौर में है। कलेक्टर इंदौर इसके अध्यक्ष होते हैं, मैं कलेक्टर इंदौर के साथ यहाँ बोर्ड मेंबर हूँ।
0: जी, आप रेडक्रॉस से कैसे जुड़े हैं, कुछ बताएं अपने बारे में।
1: मैं अपनी स्कूल एजुकेशन में मिडिल स्कूल क्लास में था तो मुझे जूनियर रेडक्रॉस के बारे में जानकारी दी गई और कुछ छोटा मोटा अमाउंट कलेक्शन के रूप में स्टूडेंट से लिया, तो हमने जानकारी ली कि इस पैसे का क्या होता है। तुरंत बताया कि ये विश्व में कहीं भी आंधी तूफान भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं तो उस पूरे विश्व से छोटा छोटा राशि एकत्रित होकर ये वहाँ पर लोगों की मदद में काम आती है, तो मुझे जागृति आई और मैंने इसको ज्वाइन किया। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने इसकी आजीवन संस्था ली 1978 में।
0: आप अपने अनुभव से बताएं कि रेड क्रॉस जैसी संस्था की भूमिका को कैसे देखते हैं आप, इसका समाज में क्या उपयोग है।
1: रेड क्रॉस एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये प्राकृतिक आपदा और बिना किसी भेदभाव के पीड़ित एवं शोषित मानवता की सहायता करती है। जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा, मानवीय पीड़ा को कम करने के और तटस्थ चिकित्सा सहायता प्रदान करने इसका प्रतीक है।
0: रेड क्रॉस जो काम करती है वो किस तरह के काम होते हैं और किन आपातकालीन स्थितियों में रेड क्रॉस की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इस विषय में जानकारी जरूर दें हमारे श्रोताओं को।
1: विश्व में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बाढ़ आंधी तूफान भूकंप आता है तो रेडक्रॉस विश्व के 190 देशों में कार्यरत है। भारत में भी करीब 700 शाखाओं के द्वारा स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, इसमें सेवाएं देते हैं और युद्ध स्तर पर आपदाओं में घायलों की वो फर्स्ट एड करने के लिए, और इसका प्रमुख उद्देश्य एम्बुलेंस और फर्स्ट एड लोगों को ट्रेनिंग देना है जिससे घर में कभी इमरजेंसी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति अपने स्तर पर अस्पताल पहुंचने के पहले किसी की मदद कर सके।
0: क्या हर व्यक्ति को बेसिक जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपका क्या विचार है।
1: जी, लेना चाहिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अगर हमने ली हुई है तो अगर हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें बताया जाता है कि उस जगह को बांध दे हम तो उसका ब्लीडिंग रुक जाएगा और फिर अस्पताल को खबर पहुंचकर हम उसको संबंधित को पहुंचा सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इस तरह से हम आपातकालीन स्थिति में तैयारी रख सकते हैं अपनी। भविष्य में आप इस संगठन की भूमिका को कैसे देखते हैं।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को आपदा, रक्तदान, युद्ध में संघर्ष में मदद करना, निष्पक्ष सेवा, जाति धर्म और इंसानियत, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, ये सब इसमें इसके वो हैं। ब्लड डोनर को हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपना रक्तदान है, रक्तदान महादान है, आप अपने रक्त से आज कंपोनेंट काम आता है, चार लोगों की मदद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि रक्तदान महादान होता है और जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनमें भी अगर हम रक्तदान करते रहें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। क्या कहेंगे आप।
1: आपदा प्रबंधन जैसे रक्त सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता, युद्ध और संघर्ष, ये सब कोर्स के अपने सिद्धांत हैं और ये पूरे विश्व में मानवता की सेवा के लिए कार्यरत है। विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। इसके जो फाउंडर थे हेनरी डुनेंट, इसकी स्थापना उन्होंने की 8 जून 1963 को। उनके जन्म दिवस पर हम इसको विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने।
1: यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति जी, सर्वप्रथम मैंने 1978 में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की आजीवन संस्था ली, उसके उपरांत मैं निरंतर लॉयंस क्लब रेडक्रॉस के साथ साइमल्टेनियसली पीड़ित एवं शोषित मानवता की सेवा के लिए कार्यरत रहा। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझे इस संस्था का राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य मनोनीत किया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम लाल जी टंडन जी ने मुझे इस रेडक्रॉस सोसाइटी का समन्वयक नियुक्त किया। वर्तमान

0: आनंद आता है। युवा पीढ़ी ब्लड डोनेशन करे तो कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, और युवा पीढ़ी इस देश का भविष्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो सर्वप्रथम हम स्वस्थ रहें, अपने आप को जागरूक बनाएं। युवा पीढ़ी इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकती है।
1: बातें आपसे बहुत हो गई है, अब आप अपनी पसंद का एक गीत बताएं जो इस खास मौके पर आपको सुनना पसंद होगा।
0: अनाड़ी फिल्म का गीत है किसी की मुस्कुराहटों पर, ये मुझे सबको सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी, अपने रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर, मेरा नाम श्यामलता प्रजापति है।
0: श्यामलता जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये बताइए, क्या करती हैं आप?
1: आशा कार्यकर्ता का काम करती हूँ मैडम।
0: तो ये बताइए, एक आशा कार्यकर्ता के क्या काम होते हैं?
1: मैम, मेरे काम होते हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं जनता को बताना।
0: क्या बात है, आपका बहुत ही अच्छा काम है। आपने कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत समर्पित रहती हैं। तो जब भी गर्भवती महिला की बात आती है तो गर्भावस्था के समय और प्रसव के दौरान आपकी क्या भूमिका रहती है, इस विषय में कुछ बताएं।
1: गर्भवती महिला को है ना सारी जांचें करवाना जरूरी रहता है। जैसे जो नॉर्मल रहती है, सामान्य गर्भवती महिला रहती है, उनकी 4 जांचें कराते हैं हम। जो हाई रिस्क में रहती है उनकी 7 जांच कराते हैं, 3 जांच एक्स्ट्रा कराते हैं क्योंकि वो हाई रिस्क रहती है ना इसके लिए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरह का ध्यान आप रखती हैं। सबसे यादगार अनुभव आपका कौन सा है जो आपके साथ बीता हो?
1: यादगार अनुभव तो ये था मेरा, एक बार इतनी आंधी तूफान और पानी आ रहा था, उस टाइम में गर्भवती महिला के संग कोई भी नहीं था। साधन करा था ले जाने के लिए, तो उसमें लाइट भी नहीं था मैडम। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड आगे गाड़ी लेके जा रहे थे और रिक्शा बगैर लाइट के गया और हमने उसका सुरक्षित प्रसव करवाया अस्पताल ले जाकर।
0: इसका मतलब ये है कि जो दाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसका निर्वहन आपने किया है उस समय।
1: जी हाँ मैम।
0: तो उस समय कैसा महसूस होता है जब आप ये काम करते हैं?
1: मैम, बहुत दुख का अनुभव होता है क्योंकि एक तो महिला पेन से पीड़ित रहती है और दूसरा वो अस्वस्थ हो जाती है उस टाइम में कि क्या करना क्या नहीं करना, और जब बच्चा आ जाता है तो माँ का सारा दुख खत्म हो जाता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो क्या सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?
1: जी हाँ मैडम, होती है जी।
0: बताइए क्या रहती है?
1: मातृ वंदना के, जैसे जो महिला को 3 माह के बाद से चालू हो जाता है मैडम मातृ वंदना के, तो बच्चा

0: होता है 9 महीने तक का, जब उन्हें 5,000 रूपए दिया जाता है बाल विकास की तरफ से, और अगर उनके कन संबल कार्ड वगैरह लिया तो 12,000 अस्पताल से मिलते हैं मैडम, पति पत्नी की दाढ़ की करके और बच्चों के पालन पोषण के लिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सरकार इस तरह से महिलाओं के लिए सुविधा बना रही है।
0: और जो सामान्य महिला रहती है मैडम, उन्हें 1400 रूपए तो हर महिला को मिलता है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में आए।
1: तो ये सब प्रसव के लिए दिया जाता है?
0: हाँ मैम, प्रसव के बाद में दिया जाता है, अस्पताल से दिया जाता है महिलाओं के लिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही है श्यामलता जी। आपको क्यों लगा कि आपको एक आशा कार्यकर्ता बनना चाहिए?
0: नहीं, क्या था, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ बच्चे स्वस्थ रहे। तो क्या था कि कोई सही समय पर टीके वगैरह नहीं लगवाते थे, तो मैंने यह कदम उठाया कि मतलब उनको सुरक्षा भी मिलेगी और मेरा भी, मेरे को मन में प्रसन्नता होगी कि भाई मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, माँ बच्चे सुरक्षित रहते हैं, इसके लिए मैंने ये पैसा अपनाया।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप एक आशा कार्यकर्ता के रूप में इतना अच्छा से सभी की देखभाल कर रही हैं और आपके मन को सुकून भी मिलता है।
0: मैडम मुझे ना बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी खुशी होती है मुझे अपने प्रेशरों में नहीं, इतनी मुझे दूसरे के प्रेशरों में बच्चे को और माँ को देख के अत्यंत प्रसन्नता होती है।
1: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है श्यामलता जी आपसे बातचीत करके। अब श्यामलता जी एक गीत की फरमाइश करें।
0: मुझे आराधना पिक्चर का चंदा है तू सूरज है तू, मुझे ये वाला गाना सुनवा दीजिए।
1: क्या बात है, आपने माँ और बच्चे के प्रेम को प्रदर्शित करता ये जो गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
2: चंदा

श्रोताओं, हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि छोटी छोटी सावधानियां अगर हम अपनाएंगे तो बड़ी बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हर सांस को खुशहाल बनाते रहें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अब अनुमति दें प्रीति जोशी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही हम रिले करेंगे मॉर्निंग न्यूज़। कृपया कुछ देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
0: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साफ दांव पर है?
2: देखिए,

0: मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं, जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं। ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2-2। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है न ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
8: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the state. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in all the assembly constituency on that will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
7: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
3: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago under tight multi-layer security arrangements. The state has recorded a high voter turnout of 85.96%, the highest in the last five assembly elections. Counting is being conducted at 40 centers across the state. While most districts have one counting centers each at their headquarters, Kokrajhar, Tinsukia, Jorhat have two centers each and Nogaon has three. The entire process is being monitored by 126 counting observers with support from nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers. A total of 722 candidates are in fray for the 126-member assembly. The majority mark to form the government stands at 64. Back to you.
7: Thank you, Rakesh. Moving on to Keralam, where we have our correspondent Smithy Paluruthi. Smithy, how is the counting going on for the Keralam Assembly elections?
9: Anuja, counting of postal vote began at 8 a.m. in 140 constituencies across 43 locations in Keralam. EMV will be brought in for counting within the next few minutes. Initial trends are expected by 9:30 a.m., Anuja. At the same time, all three political fronts are expressing strong confidence about the results. The LDF is anticipating a continuation power, while the UDF is expecting strong comeback. The NDA is hopeful of emerging as a decisive force in the Kerala Assembly. Anyhow, we will have to wait for just 2-3 hours to get a clear picture of the outcome. So let's wait for that, Anuja. That's all, Anuja.
7: Thank you, Smithy, for that update. And now we go over live to Puducherry, where we have our correspondent Bibin S. Nath. Bibin, tell us, how is the counting progressing in Puducherry?
10: Anuja, in the first round, votes from 17 assembly constituencies will be taken up across all six counting centers. It includes 12 constituencies in the Puducherry region, 3 in Karaikal and 1 each in Mahi and Yanam. The remaining 13 constituencies will be taken up in the second round. A total of 859 officials, including counting supervisors, assistants and micro observers, have been deployed for counting duties. Altogether, 166 tables have been set up for the EVM and VVPAT counting, along with the 35 tables for postal ballots. Anuja.
7: Thank you, Bipin, for that update. And we also have with us our Chennai correspondent, Joy, with latest update on counting in Tamil Nadu. Joy, please give us the latest update on the counting in Tamil Nadu.
11: Good morning, Anuja. The counting has begun in all the polling stations with high security. Counting is taking place in 62 centers. Over 4 crore 58 lakh voters have exercised the franchise this time. The state has 188 general constituencies, 44 SC and 2 SC constituencies. This is the first election after the special intensive roll, Anuja. And 1 lakh police personnel have been involved in protecting the counting centers. Party workers have gathered outside the counting centers eagerly waiting for the results. The key contestants are Union Minister Yal Murugan, and there are three chief ministers during in this election. One is the present Chief Minister M.K. Stalin and two former chief ministers, Edappadi Palaniswami and Mr. O. Paneerselvam. Paneerselvam is contesting as a DMK candidate for the first time from Bodi Nayakanur. Actor Vijay is contesting in two constituencies, one in Perambur in Chennai and another one Tiruchi East in Tiruchirappalli. Former Governor of Telangana and Puducherry Dr. Tamilsai Soundarajan is contesting from Mylapore. BJP State President Tainar Nagendran and former AIADMK strongman K. Sengotain is contesting from TVK, the new party, which is expected to give a strong presence in this election. This is the first part. This is their first election. Just 2 years after the fan club of actor Vijay has become the party. Anuja.
7: Thank you, Joy, for that update.
12: Janadesh 2026.
13: Special program on results of assembly elections in Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
12: Today, the 4th of May 2026.
13: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
12: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
13: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
12: From 8:30 a.m. onwards today.
13: Janadesh 2026.
7: The counting of votes for 7 assembly bipoles in 5 states is also being taken up this morning. The 7 seats are Umret in Gujarat, Bagalkot and Davangere South in Karnataka, Rahuri and Baramati in Maharashtra, Koridang in Nagaland and Dharmnagar in Tripura. India has rejected Nepal's claim over Lipu Lake Pass, termed it as a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954, and the Yatra through this route has been going on for decades. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal in a social media post said this in response to claims related to border issues made by Foreign Ministry of Nepal in the context of the annual Kailash Mansarovar Yatra. He stressed that India's position in this regard had been consistent and clear, and this is not a new development. Mr. Jaiswal pointed out that India has consistently maintained that such claims are neither justified nor based on historical facts and evidence. He stressed that such unilateral artificial enlargement of territorial claims is untenable. The spokesperson added that India remains open to a constructive interaction with Nepal on all issues in the bilateral relationship, including on resolving agreed outstanding boundary issues through dialogue and diplomacy. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And download the News on EIR app. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech Symposium on the theme Raksha Triveni Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh today. The Ministry of Defence informed that the symposium will serve as a vibrant platform to showcase and integrate state-of-the-art indigenous technologies to overcome operational challenges. Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar interacted with the Indian community in Jamaica. In a social media post, he said that the Prime Minister of Jamaica spoke about the Indian community's contributions. Both leaders discussed the transformation underway, especially in infrastructure, human development and technology-driven governance and entrepreneurship. They also discussed the recent developments in Indian-Jamaica ties. The United States will launch Project Freedom to guide countries with ships stranded in the Strait of Hormuz. President Donald Trump said this effort will help hundreds of vessels and some 20,000 seafarers. In a social media post, he said that neutral and innocent countries have been affected by the Iran war, and the U.S. has told these countries that Washington will guide their ships safely out of these restricted waterways so that they can freely and ably get on with their business. 3 people have died and 3 fell ill after a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship en route from Argentina to Cape Verde. According to the World Health Organization, hantavirus is a rodent-borne virus that can cause fatal respiratory illness. The India Meteorological Department or IMD has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. It also predicted heavy rainfall at isolated places over Bihar, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Nagaland, Manipur, Puducherry, Uttarakhand and West Bengal. And in sports, in IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. Chasing a target of 164 runs set by Punjab Kings, Gujarat Titans scored 167 for 6 with one ball to spare. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 7:30 this evening. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
14: Thank you, Anuja. The dailies have mentioned about the 3-tier security system in place for election results today, with all eyes on counting centres. Verdict day arrives for high-stakes elections, writes Hindustan Times, while the Pioneer says, from Bengal to Kerala, high voter turnout set the stage for a dramatic result today. Government explores EU-like law to safeguard firms against third country sanctions, cites the Indian Express. In its editorial page, Hindustan Times talks about UAE's exit from the Organization of Petroleum Exporting Countries. It reflects the new security architecture being built around Abu Dhabi. The choice of New Delhi is to be a participant in shaping the new order or be a price taker once it is built. The Times of India mentions about the relief after UAE airline resume operations. A headline in the paper also says, Iran proposes a 30-day plan to end war, says it has received US reply. And finally, a headline in the Tribune states, artificial intelligence to create 6 million healthcare jobs in India by 2030. And with that, it's back to you, Anuja.
15: Thank you, Shagun. And in sub early trends, in counting for assembly elections, early trends have started coming in for Kerala, Tamil Nadu, Assam and West Bengal. In Kerala, trends are available for 11 seats. Congress is leading in 5 seats, CPI-M in 3 seats, BJP, RSP and Independent in 1 each. In Tamil Nadu, trends are available for 2 seats, DMK and TVK are leading in 1 each. In Assam, trends are available for 10 seats, BJP is leading in 9 constituencies and AGP in 1. The first trends have also started coming in from West Bengal. BJP is leading in all 3 constituencies for which trends are available. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Counting of votes begin for assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. Counting also underway for by-polls in 7 assembly constituencies. India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipu Lake Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
16: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र. लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत. फिल्म संगीत की शुरुआत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में कन्हैया फिल्म का ये गीत. शंकर जयकिशन ने इसे संगीत दिया है और लिखा है शैलेंद्र ने.

दोस्तों, ये तो ठीक बात है कि अगर किसी के साथ कोई वादा किया जाए तो उस वादे को निभाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हम पर विश्वास हो जाता है कि हमने जो कहा है उसे करने के लिए हम उस काम को पूरा करेंगे। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुँचती है जिससे हमने वादा किया है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि अगर हम किसी से कोई वादा करें, किसी को कोई काम करने के लिए हाँ कहें, तो हम उस काम को पूरा करें। अपनी तरफ से हम भरसक प्रयास करें, पूरी कोशिश करें कि हमारा वादा टूटे ना, क्योंकि जब वादा टूटता है तो किसी का हृदय टूटता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि किसी का हृदय न टूटे हमारे वादे की वजह से। हृदय में ईश्वर का वास होता है, और जब हम किसी के मन को दुखाते हैं, किसी को चोट पहुँचाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को भी तकलीफ देते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुँचे। देखिए, अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ये कुछ ऐसा ही है जिसमें किसी का मन बेचैन है। आइए सुनते हैं इस गीत को, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। धुन इसकी बनाई थी रोशन ने और फिल्म का नाम है चित्रलेखा।

दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, और ऐसे दर्द में शुमार है प्यार का दर्द। जी हाँ, विरह एक ऐसी वेदना है जो इंसान को तोड़कर रख देती है। जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, अगर वो आपसे दूर है तो ये दूरी आपके जीवन को अधूरा बना देती है, और इस दर्द का कहीं कोई इलाज नहीं मिलता। ऐसा ही एक गाना है, आइए आपको सुनवाते हैं।

कितनी सही और सटीक बात है इस गाने में कि ऐसा ये गम ही नहीं जिसे कोई पहचान ले, इसे केवल वो ही जानता है जिसने कभी किसी से प्यार किया हो। विरह की ये जो घड़ियाँ होती हैं, इसको केवल वही महसूस कर सकता है जो अपने प्यार से कभी दूर रहा हो। लेकिन फिर भी इंसान को जीना पड़ता है, भले ही झूठी हंसी के साथ, झूठी मुस्कान के साथ, लेकिन सबको दिखाने के लिए खुश रहना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह जीवन को जिया जा सकता है।

कुछ दिल ने कहा। दिल की बातें तो दोस्तों बस दिल ही जानता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं भी नहीं जाती, केवल दिल खुद से कहता है और फिर खुद ही उसका उत्तर भी दे देता है। ऐसी बातें जो हमेशा सिर्फ अपने अंदर ही रह जाती हैं, उन बातों को ना कभी कहा जाता है, ना किसी से शेयर किया जाता है। ऐसी बातों के लिए भला आप क्या ही करेंगे जिनका जवाब भी आपको खुद देना है। ऐसी बातें जो होती हैं वो इंसान को एक ऐसे जहान में ले जाती हैं जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई मिलती है।

कितनी अजीब बात है कि सूरज और चांद के होते हुए भी, इतना चारों ओर उजाला होते हुए भी मन में अंधियारा है। अगर हम इस गीत की गहराई में जाएं, इन शब्दों की गहराई में जाएं, तो बात बस वही है कि जब प्रियतमा अपने प्रियतम से दूर है तो उसे संसार में चारों तरफ सिर्फ निराशा के भाव नज़र आते हैं। खुशियों में भी वो खुश नहीं हो पाती और अपने आप को पूरी तरह अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसके मन में अपने उस निष्ठुर साजन के लिए प्रेम है जिसे वो बहुत प्रेम करती है, लेकिन फिर भी उसका साजन उससे दूर है। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि जिस तरह वो उन्हें याद करती है, वो भी तो उन्हें याद करते होंगे।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लेकिन चलने से पहले आपको कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना दे दें कि आज सुबह 10:05 से लेकर 11 तक हम प्रस्तुत करेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर हैं 271

दो दो तीन और 2710224। टेलीफोन नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं, कृपया नोट कीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का एसटीडी कोड है 0731। जी हाँ, 0731 ये एसटीडी कोड है इंदौर शहर का। तो जो श्रोता इंदौर शहर के बाहर से हमें कॉल करें वो कृपया 0731 यानी 0731 एसटीडी कोड लगाकर फिर हमें कॉल करें। कार्यक्रम का नाम है एमएच हॉटलाइन। प्रसारण समय है आज सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भी अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए मराठी कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार हैं रामचंद्र भागवत। इनसे सुनिए राग नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे रामचंद्र भागवत, इनसे आपने सुना राग नटभैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

आधार कर मोबाइल एप्लीकेशन में जानकारी दर्ज की जाएगी। जिला जनगणना अधिकारी सरोधन सिंह के मुताबिक जिले में 1989 एचएलबी बनाए गए हैं। इस पूरे काम के लिए 1054 प्रगणकों को प्रशिक्षित कर मैदान में उतारा गया है, जबकि 1777 प्रगणक हाउस लिस्टिंग का काम संभालेंगे और 177 को रिजर्व में रखा गया है। भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जनगणना कर्मियों को हेल्थ किट भी दी जाएगी, जिसमें ओआरएस घोल और जरूरी दवाइयां शामिल होंगी। अब बात करते हैं मौसम की। जिले में पिछले चार दिनों से तेज हवाओं और अंधड़ के साथ बारिश का दौर जारी है। दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे कम तापमान वाले 5 स्थानों में शामिल रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा मौसम अगले 2 से 3 दिन तक और बना रह सकता है। इसी के साथ जिले में पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम तेज हो गया है। हर विकासखंड में मां की बगिया तैयार की जा रही है। मनरेगा योजना के तहत हर ब्लॉक में 100 बगिया बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 608 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। जिनके पास आधा से 1 एकड़ जमीन है, वहां फेंसिंग कर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। हर बगिया पर करीब 2 लाख रूपये खर्च हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की इसी कड़ी में धनपुरी नगर ने भी एक नई पहल की है। शहर के 5 स्थानों पर बैग वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों में लोग प्लास्टिक की खाली बोतलें डालकर बदले में उपयोगी बैग ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेहत की। जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार देने की शुरुआत की गई है। गांव स्तर पर स्वसहायता समूह की महिलाएं ये किट तैयार कर रही हैं, जिनमें भुना चना, गुड़, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और मोरिंगा पाउडर शामिल है। एक किट के लिए 1150 रूपये का भुगतान किया जाएगा। ये वितरण मई और जून महीने में भी जारी रहेगा। अब किसानों से जुड़ी खबर का रुख करते हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी लगातार जारी है। जिले में कुल 9500 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रूपये है और 40 रूपये बोनस जोड़कर कुल 2625 रूपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। पानी की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कलेक्टर केदार सिंह ने जल संरक्षण के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। अब जल अभाव वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जल स्रोतों से पेयजल और घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य काम के लिए पानी नहीं ले सकेगा। नहरों का पानी इस प्रतिबंध से बाहर रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हाईस्कूल परीक्षा मेरिट सूची में जिले के 8 छात्रों ने जगह बनाई है। ब्योहारी के योगेंद्र सिंह परमार ने 500 में से 497 अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं श्रेया साहू ने 492 अंकों के साथ 8वां स्थान तथा आर्यिका नामदेव और नेहा सिंह ने 491 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा हर्षिल गुप्ता, अपेक्षा गुप्ता, अनामिका कुशवाहा और आरायना गुप्ता ने 490 अंक लाकर 10वां स्थान हासिल किया है। जंगल से जुड़ी खबर की बात करें तो उत्तर वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार संग्राहकों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए नई पहल की जा रही है। अब प्रशिक्षित युवतियां गांव-गांव जाकर संग्राहकों को सही तरीके से गड्डी बांधना और पत्तों का चयन करना सिखाएंगी, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा दाम मिल सके। इस साल जिले में करीब 1,44,000 मानक बोरे तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। आरटीई के तहत इस साल जिले में 1,113 बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया गया है, जिसके लिए 1,773 आवेदन आए थे, लेकिन लॉटरी के बाद 660 बच्चे चयन से बाहर रह गए। जिले के 268 निजी स्कूलों में सीट आवंटित की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 339 बच्चे

0: भागपुर विकासखंड में दाखिल हुए हैं। जल संरक्षण के लिए जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान भी चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, तालाबों का जीर्णोद्धार और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए रैली, कार्यशाला और दीवार लेखन भी किया जा रहा है। अब तक 267 खेत तालाब और 49 डग वेल रिचार्ज के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस बीच नगर में सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। शहडोल में 53 जर्जर भवनों की पहचान की गई है, जो बारिश में खतरा बन सकते हैं। नगर पालिका ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर इनकी मरम्मत या सुरक्षित तरीके से डिसमेंटल करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर नगर पालिका खुद कार्रवाई करेगी और खर्च की वसूली भी भवन मालिकों से की जाएगी। शहडोल जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हेडलाइन की सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं लेकर हम आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम। और कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले आपको बता दें टेलीफोन नंबर, ताकि वो श्रोता जिन्हें टेलीफोन नंबर नहीं मालूम है या वो भूल गए हैं वो इस पर कॉल कर सकें। तो हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का एसटीडी कोड है 0731। तो आइए देखें कि ये जो पहला कॉल है हमारे पास, ये हमारे किन श्रोता ने हमें किया है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दोकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं मैम।
0: अंसारी जी, आज के कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कैसे हैं आप अंसारी जी?
1: धन्यवाद जी, बढ़िया है मैम, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताएं आपके यहाँ कैसा है मौसम?
1: जी मैम, हमारे वहाँ का मौसम इस समय बारिश बहुत जो है जबरदस्त हो रही है और हवाएं भी चल रही हैं।
0: अरे इस समय बारिश?
1: जी जी बारिश हो रही बहुत तगड़ के।
0: चलिए कुछ तो राहत मिली होगी बारिश के होने से, गर्मी से कुछ तो सुकून मिला होगा।
1: जी मैम।
0: अच्छा अंसारी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है जो है ये दिल आशिकाना और गाने के बोल हैं जैसे दिल ये तुमसे मिला है।
0: ठीक है जी, हम जरूर आपको आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे। अच्छा अंसारी जी, कुछ बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, अहमदपुर बाजार में दुकान है, स्ट्रीट लाइट वगैरह रिपेयर करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। तो आइए सुने आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी मैम, थैंक यू।
0: ओके।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, एमएस हॉटलाइन।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ। बहन जी, ग्राम बापचा से, आगर मालवा के पास से।
0: यादव जी, स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, यहाँ कुएं पे खेती करते हैं, थोड़ी बहुत चरी बार रखी यहाँ पे बैठे हुए हैं और
0: अच्छा
1: रेडियो सुनते रहते हैं।
0: अच्छा तो आप रेडियो साथ में लेके जाते हैं अपना या मोबाइल पर सुनते हैं?
1: ये रेडियो खराब हो गया बहन जी, तो ये मोबाइल, एक साल भर से मोबाइल ऐप से सुन रहे हैं बहन जी।
0: अच्छा, तो चलिए, तो अच्छी बात है कि आप अपना जो मोबाइल है उसके द्वारा रेडियो भी सुनते हैं और साथ साथ अपने मोबाइल को
1: हाँ,
0: भी यूज़ करते हैं।
1: दिन भर चलता है बहन जी। सुबह वो 101.5 पे विविध भारती की रामायण सुनने के बाद दिन भर यही चलता रहता है अपना, इंदौर 462 और ये 101.5 पे, दोनों ही सुनता हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा, ये
1: हाँ बहन
0: बताएं
1: जी,
0: कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: ये धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म है आजाद,
0: जी
1: उसका गाना है जानकी कसम, सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम, बांट लेंगे हम आधा आधा, ये वाला गाना।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा गाया आपने, बड़ा अच्छा लगा।
1: बहन जी, पहली बार कॉल लगा मेरा यार आपके इस प्रोग्राम में,
0: बहुत अच्छी
1: इसके
0: बात है
1: लिए
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम तो अनुरोध करते हैं अपने श्रोताओं से कि भाई बार बार अगर आपके कॉल लग रहे हैं तो थोड़ा सा आप समय लें, थोड़ा रुकें और उन नए श्रोताओं को भी कॉल करने दें जो बेचारे कई समय से कोशिश कर रहे हैं, जिनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो कृपया करके उन्हें भी कॉल करने दें। हम तो ये अनुरोध करते हैं और अच्छा लगता है जब कोई नया श्रोता हमसे पहली बार जुड़ते हैं तो।
1: हाँ सही है बहन जी,
0: जी
1: नहीं ठीक, अब 2 महीने बाद ही फोन लगाऊंगा मैं।
0: नहीं, आपने तो खैर पहली बार ही लगाया है तो हम आपसे ये नहीं कह
1: हाँ
0: रहे हैं, लेकिन जो श्रोता हमारे नियमित रूप से कॉल
1: हाँ
0: करते हैं
1: सबको मौका
0: प्रतिदिन।
1: मिल जाता है बहन जी,
0: जी
1: सही है।
0: जी जी जी बस केवल इसीलिए अनुरोध है।
1: हाँ ठीक,
0: ठीक है, तो सुने आपके पसंद का गाना।
1: आओ, धन्यवाद बहन जी।
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जोधपुर किशनपुर से आलम दिलकश बोल रहा
0: आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पत्र आते हैं हमारे पास रेगुलर, हम पढ़ते हैं आपके
1: जी।
0: पत्र
1: दीदी
0: को।
1: मैं हाँ हमेशा खत भेजता हूँ दीदी। ठीक
0: जी। अच्छा बताइए, कैसे हैं आप?
1: है दीदी, आप बतलाइए आप कैसे हैं।
0: जी हम भी ठीक हैं। अच्छा आलम जी, कुछ बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी प्राइवेट नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला का,
0: जी।
1: लेकिन दिल्ली में पूरे परिवार के साथ रहता हूँ।
0: अच्छा, काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं आप?
1: जी दीदी।
0: अच्छा ठीक है, जहाँ हमारा दाना पानी लिखा होता है वहाँ तो जाना ही होता
1: हाँ
0: है ना?
1: जी दीदी।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीर रांझा,
0: अच्छा
1: आवाज मोहम्मद रफीक साहब की, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: हाँ, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाना चूज़ किया आपने। अच्छा
1: जी
0: कुछ
1: दीदी।
0: गाते भी हैं आप या यूं ही?
1: नहीं, गाना सुनते हैं सिर्फ
0: अच्छा गाते नहीं, केवल सुनते हैं
1: दीदी।
0: भाई।
1: हाँ
0: सुनते
1: सुनते
0: सुनते
1: हैं
0: थोड़ा
1: सिर्फ।
0: सा गुनगुनाना भी चाहिए। देखिए संगीत तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम इसे अपनाते हैं तो बहुत सारी तकलीफें हमारी कम हो जाती हैं,
1: जी
0: पता है ना
1: दीदी,
0: आपको?
1: संगीत संगीत तो बहुत काम की चीज है। घर में टीवी है, लेकिन टीवी से ज्यादा मैं यही सब प्रोग्राम सुनता हूँ, खत भेजता हूँ, और
0: जी
1: रेडियो ही ज्यादातर सुनता हूँ अपने मोबाइल पे।
0: अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और
1: जी
0: आपकी
1: आपकी आवाज़
0: पसंद,
1: अभी मैं दिल्ली से सुन रहा हूँ।
0: जी ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप इतनी दूर बैठकर भी हमें ठीक से सुन पा रहे हैं, और हम भी
1: जी
0: खुशनसीब
1: दीदी,
0: हैं कि
1: बहुत
0: आपकी
1: काम
0: फरमाइश
1: का।
0: हम पूरी कर पा रहे हैं यहाँ बैठकर।
1: ठीक है दीदी।
0: तो आपकी पसंद का गाना सुने
1: जी दीदी, बहुत मेहरबानी।
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
0: अच्छा नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हमारी बात हो चुकी है पहले भी, हमें याद आया।
1: जी मैम, आज मैंने बहुत दिन बाद कॉल किया और लग भी गया पता।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपने इतने दिनों बाद कॉल किया और आपका कॉल कनेक्ट हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात
1: जी मैम, इसलिए आपको भी बहुत बहुत थैंक
0: है। देखिए,
1: यू।
0: हम तो सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं। अब किसका रिसीव होगा ये तो हम स्वयं भी नहीं जानते कि किसका कॉल रिसीव हो जाएगा, है
1: हाँ,
0: ना?
1: बस सिद्धा से ट्राई करना चाहिए, है ना।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और आज मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है भारत और सॉन्ग है स्लो मोशन,
0: अच्छा,
1: और डेडिकेट रानू दीदी को रहेगा, और मेरी जो मैम अभी जो मैं बात कर रही है
0: अच्छा, ओके, मक्खन लगा रही हैं
1: मंदा मैम के लिए
0: आप।
1: रहेगा।
0: पता है नंदिनी जी, आपकी जो खुशी है वो आपकी आवाज़ से साफ झलक रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए, अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं जीनत परवीन बोल रही हूँ, इंदौर से, कोहिनूर कॉलोनी।
0: अच्छा जीनत जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छी हूँ मैम।
0: अच्छी हैं। अच्छा बताइए, क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ हूँ, बस सभी काम निपटाए हैं, अब तो मैं फोन ट्राई करती हूँ।
0: तो क्या आपने पहली बार कॉल किया है?
1: जी
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया, आपको कॉल कनेक्ट हो गया।
1: जी वैसे कितने दिन बाद लगना चाहिए मैम?
0: ऐसा कोई लिखित में नियम नहीं है कि कितने दिन बाद लगाना है, बस ये है कि फ्रिक्वेंटली ना लगाएं ताकि दूसरे श्रोताओं को भी समय मिले कॉल करने के लिए, है ना?
1: जी।
0: अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कर्तव्य पिक्चर का सुनना है।
0: हाँ अब बताएं कौन सा।
1: दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ।
0: बढ़िया जीना जी, अच्छा गाया आपने, हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गाना, तो लीजिए सुनिए
1: जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो।
0: जी हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, इमेज हॉटलाइन।
0: जी एमएच हॉटलाइन, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार मैडम, दुबे के बगीचे से महेश रायकर।
0: अच्छा, महेश जी कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया मैडम।
0: बढ़िया है, अच्छा। क्या करते हैं आप महेश जी?
1: मैडम मैं क्या है, गुजराती गेस्ट हाउस में हूँ।
0: अच्छा ओके, और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना विक्टोरिया नंबर 203 का मैडम, देखा मैंने देखा।
0: अच्छा, जरूर सुनवाएंगे आपको, आपकी पसंद का गाना। तो क्या पुराने गाने ही सुनते हैं आप या नए भी सुनते
1: जी
0: हैं?
1: मैडम, जी, नहीं पुराने ही मैडम।
0: पुराने ही सुनते हैं। अच्छा, ये किशोर
1: जी
0: कुमार की आवाज़ में है ये गाना, है ना?
1: जी जी जी हाँ जी
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गाना सुने।
1: जी जी
0: ओके
1: थैंक यू मैडम।
0: जी,

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो,
1: फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, हमारे से बात करने में आपका अभिनंदन है। दीदी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
1: निसरपुर जिला धार से संदीप प्रजापत बोला दीदी।
0: अच्छा संदीप जी, अच्छा आपने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की अपनी बातों की।
1: हाँ दीदी, मैं शायरी से स्टार्ट करता हूँ।
0: अच्छा ऐसा, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अंदाज है आपका, अच्छा लगा आपका अंदाज हमें।
1: जी जी, मैंने 1.5 महीने के बाद कॉल किया है आज।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया।
1: और दीदी कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताएं कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अपने फिल्म का टाइटल सुनवा देना दीदी।
0: अपने तो अपने हो।

0: होते हैं, है ना?
1: हाँ, अपने तो अपने होते हैं। और दीदी पूरा गाना सुनाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: देखिए, हम पूरा गाना सुनाने का प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं जो लाइन पर होते हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद का थोड़ा ही सही लेकिन गाना सुनना चाहते हैं। तो हम पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ज़रूर सुनवाएंगे आपको, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं दीदी। सुबह 6 बजे रेडियो चालू करते हैं तो शाम को समाचार 7 बजे आते हैं, उस समाचारों के बाद ही रेडियो बंद करते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे श्रोता ही तो हैं जो रेडियो की जान है, जो रेडियो को आगे लेके जा रहे हैं, है ना?
1: ईट बनाते हैं दीदी फैमिली के साथ, तो ईट भी बनती जाती है और रेडियो भी चलता जाता है, तो टाइम पास भी अच्छा होता है दीदी।
0: यही तो फायदा है रेडियो का, कि ये आपके काम में बाधा नहीं डालता, बल्कि ये आपके काम में सहायक होता है। गाने सुनते सुनाते, है ना, एक अच्छा सा माहौल बन जाता है और काम में मन भी लगता रहता है।
1: जी दीदी, एक दिन मेरा रेडियो किसी कारण की वजह से बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा था, तो उसके कारण रेडियो चल नहीं रहा था दीदी। तो मेरे को उस दिन काम करने में बहुत अटपटा लगा था कि आज रेडियो नहीं चल रहा है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था।
0: अच्छा, तो आप ये क्यों नहीं करते कि मोबाइल पर जो न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, आप उसे डाउनलोड करें, तो इसमें आपको अलग से मतलब रेडियो को चार्ज वार्ज करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपके फ़ोन के साथ आपका रेडियो चलता रहेगा।
1: नहीं तो दीदी, मोबाइल से भी हम चलाते हैं ना, 3 बजे के बाद ये इंदौर बंद हो जाता है दीदी, तो 3 बजे के बाद मोबाइल से विविध भारती चलाते हैं। फिर
0: आप 3 बजे के पहले भी इंदौर केंद्र को सुन सकते हैं। इंदौर केंद्र के दोनों चैनल, विविध भारती और रीजनल, दोनों ही चैनल को आप सुबह से लेकर रात तक जब आप चाहें सुन सकते हैं, उसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है।
1: 3 बजे तक तो हम रेडियो पर ही सुनते हैं दीदी, क्योंकि रेडियो पर आवाज़ अच्छी आती है और रेडियो पर सुनने का फायदा ही कुछ अलग है दीदी।
0: ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, जहाँ आपकी सुविधा हो आप वहाँ सुनिए। बात यह है कि आप कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, है ना? तो ये बड़ी बात है, माध्यम चाहे कोई भी हो सुनने का।
1: सुनती है हमारा हम रेडियो।
0: जी, तो आपकी पसंद का
1: नाम ले लो जल्दी से।
0: जी बिल्कुल।
1: पापा है बाबूलाल प्रजापत, मम्मी है गंगा भाई प्रजापत, भाई है लखन प्रजापत, मैं हूँ संदीप प्रजापत, मेरी वाइफ है कला प्रजापत, मेरा लड़का है देवांश प्रजापत, लड़की है खुशी प्रजापत, और पूरा परिवार मिलकर आपका रेडियो सुनते हैं दीदी।
0: तो हम बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आपका पूरा परिवार रेडियो को सुन रहा है, और हम सभी को यहाँ से नमस्कार करते हैं हमारी ओर से, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गाना।
1: थैंक यू दीदी।
0: जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार,
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोक नगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: अच्छा, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं सूर्य प्रताप जी?
1: फिल्म का नाम है फिदा और गाने के बोल रहे हैं दिल मेरे ना और इंतजार कर।
0: अच्छा ठीक है, ज़रूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना। अच्छा बताइए, क्या कर रहे थे आप अभी?
1: अभी मैं कॉल ट्राई कर रहा था, बहुत देर से लग ही नहीं रहा था मैं पर।
0: फाइनली लग गया ना?
1: हाँ मैम, एक सुझाव देना चाहता हूँ मैं।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
1: ये आप 2 नंबर चलाती हैं तो कई बार क्या लगता है समझ में नहीं आता है कि कौन सा वाला मतलब रिसीव होगा कौन सा वाला नहीं होगा, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप 1 नंबर चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
0: देखिए, आपका जो सुझाव है हमने नोट कर लिया है और हम
1: हाँ
0: इसको हमारे तकनीकी विभाग को ज़रूर बताएंगे कि जैसा फिर उन्हें आगे उचित लगेगा वैसा कर लिया जाएगा। वैसे
1: या फिर आप ऐसा करें कि एक एक नंबर पर एक एक श्रोता को लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही नंबर पर आप लेती हैं तो कई बार वो समझ में नहीं आता है, तो बहुत मेहनत लग जाती।
0: नहीं, सूर्य प्रताप जी, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर से कॉल लेते हैं। एक्चुअली कभी इस नंबर से कभी उस नंबर से रैंडमली कॉल हम रिसीव करते हैं, है ना? और दो नंबर देखा जाए तो सुविधाजनक भी है कि
1: अच्छा
0: जैसे किसी श्रोता ने लगाया, इस पे नहीं लग रहा है मान लीजिए, तो दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं, है ना? लेकिन फिर भी
1: ये
0: आपने
1: तो
0: जो
1: है।
0: कहा वो भी आपकी जगह पर ठीक है, तो वो भी हम ज़रूर आगे इस बात को भेजेंगे।
1: हाँ, क्योंकि एक नंबर रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मतलब कौन से नंबर पे लगाएगा।
0: जी हाँ, एक तो कॉल नहीं लग रहा, उस पर कन्फ्यूज़न भी है तो दिक्कत होती
1: हाँ
0: होगी।
1: हाँ
0: चलिए अच्छा ठीक है, तो आपकी पसंद का गाना सुने।
1: ठीक है वंदना जी, थैंक यू।
0: ओके।

0: एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैम
0: श्रीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप श्रीपाल जी?
1: मैम ठीक है मैम, बस आपके बात सुनिए और मैम जो है कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे और मैं जो है कॉल लगा दिया आपको। हाँ जी मैम।
0: श्रीपाल जी, आपसे हमारी बात हो चुकी है पहले भी?
1: यस मैम, जी जी बिल्कुल
0: याद है हमें। आपने बताया था कि आप कहीं बाहर से अप डाउन करते हैं दिल्ली, है ना?
1: हाँ जी मैम, हरियाणा से मैम, हरियाणा बहादुरगढ़ से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ हैं? हरियाणा में ही है कि दिल्ली पहुँच गए?
1: नहीं, दिल्ली पहुँच गए मैम, अपने काम पे, अभी ऑफिस में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम फिल्म का नाम ही वही है जो आपका नाम है, फिल्म का नाम वंदना और गाना है आपके इनायत आपके कलम। और मैम हमारा ग्रुप है हेलो फॉर्मेश, एक साइड ग्रुप, उनको साथी हैं, अगर आप कहें तो नाम ले लें उनके।
0: हाँ जी हाँ जी, प्लीज़ बिल्कुल।
1: जी जी मैम, लोकेंद्र जी हैं और योगेश जांगड़े जी हैं एंड गौतम जी हैं, और मैम बहुत सारे हैं, दिलीप जी हैं, दिलीप पाहुजा।
0: अच्छा, तो आपके जो बहुत सारे साथी हैं उन सभी बहुत सारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी धन्यवाद मैम, वो मैम सब मैं जो है सुन रहे हैं आपको अभी।
0: अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो आप सभी लोग रेडियो सुनते हुए काम करते हैं या अलग अलग चले जाते हैं अपने अपने काम पर?
1: मैम सुनते हुए रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और मन इसमें फिर लगा रहता है संगीत के द्वारा, संगीत सुनते हैं तो काम भी अच्छा होता है हमारा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी कुछ देर पहले हम अपने किसी श्रोता से यही बात कर रहे थे कि काम जब करते हैं तो रेडियो सुनते हुए काम करते रहना अच्छा लगता है, मन लग जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी।
0: तो श्रीपाल जी, आपकी पसंद का गाना सुने।
1: जी मैम बिल्कुल, धन्यवाद आपका
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी दूर से और इतने सुंदर प्रदेश से हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी से कुछ राहत सी महसूस होने लगी हिमाचल प्रदेश का नाम सुनकर।
1: बहन जी, राहत क्या, जहां तो ठंड भी पड़ने लगी है एक बार फिर से।
0: क्या बात है, हम तो सुन के ही मतलब तृप्त हो गए कि आह हा, इतनी गर्मी के मौसम में हिमाचल से कॉल आया हमारे पास।
1: हाँ, हिमाचल में तो जहाँ गर्मी का कोई नामो निशान ही नहीं है और बिल्कुल ठंड सी महसूस होने लगी, जैसे जनवरी का महीना।
0: बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आप इतने अच्छे प्रदेश में इतने अच्छे मौसम के बीच रहते हैं। अच्छा जगदीश
1: तो
0: जी,
1: बहन
0: गाना बताएं, कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म है जी पारस। गीत के बोल हैं, तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे।
0: जी, हम जरूर सुनवाएंगे आपको। अच्छा कुछ बताएं अपने बारे में, क्या हॉबी है आपकी?
1: बस बहन जी, मैं तो बस गीत संगीत सुनता रहता हूँ, इसी में ही जीता हूँ, इसी में ही पूरा जीवन बिताया है और आगे का जितना भी है इसी में बता देंगे, संगीत संगीत में।
0: अच्छा कुल मिला के संगीत प्रेमी हैं आप।
1: बहुत बहुत संगीत प्रेमी है बहन जी, मैं तो बस गीतों से सारा भर रहता हूँ 24 घंटे।
0: अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संगीत तो होना ही चाहिए, हर एक के जीवन में संगीत का कुछ ना कुछ भाग अवश्य होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, संगीत के बिना तो जीवन अधूरा सा लगता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जगदीश जी, आपके पसंद का गीत सुनाए आपको?
1: हाँ, सुनवा दीजिए बहन
0: हाँ
1: जी,
0: जी,
1: सुनवा दीजिए।
0: लीजिए सुनिए
1: धन्यवाद बहन जी।
0: जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय डोंगरगांव महू से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से गाना बता दीजिए।
1: देखिए, हम तो हमेशा अपनी पसंद के सुनते हैं, आज आप अपनी पसंद का कोई डुएट सॉन्ग सुनाएं।
0: ठीक है, हम जरूर सुनाएंगे आपको अपने पसंद का डुएट, क्योंकि समय जो है बहुत थोड़ा सा बचा है, तो आपको सुनवाएं आपकी पसंद का गाना। आपकी पसंद का नहीं, एक्चुअली हमारी पसंद का।
1: नहीं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, एक लाइन भी चल जाएगी जो भी सुना रहे हैं। स्वागत है, थैंक यू
0: जी। लीजिए, सुनिए।
1: ओके, बाय। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो साथी वंदना तिवारी को अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: 0755 हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। बस आपसे एक गुजारिश है कि एक कॉलर हफ्ते में एक बार फोन लगाएं ताकि अधिक से अधिक श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ सके। तो आइए बातचीत करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
3: हाँ, फोन करके सुने।
2: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। जी
3: मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते,
3: मैं ग्राम उलझाव से बोल रही हूँ, गेंदालाल परिहार।
2: गेंदालाल परिहार जी।
3: जी
2: बताएं कुछ।
3: बढ़िया।
2: आपके गांव के क्या हालचाल हैं? आप कैसे हैं?
3: सिलाई काम चल रहा है मेरा।
2: सिलाई का काम चल रहा है आपका?
3: हाँ मैडम, जो थोड़ा सीजन में काम हो गया शादी ब्याह का।
2: तो अभी आप फ्री हैं?
3: नहीं, फ्री तो नहीं है, काम तो बहुत है। फ्री तो रहते ही नहीं है वैसे। हाँ मैडम, लड़के हैं दो मेरे साथ में काम करते हैं।
2: तो आप
3: गांव लगे, 6-7 गांव लगे हुए हैं, तो अच्छा काम आता रहता अपने चौराहे की दुकान है।
2: अच्छा काम आता है। तो किस तरह का, मतलब किस तरह के कपड़े सिलते हैं? जेंट्स के, लेडीज के, किसके?
3: जेंट्स सिलते हैं मैडम, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जैकेट वगैरह सभी।
2: अच्छा, पर आजकल तो पैंट शर्ट जो हैं वो सिलवाने में ज्यादा शायद महंगे पड़ते हैं। नहीं
3: सिलवाते ही हैं मैडम जी ज्यादातर, क्योंकि ऑफिस में भी लोगों को ये सिलाई कपड़े पहनते ज्यादा, ऑफिस वाले भी। जीन्स वगैरह नहीं पहनने देते ज्यादातर ऑफिस में भी।
2: अच्छा,
3: सिल्क के पहनते हैं ज्यादा लोग
2: जी। चलिए, आज आपकी पसंद क्या है बताएं?
3: मैडम, पुतली बाई फिल्म की कव्वाली है।
2: पुतली बाई फिल्म की कव्वाली
3: जी।
2: कौन सी है?
3: कैसे बेशर्मा आशिक है ये आज के।
2: अच्छा, इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे?
3: फिर निकाह फिल्म का सुना दीजिए मैडम।
2: निकाह फिल्म का कौन सा?
3: बीते हुए लम्हों की कसक आज।
2: अच्छा चलिए, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद
3: मैडम, अगर पहली पसंद मिल जाए तो अच्छा है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। कोशिश करते हैं हम आपकी पहली पसंद मिल जाए आपको।
3: ऐसे गाने बहुत कम मिलते हैं सुनने को।
2: बिल्कुल सही, इसलिए हमने भी पहली बार ये सुना है। फरमाइश पहली बार किसी श्रोता की आई है। कोशिश करते हैं हम आपकी फरमाइश पूरी करने की।
3: जी मैम,
2: नमस्कार।

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेबो मकरू में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है
0: कहाँ से?
1: जी। हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश में जगह कौन सी?
1: नहीं, हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमें एक गाना सुनना था।
0: नहीं तो जगह का नाम तो होगा ना। आप मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है।
1: अच्छा, शिवनी जिला खमरिया,
0: अच्छा, खमरिया से बोल रहे हैं। कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: लाल दुपट्टा उड़ गया रे वाला गाना सुना दे।
0: मुझसे शादी करोगे फिल्म का। अच्छा, क्या करते हैं आप
1: जी,
0: खेमरिया गांव में? क्या करते हैं?
1: हमारी 10वीं अभी हो चुकी है, अब 11वीं में जाएंगे, तो अभी छुट्टियां लगी तो हम गांव आए हैं।
0: अच्छा, गांव आए। वैसे कहाँ पढ़ते हैं आप?
1: जैसे हम नागपुर में पढ़ते हैं।
0: नागपुर में पढ़ते हैं। तो नागपुर में तो बहुत गर्मी पड़ती है ना,
1: हाँ, अभी तो बहुत गर्मी है, इसलिए हम गांव आ चुके हैं।
0: तो अभी आप परीक्षा परिणाम आपका कैसा रहा अभी?
1: अभी तो परीक्षा परिणाम का कुछ अभी आया नहीं है, वैसे वो मई में ही आ जाता है।
0: अच्छा, महाराष्ट्र से दिया आपने, अभी नहीं आया आपका?
1: नहीं,
0: अच्छा, चलिए आपकी पसंद का गीत सुनिए आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।

0: हेलो,
1: आकाशवाणी भोपाल से। जी
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है,
1: थैंक यू
0: फोन
1: मैम।
0: करें, गीत सुने।
1: जी जी थैंक यू मैम। मैं रानी कलिए छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ।
0: रशीद अहमद खान जी, जी
1: जी
0: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी मैंने आपका नियमित श्रोता हूँ, पुराना श्रोता हूँ मैं, और अंतराल के बाद ही मैं फोन लगाता हूँ मैं आप लोगों को।
0: जी बहुत अच्छा काम करते हैं आप, ये सभी श्रोता ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। और
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: बताएं, क्या हाल चाल है
1: जी हाँ
0: आपके?
1: हाँ मतलब हम ये बता रहे हैं, थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं हम, क्योंकि फोन थोड़ा सा देर में लग पाता है, तो अगले संडे यानी दूसरा रविवार जो पड़ेगा वो मदर्स डे है, तो मदर्स डे के लिए सभी माताओं के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं।
0: जी
1: और दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ मैं। तंग
0: बोले।
1: राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जिस दिन सजदा कर लिया माँ के कदमों पर, उस दिन सारी दुनिया से ऊंचा मेरा सर लगता है।
0: अरे बहुत अच्छी आपने कविता
1: माता पिता का सम्मान
0: सुनाई।
1: हमें हर हालत में करना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग हैं।
0: जी वो हैं
1: क्योंकि
0: तो सब
1: आजकल ये
0: कुछ
1: देख रहे हैं
0: है।
1: अपन के नई
0: हाँ
1: जनरेशन जो है उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही माता पिताओं को, लोग वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं, ये बहुत ही गलत चीज
0: जी
1: है ना। क्योंकि माता पिता का उपकार अपन कभी नहीं भुला सकते। माँ एक एक अक्षर का शब्द है ये, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ समाहित हो,
0: सारी दुनिया समाई है
1: है ना। इसमें
0: जी।
1: अगर लिखने बैठे अपन तो शब्द और अक्षर, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे, स्याही पेपर कागज कम पड़ जाएंगे।
0: बिल्कुल अच्छी बात कही आपने ये बात।
1: जी
0: चलिए तो फिर पसंद

0: भी बता दीजिए अब जल्दी से।
1: जी, पसंद हम दो गाने बता रहे, जो भी मिल जाए उसको आप सुनवा दीजिएगा। पहला गाना है कि फिल्म का नाम है जैसे को तैसा,
0: जी
1: उसमें गाना है कि कौन सी ये चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं,
0: माँ
1: है
0: नहीं मिलती।
1: ना। अगर ये ना
0: हाँ
1: मिले तो दूसरा है फिल्म दादी माँ का,
0: जी
1: उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी, माँ तेरी भगवान की सूरत क्या होगी,
0: अच्छा,
1: ये
0: आप
1: वाला सुनवा दें
0: आज
1: आप
0: से ही सुनना
1: तो अच्छा
0: चाहेंगे
1: रहेगा।
0: माँ के, माँ को समर्पित गीत।
1: जी,
0: बहुत
1: कोई भी एक
0: चलिए
1: माँ को समर्पित जी सुनवा दें, और सभी के लिए मतलब मैं शुभकामनाएं करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें, क्योंकि
0: जी
1: उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग हैं। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है ना, तो प्लीज थोड़ा
0: आपके,
1: सबका ध्यान रखें।
0: आपका ये संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है। फोन करने के लिए
1: जी
0: धन्यवाद। नमस्कार
1: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार।
0: जी।

0: हेलो, कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, आकाशवाणी मध्य
1: नमस्कार।
0: प्रदेश से प्रसारित हो रहा है। हम किससे
1: नमस्कार
0: बात कर रहे
1: मैडम
0: हैं, नाम बताएंगे आप?
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हम आपके पुराने रेडियो श्रोता संघ में शिवपुरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परियार बात कर रहा हूँ। दीदी
0: और सीपरी के क्या हाल है?
1: जी, गर्मी पड़ रही है भयंकर।
0: तो आप क्या
1: बहुत बहुत
0: व्यवस्था
1: ठंड
0: गर्मी
1: है।
0: के लिए आपने की है?
1: क्या
0: क्या व्यवस्था करके रखते हैं घर में गर्मी के लिए?
1: उसने दीदी, मतलब गांव में रहते हैं हम, शिवपुरी से थोड़ा गांव 20-25 किलोमीटर, रामखेड़ी गांव से बात कर रहा हूँ।
0: रामखेड़ी गांव से नहीं,
1: जी
0: कहीं
1: जी
0: भी अपन
1: हम
0: घर में कुछ गर्मी से जिससे राहत मिले हमें, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं घर पे हैं?
1: जी बिल्कुल दीदी, क्या है,
0: हाँ,
1: मटा मटा भी है अपना, घर का मटा है, अपनी गैया है हमारे पास
0: अच्छा, घर पे फिर तो मठा है, छाछ पीजिए रोज, ठंडक
1: जी।
0: पहुंचाएगा। हाँ।
1: और बिल्कुल पेड़ है बढ़िया, आम के नीम के पेड़ जो दिन में अब पूरा आम हमारे लिए राह देते हैं, बढ़िया
0: जी,
1: आराम करते हैं उनके नीचे। बिल्कुल
0: उनके नीचे आराम करते हैं। हवा ठंडी लगती है कि नहीं?
1: बिल्कुल दीदी,
0: अच्छा, ठंडी हवा। चलिए, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आप कौन दीदी बोल रही
0: मैं
1: हैं? जी
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: नमस्कार छाया जी। जी
0: नमस्कार जी, बताएं।
1: मुझे गाना सुनना है, वो सत्यमेव जयते फिल्म का, आंखों में तुम। जी
0: ये गाना इसी फिल्म का है?
1: जी जी
0: चलिए सुनवाते हैं फिर आपको गीत।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम बोल रहे हैं।
1: किसने कार्य से लेना? आपका क्या नाम है?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ
1: छाया पाठक, यहाँ तेरे सुनता हूँ रेडियो में।
0: जी।
1: मेरे गाना सुनना, गाना सुनना, मेरे को मेरा गाँव मेरे देश का गाना सुनना है।
0: आप बहुत जल्दबाजी में हैं, क्या बात है। आप मेरा गांव मेरा देश का गीत सुनना है वो ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ
1: मैं बोल
0: अपना
1: रहा हूँ ग्वालियर से, बोल रहा हूँ ग्राम संदलपुर आदरी के पास, गाँव मेरा में ग्वालियर के पास में,
0: और अपना नाम
1: कालीचरण यादव, ग्राम संदलपुर आदरी से, कालीचरण
0: कौन बोल रहे हैं ये तो बताएं।
1: यादव
0: सालीग्राम यादव।
1: जी।
0: अच्छा चलिए, तो मेरा गांव मेरा देश का कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: मार दिया छोड़ दिया जाए।
0: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
1: हाँ कल आएगा ना जी प्रोग्राम 11 बजे से।
0: कल आएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी नमस्ते मैम जी,
0: नमस्ते,
1: मैं अरविंद अग्रवाल श्रीनगर जिला महोबा बोल रहा हूँ।
0: अरविंद अग्रवाल
1: जी
0: महोबा से
1: श्रीनगर जिला महोबा। हाँ जी,
0: बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: फिल्म शराबी का लगता मंगा गई।
0: शराबी फिल्म का गीत, ये आप ही की पसंद है या किसी और की?
1: नहीं मेरी ही है, सभी
0: और घर में कौन कौन है?
1: लोग हैं, माता जी हैं, हम दोनों हैं, बच्चे हैं।
0: क्या करते हैं आप काम?

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी नमस्कार बहन जी। जी
0: नमस्कार।
1: मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अजमेर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी। अरे
0: उत्तर प्रदेश से बहुत गर्मी पड़ रही होगी वहां तो।
1: बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है हमारे यहाँ तो, और पहाड़ी क्षेत्र से और अधिक गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ तो। तालाब
0: आपका क्षेत्र
1: वगैरह तो
0: पहाड़ी
1: नदियाँ
0: है?
1: वगैरह है नहीं
0: अच्छा,
1: जी, तो
0: तालाब
1: यहाँ तो
0: वगैरह
1: बहुत
0: कुछ नहीं,
1: ज्यादा क्षेत्र
0: आसपास
1: है।
0: हरियाली भी नहीं है?
1: नहीं, क्या है तो फिर हमें आपने मतलब हरियाली तो बहुत थी हमारे यहाँ पहाड़ों पर, बहुत अच्छे पेड़ थे, एकदम
0: जी,
1: ढका रहता था पूरा पहाड़,
0: फिर
1: लेकिन हमें आपने बस उसको बर्बाद कर दिया, मिटा दिया
0: मिटा दिया। ये
1: जी।
0: बात तो
1: तो
0: सही
1: भुगत
0: कह रहे
1: रहे
0: हो।
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारे यहाँ भी एक स्थान है सिद्ध बाबा का,
0: सिद्ध बाबा का
1: तो
0: स्थान।
1: काफी एरिया में मतलब वहाँ पे जो बाबा जी रहते हैं वो पेड़ काटने नहीं देते हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा लगने लगा, मतलब पेड़ लगाए नहीं है और ऑटोमेटिक उसकी सुरक्षा की है, तो सुरक्षा ऑटोमेटिक इतने पेड़ इतना घना जंगल हो गया, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी छाव रहती है वहाँ पे। तो
0: अच्छा, तो आप महोबा में ही रहते हैं?
1: जी, और वन विभाग भी है हमारे यहाँ, लेकिन
0: अच्छा
1: वन विभाग क्या उसकी सुरक्षा नहीं कर पाती है,
0: जी।
1: पेड़ हर साल लगाए जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता वो पेड़ कहाँ जाते हैं, और मेरी समझ से अगर पेड़ों को ना लगाकर सिर्फ सुरक्षा भी हो जाए, सिर्फ 5 साल रखवाली हो जाए अच्छे से, इतना घना जंगल हो जाएगा क्या
0: अब वो
1: बताऊँ
0: सबको
1: आपको।
0: आगे आना पड़ता है, पर सब ऐसा नहीं सोचते
1: जी
0: ना।
1: जी जी बिल्कुल, सबको
0: आपके
1: आगे
0: जैसी
1: आना
0: सोच
1: पड़ता है
0: सब
1: जी।
0: रखें तो फिर तो हरियाली ही हरियाली है चहुं ओर। बताएं आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज आप फिल्म का नाम है राज
0: राज कौन
1: जी,
0: सा?
1: इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे।
0: जी

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: जी।
0: नमस्कार जी, बताएं, नाम बताएं अपना।
1: जी मैं आपका नेम सोता मैम जी, जय नरसिंहदेव, FM रेडियो गुरु ग्राम करकबीर तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूँ जी।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, श्रोता होने के नाते। अब गर्मी भी पड़ रही मैम जी, और कह सकते हैं थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो दोनों चीज का आनंद ले रहे हैं।
0: दोनों चीज का आनंद ले रहे हैं। दोनों चीज का आनंद एक साथ कैसे ले पा रहे हैं?
1: क्यों नहीं ले सकते मैम जी, रात में कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, दिन में पसीना पहुंच रहे हैं।
0: अच्छा, इस तरह से। ठीक, चलिए
1: तो
0: बताएं आज की फिर गीत कौन सा सुनवा दें आपको।
1: मैम जी एक बात और रख दूं थोड़ी सी, कि हमारे बीच में एक श्रोता है जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: सत्यम नेमा
0: सत्यम नेमा,
1: जी,
0: आप भी यहीं से
1: कमलेश
0: हैं?
1: भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनके क्षेत्र में हम जनगणना का पहला चरण पूरा पूरा कर रहे हैं
0: अच्छा, आपकी ड्यूटी लगी जनगणना में।
1: जी। तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा संदेश जनहित में प्रसारित किए जाएं, जिससे कि घर घर में जो लोग उपलब्ध रहते वो हम लोगों का पूरा सहयोग
0: सहयोग
1: करें,
0: करें, सही जानकारी दें,
1: जो
0: पूरा
1: भीषण
0: सहयोग करें।
1: गर्मी में जाना और वहाँ पे दरवाजे बंद मिलना थोड़ा कभी कभी कष्टदायी हो जाता है।
0: नहीं, आपके माध्यम से संदेश घर घर तक पहुंचेगा और उम्मीद
1: जी
0: है कि लोग आपको जो है सहयोग करेंगे।
1: जी राष्ट्रहित का कार्य है, और इसमें अगर प्रगणक को जन जन का सहयोग मिले, हर घर का सहयोग मिले, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा कार्यक्रम।
0: चले, आपकी पसंद है कोई सी या फिर कमलेश जी की पसंद है? किसकी पसंद का गीत सुनना है आप बताएं।
1: हाँ कमलेश,
0: क्यों आपकी पसंद नहीं है कोई?
1: मैं अभी उसमें चला जाऊंगा फील्ड में, फिर कमलेश बताएगा कि कौन सा गीत सुना था, फिर हम
0: देखिए,
1: लोग
0: ये
1: रिकॉर्डिंग कर
0: गाना
1: लेते
0: तो
1: हैं मोबाइल पे
0: अच्छा,
1: और फिर उसको सुनते हैं।
0: ऐसा करते हैं।
1: हाँ
0: ठीक है, तो
1: बाकी तो फिर
0: आपकी
1: वो
0: पसंद की
1: आदमी
0: कर
1: वो
0: लीजिए।
1: साथ चले
0: कमलेश जी तो
1: आता है
0: नीमिश
1: जाता है।
0: जी।
1: बहन जी अपनापन फिल्म का गीत है, आदमी मुसाफिर है,
0: अच्छा
1: आता है जाता है, आते जाते रास्ते में,

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: मैं निकली सहरवार, रायसेन जिला, तहसील उदयपुरा, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज बताएं।
1: वैसे मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम लाइव है या इसकी रिकॉर्डिंग होने लगी?
0: रिकॉर्डिंग होती है आजकल?
1: रिकॉर्डिंग होती है,
0: हाँ, 10:30 बजे से
1: इसको
0: रिकॉर्डिंग होती है,
1: कब
0: तो
1: सुनवाया जाता
0: ये
1: है? इसको
0: कल कल सुनवाएंगे।
1: कल सुनवाओ।
0: जिस भी दिन होती है उसके अगले दिन सुनवाते हैं, आज नहीं आएगा।
1: जी मैम, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जानकारी ले लूं।
0: नहीं, चलिए, आपके माध्यम से सब सब इस जानकारी को सुन पाएंगे। प्रतिदिन रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से। एक दिन फोन करें, गीत सुने होता है कार्यक्रम, एक दिन बाद आपकी गीत हमारे। अब
1: तो
0: बताएं।
1: मुझे
0: हाँ,
1: गीत सुनना था, मूवी का नाम है अजय,
0: अजय।
1: अरे सनी देओल की, उसमें एक गाना है वो शादी से रिलेटेड, वो गाना सुनने था।
0: शादी से रिलेटेड जो भी गाना हो वो सुनवा दें।
1: शादी से रिलेटेड एक गाना है वो, चंचल चूड़ियां थनका के मेहंदी हाथों मेरा चाके, ये सच एक गाना है।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम बस आज यहीं तक। आगे दीजिए छाया पाठक को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 167 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा 79 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस केवल 24 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 57 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ केवल 44 सीटों पर और एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय दलपति की पार्टी टीवीके 108 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 63 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 41 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत कृषि कार्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9 से 13 जून तक इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति निर्धारक शामिल होंगे। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी को लेकर आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख लोग शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12 बजे हैं और ये समय होता है आपके मनपसंद कार्यक्रम, आपकी पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा।

नमस्कार श्रोताओं, चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा पिटारा है जो अनमोल है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी को हाथ से लिखी चिट्ठी भेजना सबसे महंगे और कीमती उपहार में से एक है। और ऐसा उपहार हमें रोज मिलता है आपके लिखे पत्रों के माध्यम से। इस उपहार में आपका समय और भावनाएं निवेश होती हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के भावनाओं से भरे पिटारे में से कौन कौन से गीत निकलते हैं। फरमाइशी पहला गीत है फिल्म शक्ति से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और इसे संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म शक्ति का ये गीत।

छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जूली का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार ने। संगीत राजेश रोशन का है और गीत है आनंद बख्शी का। लीजिए सुनिए।

गांव बड़भूंजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता, आयुष और ओम प्रकाश। साथ ही जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में फिल्म सिलसिला का गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत है शिव हरी का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती

तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा गीत। गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है राही बदल गए। पसंद आप सभी की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है शाजापुर नई सड़क से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश, सरोज आरती, रेखा और राजावत परिवार के सभी सदस्यों ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राही बदल गए का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: ओहो क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की पांचवी कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की पांचवी कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी विमाता। ये कहानी दरवाजा, प्रेम पचीसी, मानसरोवर भाग 8, बूढ़ी काकी तथा अन्य कहानियों के संकलन में संग्रहित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी विमाता का रेडियो रूपांतरण।
1: श्यामा, श्यामा तुम चिंता मत करो। वैजी कह रहे हैं कि तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी।
2: ये बुखार तो मेरी जान लेकर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी।
1: नहीं,
2: मुन्नु के बाऊजी, देखो मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो नन्हे की फिक्र खाए जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा?
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हिम्मत रखो।
2: मुन्नू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं?
3: माँ, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है?
1: कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे मन्नू, माँ जल्दी अच्छी हो जाएंगे।
2: देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है। मेरे बाद तुम्हारा और मुन्नू का ख्याल कौन रखेगा? तुमसे एक विनती है।
1: हाँ श्यामा।
2: क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे?
1: ऐसी बातें क्यों करती हो श्यामा तुम?
2: देखो, मेरे पास समय बहुत कम है। मुन्नू का क्या होगा, यही सोचकर मेरे प्राण अटके हैं। इतने छोटे बच्चे को तुम कैसे पालोगे? देखो, मेरे बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना।
1: क्या कह रही हो तुम?
2: देखो, मना मत करो, इससे मुन्नू को दूसरी माँ मिल जाएगी।
1: नहीं श्यामा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
2: देखो, वादा करो, वादा करो।
1: श्यामा, श्यामा, श्यामा, श्यामा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती श्यामा।

0: शिव प्रसाद, होनी को भला कौन टाल सकता है? खुद को संभालो, हिम्मत रखो भाई।
1: माँ तुम्हें क्या हुआ है? माँ, पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है?
0: माँ बहुत दूर चली गई है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता।
1: माँ, माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? माँ, पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है।
2: मेरी बात सुनो मुन्नू बेटा।
1: नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है पिताजी, मुझे माँ के पास जाना है।
2: मुन्नू,

0: शिव प्रसाद बेटा, बेटा 2 महीने हो गए श्यामा को गुजरे, मुन्नू का ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। कितना लगाव था इसे श्यामा से, तुम ही बताओ कैसे रह पाएगा ये माँ के बगैर। इतने छोटे बच्चे को एक माँ ही संभाल सकती है। शिव बेटा, अपना ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी।
1: लेकिन काकी, क्या ये ठीक रहेगा? क्या दूसरी औरत मन्नू को सगी माँ जैसा प्यार दे सकेगी?
2: क्यों नहीं दे सकेगी, दुनिया में अच्छी आत्माएं भी तो हैं।
0: हाँ भाई साहब, मेरी चचेरी बहन है, बहुत ही घरेलू और सुशील लड़की है, अंबा नाम है उसका। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आपके घर को संभाल सकेगी और मुन्नू को माँ का प्यार भी दे सकेगी। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे चलाऊं।

0: हमारे परिवार में आपका स्वागत है अम्बा। देखिए, इससे पहले कि हम आप और तुम के शिष्टाचार से बाहर निकलें, मैं आपको बता दूं कि जिन परिस्थितियों में हमारा विवाह हुआ है वो साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि श्यामा की मृत्यु के 3 महीने बाद दूसरा विवाह करना उसकी आत्मा के साथ अन्याय है, जो किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। इस विषय में मेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल है और मैं आशा करता हूं कि भगवान मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि हर नवविवाहिता की तरह आपकी भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं अवश्य होंगी, लेकिन मेरा इन सब बातों को आपसे कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मैं आप में अपने भोले बालक मुन्नू की मां की छवि देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने प्यार से मुन्नू के दिल से मां की मृत्यु का शोक हमेशा हमेशा के लिए भुला दें।
1: जी, मैं जी जान से कोशिश करूंगी कि मुन्नू को मां की कमी का एहसास ही ना हो। हालांकि समय साक्षी है कि किसी भी युग में सौतेला शब्द संदेह सूचक ही रहा है, फिर भी मैं अपना सब कुछ लुटाकर यही कोशिश करूंगी कि सौतेलेपन की कालिमा जो मेरे माथे पर लगी है वो मिटा सकूं।
0: अब मैं क्या कहूं। मुन्नू, बेटा मुन्नू, यहां आओ, लगता है थककर सो गया है।
1: चलिए हम वहीं चलते हैं।
0: हाँ, आओ चलते हैं। मुन्नू बेटा, देखो तो, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है।

0: मुन्नु बेटा लो ये दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं माँ के हाथ से ही दूध पीऊंगा।
0: बेटा माँ मंदिर तक गई है, अभी आती होंगी। जब तक तुम दूध पी लो।
1: नहीं नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा।
0: ओहो
1: माँ आ गई मैं खोलूंगा।
0: आइए आइए, संभालिए अपने लाडले को। भाई इसने तो मुझे परेशान कर दिया। हाँ इन्हें अपनी माँ के हाथ से ही दूध पीना है, तुमने भी इसे अपने लाड़ प्यार से जिद्दी बना दिया।
2: आप हटिए, ये तो मेरा प्यारा बेटा है। लो बेटा अपने पिता को एक सांस में ही दूध पीकर दिखा दो।
0: वाकई अम्मा तुमने तो मुन्नू पर जादू सा कर दिया है। बेटा मुझे अभी काम पर जाना है, तुम अपनी माँ के साथ खेलो। हम शाम को घूमने चलेंगे फिर। अच्छा चलता हूँ मैं।

0: मुझे ढूंढो, मैं कहां हूं?
1: मुन्नू कहां हो तुम बेटा? देखो किसी ऐसी वैसी जगह मत छुप जाना। अरे मुन्नू बेटा, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए।
0: माँ मैं यहाँ हूँ।
1: अरे बेटा कहाँ छुप गया? नटखट कहीं का, जरा ठहर तो, बदमाश कहीं का।
0: मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ, देखता हूँ माँ मुझे कैसे ढूंढती है।
1: यहाँ ढूंढती हूँ, यहाँ होगा वो। अरे यहाँ भी नहीं है। आ, आ, पकड़ लिया।
2: अरे मुन्नू
0: धप्पा,
1: ठहर तो, शरीर कहीं का। आ, आ, गोद में उठा लेती हूँ। मेरा प्यारा बेटा।
3: ये क्या हो रहा है भाई? माँ बेटे के बीच में? अच्छा मुन्नू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने चलना है ना।
1: और हाँ लो पार्क में ये स्वेटर पहन लेना। हाँ। इसे उतारना मत वरना सर्दी लग जाएगी।
3: हाँ।
1: ये जूते पहन लो और अब जल्दी से मुझे पुच्ची दो।
3: इधर भी, इधर भी, इधर भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

0: मैं एक ले लूं?
1: नहीं बेटा, फूल पौधे पर ही सुंदर लगते हैं। तुम एक काम करो, वो नीचे गिरे हुए जो फूल है ना, हाँ उन्हें उठा लो।
0: अच्छा पिताजी।
2: और इस प्रकार विवाह को 2 महीने बीत गए। शिव प्रसाद और अंबा दोनों ही इस प्रयास में रहे कि श्यामा की मृत्यु का शोक मुन्नो के दिल से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। शिव प्रसाद काम से लौटकर मुन्नो को रोजाना सैर को ले जाते और लौटते समय अपने मित्रों से उसे मिलवाते। मुन्नो की विलक्षण बुद्धि प्रतिभा और बाल सुलभ हरकतों से सभी मित्र बहुत प्रभावित थे और उसे बहुत प्यार करते थे। रोजाना की तरह एक दिन शिवप्रसाद मुन्नो को लेकर सैर पर निकले और अपने परम मित्र ज्वाला सिंह के घर जा पहुंचे।
3: आइए आइए शिवप्रसाद जी, और कैसे हो मुन्नो बेटा, कहां से आ रहे हैं आप लोग?
1: जी बस घूमते घूमते चले आए, सोचा बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए।
3: बड़ा अच्छा किया। और सुनाइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी ईश्वर की कृपा है, जब से अंबा आई है घर तो जैसे स्वर्ग बन गया है। मुन्नू पर तो वो अपनी जान छिड़कती है।
3: क्यों बेटा मुन्नू, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है ना?
4: अंबा के विषय में और इस सवाल के उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। इतने कम समय में किस प्रकार मुन्नू को अपने रंग में रंग लिया है, यही सोचकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। अरे मगर ये क्या, मुन्नू की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या अंबा ने मुन्नू को आज कुछ कहा है? क्या अंबा मुन्नू को प्यार नहीं करती? कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है। मेरे दिल में जो अंबा की ममतामय छवि थी उसका चित्र लगता है टूट रहा है।
5: ये तो मुन्नू रो रहा है, मुझे शायद मुन्नू से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अभी शिवप्रसाद की शादी को हुए सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, हो सकता है अंबा को बच्चे को समझने में कहीं कुछ कमी रह गई हो। और फिर अंबा का मां बनने का ये पहला ही अवसर है। लेकिन शिवप्रसाद बाबू तो अंबा की तारीफ करते थकते ही नहीं थे कि अंबा मुन्नू का कितना ख्याल रखती है। लेकिन बच्चे की आंखों के आंसू तो झूठ नहीं बोल रहे। तो क्या शिव बाबू ने मुझसे कुछ छुपाया है? माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम बहुत सी बातें आपस में एक दूसरे को नहीं बताते। हो सकता है कि बच्चे के आंसू माँ के सौतेलेपन का स्पष्ट संकेत दे रहे हों। हो सकता है।
4: मैं तो बड़ा लज्जित सा महसूस कर रहा हूं, आंखें शर्म से गड़ी जा रही हैं। आप और अधिक यहां नहीं बैठना चाहिए। अब अच्छा ज्वाला सिंह जी, हम चलते हैं, इजाजत दीजिए।
5: अब इन्हें रुकने के लिए कैसे कहूं, बड़ी विचित्र स्थिति है।
3: जी जरूर, आते जाते रहिएगा
1: जी। अच्छा चलते हैं।

समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने दिल के क्रोध को कैसे शांत करूं, अंबा से अपना विरोध कैसे प्रकट करूं, इस मासूम के प्रति उसके इस कपट भरे व्यवहार से मेरे दिल पर ऐसा घात लगा है कि जी तो ये चाहता है कि मैं आज घर जाकर मुंह ढककर सो जाऊं, और जब अंबा मुझसे पूछे तो कहूं सिर में पीड़ा है, और जब खाने को कहेगी तो कह दूंगा कि मुझे भूख नहीं है, खुद खा लो। अंबा समझ तो जाएगी कि उसका दिल अपनी बातों के बाड़ों से भीग डालूंगा। हाँ, ऐसा रुलाऊंगा कि वो भी क्या याद रखेगी। लेकिन ये क्या, अंबा का भोला मुस्कुराता चेहरा सोचकर मेरा क्रोध शांत क्यों हो रहा है? क्या मैं उस प्रेम की देवी के प्रति इतना कठोर रह सकूंगा जिसकी एक दृष्टि मात्र, एक मीठी बात भर, एक रसीली चुटकी तक मेरी कठोरता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है? ये मेरे हृदय की कैसी निर्बलता है, ये मेरे मन की कैसी दशा है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं?

0: अरे मन्नू आ गए बेटा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? देखो मैंने खाने में तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं।
1: नहीं नहीं, अम्बा पर क्रोधित होना और इतनी कठोरता दिखाना अत्याचार है। उसका स्नेह और ममता देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो मुन्नू से प्यार नहीं करती। हो सकता है मुन्नू श्यामा को याद करके रो पड़ा हो। वैसे भी मुन्नू अभी बालक ही तो है। अम्बा, आज मुन्नू के कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा।
0: क्यों, ऐसा क्या हुआ?
1: अरे आज खजांची साहब के घर गए थे, वो मुन्नू से पूछ बैठे कि तुम्हारी नई अम्मा तो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तो आपके साहबजादे रो पड़े। भाई मैं तो लज्जा से गड़ गया। मुझे स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा।
0: स्वामी, मुन्नू को मैंने जिस कोमल भाव से स्वीकार किया है, हृदय की जिन गहराइयों से स्नेह किया है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
2: मुझे अपने सौतेले कहलाए जाने का
0: शायद इतना कष्ट नहीं होगा जितना ये जानकर दुख हुआ कि मैं अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली माँ ना बन सकी। मैं आगे अपने जी जान से यही कोशिश करूंगी कि मुन्नू की आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहे, उसके दुख का एक एक आंसू मेरी आंखों से निकले। स्वामी, इस बार मेरा दिल रख लीजिए और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए।
1: अम्बा, इतनी गहराई तक तो शायद मैं भी कभी नहीं पहुंचा। तुम्हारी आंखों से निकला एक एक आंसू तुम्हारा मुन्नू के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी सुना रहा है। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूं अम्बा। तुम्हारी आंखों में मुझे साक्षात श्यामा के दर्शन हो रहे हैं। उठो अम्बा, उठो।

0: पता भी नहीं चलेगा और मैं पीछे से जाकर इसकी आंखें बंद कर दूंगा। बहुत दिन हुए इससे मुझे आंख में चोरी खेले हुए। ये क्या मेरे हाथों में ये गीलापन? अरे ये क्या, ये तो रो रहा है। ओह मेरा सिर चकरा रहा है। बेटा बेटा मुन्नू क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो?
1: नहीं अम्मा, मुझे बहुत प्यार करती है इसी कारण मुझे बार बार रोना आता है। मेरी अम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती थी।
0: हाँ बेटा।
1: वो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं अम्मा उनसे भी अधिक प्यार करती है।
0: हाँ मेरे बच्चे।
1: इसलिए मुझे डर लगता है कि उनकी तरह ये भी मुझे छोड़कर ना चली जाए।
0: मुन्नू मुझे तुमसे इस उत्तर की आशा कभी नहीं थी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। मैं अम्बा के इस प्यार भरे व्यवहार से स्तंभित हूँ जिसने तुम्हारे हृदय पर ऐसा आघात किया है। किसी कवि ने सच ही कहा है कि पवित्र आत्माएं इस संसार में अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। कहीं होनी तो इस बालक की जिह्वा से ये शब्द नहीं कहलवा रही। ईश्वर ना करे कि वो मनहूस दिन देखना पड़े। चलो बेटा चलो, तुम्हारी माँ के पास चलते हैं।

0: मुन्नू, मेरा बेटा, आजा मेरे पास, आजा मेरा प्यारा बेटा।
1: अंबा ने स्वयं को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। सर्दी के दिन थे, वो सवेरे भोजन बनाने उठ जाया करती। उसके बहुत अधिक प्यार ने मुन्नू को बेहद नटखट और हठीला बना दिया था। जब तक अंबा भोजन कराने ना बैठे, मुंह में निवाला नहीं डालता था। जब तक वो पंखा ना झले, वो चारपाई पर पांव नहीं रखता था। उसे झेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता। लेकिन अंबा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। 6 महीने भी बीतने नहीं पाए थे, शायद मुन्नू की बाल दृष्टि ने भावी भविष्य को देख लिया था। अंबा बीमार पड़ गई, उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था। करवट लेने तक की शक्ति नहीं थी उसमें, शरीर तबाह हो रहा था। परंतु मुन्नू के सुबह के भोजन की चिंता उसे अब भी लगी रहती थी। शोक महाशोक देखते ही देखते अंबा को वक्त के क्रूर हाथों ने छीन लिया। मुन्नू अब शोक और वैराग्य की जीवित मूर्ति है। वो अब कभी नहीं रोता, अब उसे कोई भय नहीं रह गया था। संसार की सबसे प्रिय वस्तु खोने के बाद अब उसे कुछ भी खोने का भय नहीं रह गया था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक की 5वीं कड़ी, विमाता। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, माधवा आनंद और मास्टर एलिश मोहन। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर।

0: सलाम की पांचवी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिवसीय उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इसमें देश भर से एमएसएमई, स्टार्टअप और सैन्य कर्मी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 280 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम स्वदेशी रक्षा तकनीकें प्रदर्शित करेंगी। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। इन पांचों राज्यों में कुल 823 सीटें हैं, जिनमें अकेले तमिलनाडु की 234 और पश्चिम बंगाल की 293 सीटें शामिल हैं। राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 20,000 पशुपालक और दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस दौरान लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत कृषि कार्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9 से 13 जून तक इंदौर में आयोजित होगा। इसमें 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति निर्धारक शामिल होंगे। देश भर में आज से 10 मई तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज आग की रोकथाम के लिए एक साथ रखी गई है। मौसम विभाग ने आज 34 जिलों में आंधी बारिश और 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आप स्वास्थ्य दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त महक गुप्ता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं

कि टहलना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन क्या आपने कभी माइंडफुल वॉक का नाम सुना है? माइंडफुल वॉक का मतलब है पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ चलना। माइंडफुल वॉक ध्यान यानी मेडिटेशन और व्यायाम का एक बेहतरीन मेल है। अक्सर जब हम सुबह या शाम को सैर पर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में ऑफिस की टेंशन, घर के काम या फोन के नोटिफिकेशन घूम रहे होते हैं, या हम ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं। हम शारीरिक रूप से तो वहीं होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। माइंडफुल वॉक में आप अपना सारा ध्यान अपने कदमों पर लगाते हैं, अपनी सांसों की गति पर ध्यान देते हैं, अपने आसपास के माहौल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप चलें तो महसूस करें कि आपके पैर जमीन को किस तरह छू रहे हैं, हवा आपकी त्वचा पर कैसी लग रही है और आसपास पक्षियों की पत्तों की आवाज़ें कैसी आ रही हैं। ये सिर्फ कसरत नहीं बल्कि आपके मन को शांत रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। तो कल सुबह जब आप सैर पर जाएं, तो अपना फोन जेब में रखें और प्रकृति के साथ जुड़कर माइंडफुल वॉक का आनंद लें।

0: श्रोताओं, सिर्फ गर्मियों में ही नहीं हर मौसम में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ और कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर के कई सारे अंग ऐसे हैं जो आपको संकेत नहीं दे पाते कि उनमें कुछ परेशानी है। जब तक हमें संकेत मिलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही एक अंग है हमारी किडनी। तो आज की भेंटवार्ता में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, जो हमें गुर्दों की देखभाल पर जानकारी देंगे।
1: नमस्कार।

0: बताऊँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी किडनी के रोगों के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैक जी।
0: सर, हाल ही में 13 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं किडनी की जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम समय पर डॉक्टरी सलाह से उस बीमारी को ठीक कर सकें और किसी घातक बीमारी से बच सकें।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 13 मार्च को अभी हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया है, जिसकी थीम ये है डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट द किडनी हेल्थ।
0: जी,
1: डिटेक्ट अर्ली का मतलब बीमारी का पता थोड़ा जल्दी की स्टेज से लगाना है, ठीक है, ताकि गुर्दे का स्वास्थ्य बरकरार रखा जा सके। जैसा कि हम लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, उसके साथ गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों बढ़ रही हैं? उसका कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है, हम लोगों के खान पान में अनियमितता होना है, और जितना हम लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं उतना मॉडर्न डिसीजेस हमको घेर रही हैं। और इनमें दो बड़ी प्रमुख बीमारियां हैं जो गुर्दे की खराबी का प्रमुख कारण है। एक है शुगर की बीमारी, मधुमेह या डायबिटीज, और दूसरी बीमारी हाइपरटेंशन। और ये दोनों बीमारियां जो हैं, ये हमारे रहन सहन और हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित हैं। तो ये प्रमुख बीमारियां जो कि गुर्दे को विफल करती हैं, गुर्दे को फेलियर का कारण बनती हैं, पर ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं। अतः हमारे पास काफ़ी समय होता है कि हम अपने गुर्दे का ख्याल रख सकें, और जिन लोगों के गुर्दे अफेक्ट हो गए उनको अर्ली स्टेज में जल्दी से डिटेक्ट कर सकें, और जिन लोगों के गुर्दे काफ़ी एडवांस रूप से अफेक्ट हुए हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट में आजकल नई नई मॉडलिटीज आ गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे बच्चों में रोग होता है जिसमें पेशाब से प्रोटीन जाने लगता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। काफ़ी सारे मरीज इस रोग के भी हैं। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से भी पेशाब रुकती है, और उसकी वजह से भी गुर्दे में कई विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि गुर्दे के रोगों को कैसे हम पहचाने, क्योंकि देखिए छाती में दर्द होता है तो व्यक्ति सीधे कार्डियोलॉजिस्ट में जाता है और वो ये समझता है कि छाती में दर्द हो रहा है, भले वो किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो, उसको ये लगता है कि छाती में अगर दर्द हुआ तो यानी हार्ट से संबंधित है
0: जी।
1: पर गुर्दे के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको देख के वो ये कहेगा कि मेरा किडनी अफेक्ट हो रही है? देखिए, गुर्दे हमारे शरीर के दोनों तरफ बगलों में अंदर की तरफ सिचुएटेड होते हैं
0: जी।
1: बाहर से इसको देख नहीं सकते, बाहर से इसको छू नहीं सकते, बाहर से इसको ऑस्कल्टेट करके स्टेथोस्कोप से नहीं देख सकते कि इसकी कार्यप्रणाली कैसी चल रही है
0: जी।
1: तो सिर्फ मरीज के लक्षणों के आधार पर ही कई बार ये पता चलता है कि यहाँ इस मरीज को गुर्दा अफेक्टेड हो सकता है। तो अगर अपन लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण इसमें आता है गुर्दे का जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है यूरिन
0: जी।
1: यूरिन का ज्यादा होना और यूरिन का कम होना, ये दोनों गुर्दे की बीमारी के लक्षण होते हैं। रात्रि में अगर बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है तो जरूर अपना गुर्दा चेक कराएं
0: जी।
1: इसके अलावा पेशाब में जलन होना, उसकी वजह से बुखार भी आ सकता है, ठंडे के बुखार आता है, ये यूरिन के इन्फेक्शन का लक्षण होता है। रुक रुक कर पेशाब आना, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं, यानी इसके अंदर जैसे एल्डरली जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। एक और सिम्टम होता है, कई बार जैसे बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, पैर लटका के बैठते हैं ऑफिस में काफी देर तक, तो पैरों के ऊपर सूजन आ जाती है। इस तरह की बात अगर दिखे तो यानी अपनी किडनी चेक करानी है। सुबह उठने पे आंखें फूली फूली लगना, आंखों के आसपास स्वेलिंग होना, यानी किडनी चेक कराना है। एक और चीज जो बहुत मिस होती है, कई बार यंग एज में यानी 40 वर्ष की नीचे की अवस्था में अपन कभी डॉक्टर के पास कुछ और सिम्टम्स लेकर जाते हैं और वो वहाँ बताता है कि साहब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो मान के चलिए कि 95% केसेस में गुर्दे की किसी रोग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो ऐसे में इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते कि हमने 4 दवाइयाँ ली और ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, और हमने दवाइयाँ 10 दिन बाद बंद कर दी कि मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और भूल गए, ये नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है जिससे गुर्दे में खराबी होती है और जिसको लोग काफ़ी लाइटली और हल्के में लेते हैं, वो होती है किडनी के स्टोन की समस्या। आप जानते हैं और बहुत कॉमन है कि कि जब भी किडनी में स्टोन होता है उससे किडनी में, गुर्दे में यानी बगल साइड में, पेट में सामने की तरफ दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, पेशाब में ब्लड जा सकता है, ये सारे के सारे लक्षण किडनी स्टोन के लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किडनी स्टोन एक बार न बनकर बार बार बनते हैं, और अगर किडनी स्टोन बार बार बन रहे हैं तो हमें अपने गुर्दे को चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो किडनी स्टोन के लिए सबसे प्रचलित थेरेपीज क्या हैं? पानी बहुत सारा पीजिए तो स्टोन निकल जाएगा, लेकिन स्टोन निकलना ही इस समस्या का अंतिम हल नहीं है
0: जी।
1: इस समस्या का पूरा हल यही है कि हमें स्टोन क्यों बन रहे हैं और क्या स्टोन ने हमारे गुर्दे को कुछ नुकसान पहुंचाया है। कई बार स्टोन की बीमारी अनुवंशिक तौर से होती है, जिसमें कि अगर पिता को स्टोन है या घर में किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को स्टोन है, तो वो हेरिडिटरीली वो नीचे संतान में पास ऑन हो जाती है, तो उससे भी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। और कई बार कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिटेक्ट अर्ली जो थीम है इस बार WHO की, उस थीम के अंदर अर्ली डिटेक्शन यानी हमारे पास ये कई लक्षण हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं एक बारी, और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
0: सर, आपने बहुत सारे लक्षण जो इनमें से बताए हैं उन बातों पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। BP है, शुगर है, उसको जोड़ ही नहीं पाते लोग कि ये किडनी पर अफेक्ट कर सकता है
1: जी।
0: तो हमारे खान पान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं ताकि ये सारी समस्याएं ना हों?
1: खान पान का सीधा सीधा संबंध होता है मेटाबॉलिक डिसीजेस से
0: जी।
1: अब मोटापा बढ़ रहा है, जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, आपको याद होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मोटापे का जिक्र किया अभी कुछ दिनों पहले, और देश को ये संदेश पहुंचाया कि मोटापे से हमको फाइट करना है, लड़ना है
0: जी।
1: तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फास्ट फूड कल्चर की तरफ आ गए हैं, हमारा खाने का कोई टाइम नहीं है, बहुत अनियमित चलता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे लीवर में फैट जमा हो जाता है, जैसे कि BP भी बढ़ने लगता है, जैसे कि शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब जो बीमारियां डेवलप होती हैं, ये तो एक तरफ किडनी को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर शरीर में शुगर है तो वो निश्चित तौर पर किडनी को अफेक्ट करता है, BP अगर बड़ा होता है तो किडनी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अशुद्ध खान पान के अंदर आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब्जियों में बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग होता है उगाने में, खेती में, इन सब में इनका कुछ ना कुछ अंश भोजन के अंदर या हमारे जो डेली खान पान में चीजें आ रही हैं उसके अंदर रह ही जाता है
0: जी।
1: तो ये भी हमारे गुर्दे को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ये केमिकल्स हैं
0: जी।
1: इसके अलावा एक और चीज है जो बड़ी मेन है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आजकल दर्द सहने की आदत किसी की नहीं है, तो शरीर में छोटा मोटा दर्द भी होगा, पेन किलर गोलियां रखते हैं अपने पास
0: जी।
1: और वो पेन किलर्स मार्केट से ऐसे खरीद के खाते हैं जैसे किराने की दुकान से बिस्किट खरीद लाए हो।
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही।
1: हाँ, उनके पास रखी रहती हैं, जैसे हमें भी याद है हमारी एक चाची जी थी, वो बस उनके पास अंदर रखी रहती थी, और वो जब भी कुछ दर्द हुआ उन्होंने फट से पानी निकाला और गोली गटक लिया। तो ये भी बड़ी खतरनाक आदत है, और बहुत सारे किडनी फेलियर में अगर आप पूछेंगे कि परसेंटेज वाइज, तो मैं कहूंगा कोई 10-15% टोटल किडनी फेलियर्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है कि वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और किडनी खराब हो जाती है, पता भी नहीं चलता इस चीज का।
0: बिल्कुल, मैं सर की कही गई बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। श्रोताओं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी दवाई के लिए पहले डॉक्टरी सलाह लें। अगर डॉक्टर वो दवाई लेने के लिए कहता है तो उसी नियमित मात्रा में उस दवाई को लिया जाए। सर, आगे हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब भी किडनी की बात आती है तो पानी की बात आती ही है, और हर किसी के अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, तो इस पे सर आपका क्या ओपिनियन है?
1: बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस हैं पानी पीने के बारे में, कि हमको ज्यादा पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, वो डिटॉक्स करना कहते हैं, तो वो तरह तरह से पानी पिलवाएंगे, तो सुबह अलग तरह का पानी, दोपहर में अलग तरह का पानी, हाँ कुछ अल्कलाइन वाटर की बात होने लगती है, तो कोई एसिडिक वाटर, जो भी है कई तरह की चीजें हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक बेसिस है नहीं। और जहां तक पानी पीने की बात है तो वो व्यक्ति के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। अगर आप आउटडोर्स वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप पसीना बहा रहे हैं, तो आप डिहाइड्रेट होने से आपको बचना चाहिए, तो आप पानी पी सकते हैं। देखिए, शरीर में ऐसी मैकेनिज्म होती है कि जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, हमारा ब्रेन को ये संकेत पहुंच जाता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, तो ब्रेन खुद ब खुद ये संकेत बॉडी को देने लगता है कि अब तुम्हें पानी पीने की जरूरत है, 99.9% केसेस में अगर ये मैकेनिज्म सुरक्षित है तो आप पानी पीते ही पीते हैं आपको प्यास लगने लगती है, और अगर आपको प्यास लग रही है तो फिर तरल पदार्थ लीजिए, कुछ ना कुछ लीजिए। सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, चूंकि अब गर्मी आ रही है तो मैं बता देता हूँ कि

0: अगर धूप बहुत ज़्यादा है और हीट हाइपरपायरेक्सिया या हीट स्ट्रोक टाइप की चीज़ है, उसी के दौरान ये मैकेनिज्म प्रभावित होती है, तो चाहे शरीर कितना भी डिहाइड्रेटेड हो उसको प्यास नहीं लगती है और वो गंभीर रोग का शिकार होता है। तो नॉर्मली पानी का बहुत एक्स्ट्रा पीने का कोई रोल नहीं है, बल्कि कुछ पेशेंट्स हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट जिनको किडनी की प्रारंभिक बीमारी है, आप ज़्यादा पानी पियेंगे, ब्लड में ज़्यादा मिक्स होगा, हार्ट को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ट फेलियर हो सकता है। तो आपका वो पानी जो आप ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं सिर्फ शरीर के खून की नलियों में ही नहीं रहेगा, वो चाहे फेफड़े में जमा हो जाएगा, चाहे ब्रेन में जमा हो जाएगा, चाहे पैरों में आ जाएगा सूजन के रूप में। तो पानी बहुत अधिक पीने से भी कोई फायदा नहीं है, पानी बहुत कम पीने से भी कोई फायदा नहीं है। पानी के लिए आपका शरीर खुद संकेत देता है कि मुझे इतना चाहिए, तो वो आप उसको ध्यान रखिए। इंडोर जो काम कर रहे हैं, अब जो अंदर एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, छह छह आठ आठ घंटे दस दस घंटे एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको कहाँ इतना पानी की जरूरत होने वाली है। और जितना ज्यादा आप पानी पियोगे, आपके शरीर के सॉल्ट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एल्डरली लोग, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें पानी का निकासी प्रक्रिया ठीक नहीं होती है। और होता ही है कि 60 से अधिक वर्ष की उम्र वाले जितने भी हैं, ये अपनी जब पीयर्स में बैठते हैं तो इनमें एक ही बात होती है कि भाई स्वस्थ कैसे रहा जाए, अब हमारी उम्र बढ़ रही है, तो एक ही सलाह सामने आती है कि साहब पानी पियो आप। तो हम तो सुबह उठ के तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो कॉम्पिटिशन से पानी पीते हैं। तो होता क्या है कि इनके शरीर में सोडियम जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर पता चलता है कि थोड़े दिन बाद जो है वो परेशानी बढ़ने लगी और हाइपोनेट्रीमिया नाम की चीज हो गई। बहुत ज्यादा पानी पीने से भी कोई लाभ नहीं है, कम पानी पीने से भी कोई लाभ नहीं है, तो दोनों ही चीजें, दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है, तो आप कहीं बीच का रास्ता निकाल करके चलिए।
1: बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को हमें सुनने का मौका मिला। जितना ज़रूरी है खाना खाना, उतना ही ज़रूरी है शरीर से गंदगियां बाहर निकालना। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर संजय गुप्ता ने जो जानकारियां दी उन पर आप गौर करेंगे और वो आपको मदद करेंगी अपने गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का अगला गीत।

लाल पीरी से याद आया श्रोताओं, आजकल मेडिकल साइंस और तकनीक मिलकर कई चमत्कार कर रहे हैं। ऐसी ही एक नई तकनीक इन दिनों काफी चर्चा में है, रेड लाइट थेरेपी। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक ऐसा उपचार है जिसमें त्वचा, मांसपेशियों और शरीर के अन्य हिस्सों की समस्याओं को ठीक करने के लिए लो वेवलेंथ वाली लाल रोशनी का उपयोग किया जाता है। ये लाल रोशनी हमारी त्वचा के अंदर तक जाती है और हमारी कोशिकाओं को यानी सेल्स को ऊर्जा देती है, जिससे वो खुद की मरम्मत तेजी से कर पाती हैं। इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न और चोट से जल्दी उभरने के लिए किया जाता है। एथलीट्स और स्पोर्ट्स वाले लोग अक्सर रिकवरी के लिए इसका सहारा लेते हैं। इसके अलावा त्वचा की सेहत सुधारने में भी ये कारगर मानी जाती है। ये एक दर्द रहित और सुरक्षित प्रक्रिया है। हालांकि श्रोताओं, इसका इस्तेमाल हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही किया जाना चाहिए। याद रखें, फ्रॉड और अनावश्यक खर्च से बचने के लिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं आज के आखिरी गीत की ओर।

श्रोताओं, तकनीक के इस दौर में हमें नई जानकारियों से अपडेटेड तो रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ बुनियादी आदतों जैसे कि सही खान पान, पर्याप्त पानी और माइंडफुल वॉक जैसी अच्छी जीवन शैली को भी भूलना नहीं चाहिए। आज के स्वास्थ्य दर्पण में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियाँ जो आज हमने साझा की हैं वो उपयोगी साबित होंगी आपके लिए। अब मुझे यानी अपनी दोस्त महक गुप्ता को दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: इस समय आप हैं हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है। आरंभ कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ

इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रकाश पाठक की गाई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं दुष्यंत कुमार की इस रचना के साथ।

0: दुष्यंत कुमार त्यागी के इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गाई चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

सरफरोश फिल्म का ये गीत था। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया था। गीतकार थे समीर और संगीतकार जतिन ललित। मोहरा फिल्म का गीत है। उदित नारायण और साधना सरगम ने इसे गाया है। विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत।

0: विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था। साधना सरगम और उदित नारायण ने इसे गाया था। फिल्म का नाम था मोहरा। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों से तय नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में विधानसभा के सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 87 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

0: अन्य दो सीट पर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 109 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके के गठबंधन 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन केवल 61 सीटों पर है, 61 सीटों पर आगे है। केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 86 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। पुडुचेरी में विधानसभा के 30 में से एनडीए गठबंधन 15 सीट के साथ आगे है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 11 सीट जीत रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम विधानसभा चुनाव मतगणना के रुझानों और नतीजों से भाजपा उत्साहित है। प्रदेश के सहकारी मंत्री सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
1: मोदी जी का जलवा पूरे देश में है, कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब असम में भी सरपट दौड़ेगी और बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। बंगाल का गौरवपूर्ण इतिहास, जिसको कुठाराघात किया था दीदी ने, अब वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है, विकास के नए आयाम अब बंगाल में स्थापित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है पूरे देश की राजनीति में। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए और भारतवासियों के लिए बड़ी खबर है।
0: पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर और मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में मई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर आज मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले चार दिनों से तेज गर्मी की जगह आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदला हुआ मौसम अभी कुछ और दिन बने रहने वाला है। विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा में आज ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा 33 जिलों में तेज आंधी, इसके अलावा भोपाल सहित 33 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के बराढाना में हुई आगजनी की घटना के बाद कल केंद्रीय राज्य मंत्री तथा स्थानीय सांसद दुर्गादास उइके ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। खंडवा शासकीय आईटीआई में 7 मई रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में जनगणना 2027 के तहत मकान का सूचीकरण के कार्य में लापरवाही पर प्रशासन ने प्रगणकों की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए जनगणना अधिनियम के तहत दंड की चेतावनी दी है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए जन सहयोग से 50 हेलमेट वितरित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
3: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर, और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
2: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
4: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है, और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीट, यहाँ लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
2: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई के हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
5: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये

0: exactly बता पाना मुश्किल है, but the thing is that जो welfare schemes और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, this can be a big reason, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम, उनका भी योगदान रहा है जीत में।
0: जी आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमचेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे, वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ. जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
3: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही है। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं के पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं और पहली पसंद शामिल कर रहे हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे की। कनेरा पटे मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्रा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली की पसंद है ये। फिल्म डर का ये गीत है, लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, स्वरबद्ध किया शिवहरी ने।

अगला फरमाइशी गीत बाजीगर फिल्म से है। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नवाब आरजू का लिखा यह गीत अलका याग्निक और कुमार सानू ने गाया है, पसंद किया है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर।

अगले गीत के लिए अनुरोध ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाक से। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ कापसी रोड अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और समस्त बाकड़े परिवार के सदस्य। शिवसेना वसाहत अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े और वंदना ताई बाकड़े और समस्त बाकड़े परिवार के सदस्य। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। इम्तिहान फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है कुमार सानू की आवाज में। अनु मलिक ने धुन बनाई है, बोल लिखे हैं फैज अनवर ने।

अगले गीत सुनने का अनुरोध किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सरोवर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। सुनना चाहा है राहत फतेह अली खान का गाया सन ऑफ सरदार फिल्म का गीत। समीर अंजान ने गीत लिखा है, हिमेश रेशमिया ने धुन बनाई है।

0: फिल्म सन ऑफ सरदार के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत से बहुत आगे निकलती दिख रही है। वहीं असम और पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन की वापसी हो रही है। तमिलनाडु में नई पार्टी टीवी के बहुमत के करीब है। वहीं केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना तय है। यहाँ भाजपा 293 में से 195 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन 97 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 110 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके की गठबंधन 66 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन केवल 58 सीटों पर आगे है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन 15 सीट के साथ आगे है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 11 सीट जीतता दिख रहा है। और मौसम विभाग ने आज 34 जिलों में आंधी बारिश, 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना भी जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। संध्याकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल प्रसारित करेंगे शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन शाम 6:45 पर। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। पब्लिक स्पीक ये प्रोग्राम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद पूरी करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा पंडित शंभूलाल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग बिहाग। और शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज का आकर्षण होगा लोकरंग। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है, DTH पर जारी रहेगी। DTH के ऑडियो चैनल पर

0: एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
1: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly.

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तो साथियों, आज है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन जो हम सभी के लिए बहुत ही खास होता है, बहुत ही विशेष होता है और बहुत बिजी भी होता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां और कई सारी विशेष जानकारियां आज हम जानेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों खास है आज का दिन, किस लिए विशेष है। और साथ ही हम करेंगे ढेर सारी बातचीत, देंगे आपको कुछ पर्सनालिटी टिप्स और साथ ही देंगे आपको कुछ टेक टिप्स भी। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज के प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है? और आज का दूसरा प्रश्न है, भारत की तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखेंगे और कार्यक्रम के अंत में इन्हें हमारे साथ मिलाएंगे। तब तक शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सुनते हैं ये पहला गीत।

तो साथियों, हम अगर आगे बात करें तो हम आपको बता रहे थे कि आज का दिन किस लिए विशेष है। आज हम बात कर रहे हैं कोयला खनिक दिवस की, जो हर साल 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस उन मेहनतकश मजदूरों को समर्पित है जो धरती की गहराइयों में जाकर कोयला निकालते हैं। ये कोयला हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे बिजली बनती है और साथ ही उद्योग चलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। खनिकों का काम बहुत कठिन और जोखिम भरा भी होता है। अंधेरी खदानों में धूल और गर्मी के बीच काम करना आसान नहीं होता। इसके बावजूद वे हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ताकि हमारे घरों में रोशनी बनी रहे। इस दिन का महत्व हमें ये समझाता है कि खनिकों का योगदान कितना बड़ा है। ये दिन हमें उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर भी देता है। साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर जीवन सुविधाएं सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। तो आइए इस दिन पर हम सभी उन खनिकों को धन्यवाद दें जो अपनी मेहनत से हमारे जीवन को रोशन करते हैं।

साथियों, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज आवश्यक है उन नायकों के बारे में बात करना जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और इसी समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में। आज का ये दिन दुनिया भर के फायर फाइटर्स यानी अग्निशमन कर्मियों को सम्मान देने और उनके साहस को सलाम करने का अवसर है। ये दिन संत फ्लोरियन के पर्व दिवस से जुड़ा है। सेंट फ्लोरियन को अग्निशमन कर्मियों का संरक्षण संत भी माना जाता है, इसलिए उनके सम्मान में ही आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक दुखद घटना ये भी थी कि ऑस्ट्रेलिया के राज्य में लगी भयंकर जंगल की आग बहुत बड़ी विशाल रूप ले चुकी थी और उस हादसे में 5 अग्निशमन कर्मियों की जान भी जा चुकी थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स के सम्मान में एक विशेष दिवस मनाने की पहल की गई और तब से हर साल 4 मई को ये दिन मनाया जाता है। वे प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, इमारतों के ढलने जैसी आपातकालीन स्थितियों में सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचते हैं। उनका साहस, अनुशासन और तत्परता हमें ये सिखाती है कि सेवा भाव और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो साथियों, आज के इस अवसर पर हमें भी ये समझना चाहिए कि आग से बचाव के नियमों का हम स्वयं भी पालन करें, इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी नंबर्स की जानकारी अपने पास रखें और समाज में इस बारे में जागरूकता भी फैलाएं, क्योंकि सुरक्षा केवल अग्निशमन कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की साझी जिम्मेदारी भी है।

साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर भी बात करते हैं जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, लेकिन ये हमारी डिजिटल लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो है डेटा सुरक्षा और बैकअप। आज के ज़माने में हमारा डेटा, चाहे वो बचपन की तस्वीरें हों, कॉलेज की असाइनमेंट्स हों या बिजनेस से ज़रूरी हमारी फाइलें हों, ये सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं, किसी ने सच कहा है। और इसे खो देना सच में किसी बुरे सपने जैसा होता है, और ये बुरा सपना कई लोगों के साथ हो चुका है। डिवाइस ख़राब होना, गलती से डिलीट होना या फिर एक ख़तरनाक साइबर हमला, तो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, लेकिन ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और आजकल इस बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में तो ये हर किसी के साथ होना काफ़ी पॉसिबल है। तो डेटा खोने के तीन मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। पहला है टेक्निकल फेलियर। आपका हार्ड ड्राइव कभी भी क्रैश हो सकता है, फ़ोन पानी में गिर सकता है, और ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में यानी कि हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, सबसे आम, किसी ज़रूरी फाइल को गलती से डिलीट कर देना या शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देना, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एरर। और साइबर थ्रेट्स तो बहुत आम बात है, जैसे रैंसमवेयर अटैक। ये आपके पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर आपको और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी मुश्किलों और परेशानियों से बचने के लिए बैकअप लेना सबसे आसान लेकिन ज़रूरी उपाय है और तरीका है, जिससे आपका ये इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो सुरक्षित रह सकता है, सेफ रह सकता है। अब सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम डेटा का बैकअप कहाँ रख सकते हैं। हम बात करें अगर ऑफलाइन बैकअप की यानी कि बाहरी स्टोरेज की, तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पैन ड्राइव, SD या DVD में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप ड्राइव को अपने कंप्यूटर या फ़ोन से जोड़ें, उसमें ये ज़रूरी फोल्डर्स जो भी हैं उन्हें कॉपी करें और इसे किसी सुरक्षित जगह पर सेव करें, और हमेशा कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके ना रखें। फिर अगर हम ऑनलाइन बैकअप यानी कि क्लाउड स्टोरेज की बात करें, तो आप ड्राइव, क्लाउड या ड्रॉप बॉक्स में डेटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसके लिए किसी भी क्लाउड सर्विस पर अपने अकाउंट में ज़रूरी फाइलें अपलोड

और ऑटोमेटिक सिंक सेट करें, बाद में अपने इंटरनेट के ज़रिए इन फाइलों को आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपका डिवाइस चोरी हो या ख़राब हो जाए तो डेटा फिर भी सुरक्षित रहता है, लेकिन ध्यान रहे मजबूत पासवर्ड यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी आजकल काफ़ी ज़रूरी है। हमारे फ़ोन में सबसे ज़्यादा तस्वीरें और वीडियोज़ होते हैं, इसलिए गूगल फ़ोटोज़ या आई क्लाउड फ़ोटोज़ जैसे ऐप्स को इस्तेमाल करें जो वाईफाई से कनेक्ट होने पर ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि डेटा बैकअप का सबसे अच्छा रूल अगर हम सोचें तो वो क्या हो सकता है, जिसका एक आइडिया है 3-to-1। यानी 3-to-1 एक ऐसा बैकअप सिस्टम है दोस्तों जो 3 यानी कि 3 कॉपी रखें, अपने मूल डाटा के साथ हमेशा 2 बैकअप डेटा फाइल ज़रूर बनाकर रखें, 2 यानी कि 2 अलग माध्यमों पर रखें जैसे कि डिजी लॉकर या क्लाउड्स पर, और 1 यानी कि 1 एक कॉपी को दूसरे डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में सेव कर लें, क्योंकि अगर किसी कारण ईमेल में समस्या हुई तो ये डेटा यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है। तो ये बहुत ही आसान और स्ट्रॉन्ग बैकअप डेटा सेव करने का ऑप्शन है दोस्तों। साथ ही ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने बैकअप की जांच ज़रूर करें, हर कुछ हफ्तों में आप बैकअप फाइलें खोलकर जांचें, देखें कि वे ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, और अगर बैकअप फेल हो जाए तो तुरंत नया बैकअप बनाएं। बहुत पुरानी या गैर ज़रूरी डुप्लीकेट कॉपियाँ हटाते रहें ताकि स्टोरेज बची रहे, और बैकअप फाइलों को भी व्यवस्थित करते रहना ज़रूरी है।

साथियों, इन दिनों कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या बिजनेस इंटरव्यूज़ हों, हम में से कई लोगों में हमने ये देखा है कि इंटरव्यू के समय वे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और काफ़ी डिप्रेस्ड फील करते हैं, जिसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आज हम आपको देने वाले हैं इंटरव्यू के लिए अपने व्यक्तित्व को यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने और बनाए रखने के लिए कुछ ज़रूरी, कुछ प्रभावी सुझाव। सबसे पहले कॉन्फिडेंस और माइंडसेट, आत्मविश्वास और मानसिकता बहुत जरूरी है। अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर धीरे धीरे काम करें। खुद पर भरोसा रखने से आपकी जो छवि है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें सुधार होता है। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हर स्थिति में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच को ही देखें और उसी को अपने देखने के नज़रिए में ढालें। सकारात्मक रवैया आपको हर मुश्किल के समाधान खोजने में मदद कर सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि इंटरव्यू से पहले शांत रहकर खुद को ये आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हुए कहें और देखने से आपके प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, ये भी आप नोटिस करिए। स्पष्ट और विनम्र भाषा सबसे ज़रूरी है। जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो बातचीत के दौरान शब्दों में विनम्रता और शालीनता रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी आवाज़ को सौम्य रखें, ना बहुत तेज बोलें और ना ही बहुत धीरे। अच्छे श्रोता बने, अच्छे लिसनर बने। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है और तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपके सामने बड़ी डिग्निटरीज बैठे हों। इंटरव्यूअर के सवाल को पूरा सुनने के बाद ही जवाब दें। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वापस विनम्रता से पूछ सकते हैं। और आई कॉन्टैक्ट, बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें, इससे आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास पूरी तरह झलकता है। फिर बात आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज की। कई सारे लोगों में हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान या फिर किसी से बात करते हुए प्रोफेशनली भी हम कई बार नर्वस हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे खड़े रहें, पोस्चर मेंटेन करें, बैठते समय भी अपनी पीठ सीधी रखें, बार बार हाथ पैर हिलाना जैसी आदतों से बचें और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट ज़रूर रखें। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखने से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा सकता है और ये आपको मिलनसार और आत्मविश्वासी भी दिखाता है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी ऐसी प्रोफेशनल जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपना पहनावा भी ध्यान रखें। अक्सर हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जगह समय के अनुरूप हमारे ड्रेसिंग सेंस पर हम काम करें। अवसर के अनुसार कपड़े पहने, साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनना अनुशासन और गंभीरता को दर्शाता है। ये कई सारी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन आप में और हम में ये कई सारी छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फ़र्क दे जाती हैं।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवावाणी कार्यक्रम। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो ये आप हमें ईमेल और पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airindore.in@gmail.com और आप हमें चिट्ठियाँ भी लिख सकते हैं आकाशवाणी इंदौर केंद्र के पते पर। हमें आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो हमें लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और जाने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज के प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। आज का पहला प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है, जिसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत की तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं, जिसका उत्तर है देश की तीन सबसे लंबी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे। इसी के साथ अब वक्त है विदा लेने का। दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। अलका याग्निक और सोनू निगम को सुनिए फिल्म कभी खुशी कभी गम में। बोल देव कोहली के हैं, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
3: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
3: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी W थापा।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया और श्रीमती कल्पना चंदसौलिया लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं।

0: पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराम भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक। और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it?

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे, अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात? ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझ न आती है। वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सीखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी। इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ। ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
3: बया
0: तो वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो।
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है।
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता।
2: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आँख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
2: क्या मतलब?
1: ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
0: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो। आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ।
3: अच्छा दोस्तों,
0: हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दें? अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ बिल में। अच्छा और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो, याद आ गया? हाँ सांप। दोस्तों वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों तुम भी सोचना, और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते, सोचोगे ना?

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है गुरमीत सिंह डंग की गाई ये गजल।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे गुरमीत सिंह डंग की गाई गजल। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार दर्शन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है राजधानी भोपाल से, जहां कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय वृद्धि के उद्देश्य से कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की यह रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से भोपाल के रविंद्र भवन में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, सीएम किसान हेल्पलाइन और पैक्स सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर से 1027 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही कई विभाग के वैज्ञानिकों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान कॉल सेंटर पर स्वयं कॉल कर इसकी कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने एक सामान्य किसान की तरह सवाल पूछा, जिस पर कॉल सेंटर कर्मचारी ने जवाब दिया और अधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
2: लगातार हम किसान के कल्याण के काम करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा दे करके किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया। और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे जनता तक या किसानों तक पहुंचा पाएंगे।
1: भोपाल से आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मोहम्मद ताहिर खान।
0: हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां रबी विपणन वर्ष 2026 के लिए गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से शुरू किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी।
3: उमरिया जिले में रबी विपणन वर्ष 2026 के लिए गेहूं उपार्जन का कार्य बीते 15 अप्रैल से शुरू किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में किसानों के लिए शेड निर्माण कराया गया है, साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा कराई गई है। जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें से 4,798 किसानों ने अभी तक स्लॉट बुकिंग की है। इसके अलावा 150 किसानों ने अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों में बिक्री कर दिया है। अभी तक 20,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विपरीत 2,774 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की जा चुकी है और किसानों को गेहूं उपार्जन के विरुद्ध दिए जाने वाले कुल भुगतान 7,28,00,000 में से 45,00,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। जिले की कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय लगातार उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर गेहूं खरीदी के सुचारू संचालन का जायजा ले रही हैं। कलेक्टर लगातार किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और निराकृत भी कर रही हैं। उमरिया से समाचार दर्शन के लिए मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: हमारी अगली खबर है बैतूल जिले से, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में अब तक 587 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है, जिसमें से 346 महिलाएं हाई रिस्क मिली हैं, जिन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव।
4: बैतूल जिले में लगाए जा रहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में अब तक 587 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई है, जिसमें से 346 महिलाएं हाई रिस्क मिली, जिन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराया गया है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से जिले की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य संस्था में आवश्यक जांचें, चिकित्सकीय परीक्षण, परामर्श और हाई रिस्क महिलाओं का उचित प्रबंधन कर संस्थागत सुरक्षित प्रसव करवाना है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा डोंगरी में 50, सेहरा में 55, सिविल अस्पताल आमला में 35, भैंसदेही में 37, शाहपुर में 70, आठनेर में 20, मुलताई में 43, चिचोली में 121, प्रभातपट्टन में 39 और आदिवासी बाहुल्य भीमपुर ब्लॉक में 62 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार हुरमाणे ने बताया कि जिले में प्रति माह की 9 एवं 25 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: और अब खबर है आगरमालवा से, जहां पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को आधुनिक स्वरूप देने के उद्देश्य से क्षीरधारा ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण में जिले के 40 गांवों का चयन किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता महेश शर्मा।
5: योजनाओं को जन आंदोलन का रूप देने के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने देते हुए ग्रामीण विकास विभाग को महिलाओं को प्रशिक्षित कर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को निराश्रित गोवंश संरक्षण की कार्य योजना तैयार करने, कृषि विभाग को अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक प्रक्रिया पूर्ण करने तथा वन विभाग को वन ग्राम समितियों के माध्यम से पशुपालन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का लाभ लेने एवं पशुओं के स्वास्थ्य कार्ड बनवाने हेतु पशुपालकों को टैगिंग एवं टीकाकरण के दौरान आधार विवरण एवं मोबाइल पर प्राप्त OTP उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जनपद स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर योजना का लाभ प्रत्येक पात्र पशुपालक तक पारदर्शी रूप से पहुँचाने पर बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है बड़वानी जिले से, जहां गत दिवस भूकंप पूर्व तैयारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय ध्वस्त ढांचा खोज व बचाव कार्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेश बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट।
6: प्राकृतिक आपदा और उससे बचाव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में पिछले दिनों भूकंप पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय ध्वस्त ढांचा खोज एवं बचाव कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रथम दिवस सभी पंजीकृत उपस्थित प्रतिभागियों को भूकंप आपदा के बारे में जिला सेनानी शरद राय द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। 5 दिवसीय कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
0: हमारी अगली खबर है विदिशा जिले से, जहां जनगणना 2027 के लिए प्रथम चरण की जनगणना का कार्य शुरू किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
7: समूचे देश की भांति विदिशा जिले में भी जनगणना का कार्य जारी है। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए विदिशा जिले की टीम द्वारा जनगणना में स्वगणना के कार्यों की समीक्षा की है। कलेक्टर विदिशा ने बताया कि
8: व्यापक तैयारी के साथ विदिशा जिले में

0: 2027 के तहत प्रथम चरण हेतु मकान सूचीकरण में मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ कराया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला।
1: अशोकनगर में जनगणना को सटीक व उचित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं गणना कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें सभी तहसीलों के अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं स्वयं गणना का फॉर्म भर नागरिकों से अपील की कि वे भी स्वयं गणना कर अधिक से अधिक फॉर्म भरें। स्वयं गणना करने के लिए वेब एड्रेस भी जारी किया गया था। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य विगत 1 मई से प्रारंभ किया गया। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अशोकनगर की ग्राम पंचायत आवरी माफी पहुंचे तथा वहां भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य प्रारंभ करवाया। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जा रही है, जो पहली बार पूर्ण रूप से डिजिटल हो रही है। इस प्रक्रिया में मकान सूचीकरण, जनसंख्या गणना और पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी। प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया था, जो सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें मकानों की गणना और सुविधाओं का विवरण जुटाया जा रहा है। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, यह फरवरी 2027 में शुरू होगी, जिसमें लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत डाटा एकत्रित किया जाएगा। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला।
0: हमारी अगली खबर है भिंड से, जहां प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। ये योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा।
2: भिंड जिले में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। यह योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। ऐसे श्रमिक जैसे संबल योजना में पंजीकृत हैं तथा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत हों, हाथ ठेला चलाने वाले सफाई कर्मी, रिक्शा चालक, आशा कार्यकर्ता, घरेलू काम काज करने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूर, सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिक, स्टोन क्रेशर में काम करने वाले श्रमिक, भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर इस योजना में पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। योजना की पात्रता के नियमानुसार श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 40 वर्ष से अधिक न हो, श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक न हो और शासकीय सेवा में न हो तथा ESIC तथा EPF में कवर न हो। नजदीकी CST सेंटर MP ऑनलाइन के माध्यम से अपने खाते की पासबुक, आधार कार्ड एवं मोबाइल ले जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करा सकते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष से उन्हें प्रतिमाह 55 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष है उन्हें 200 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम जमा करना होगा। जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तब उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन का लाभ आजीवन मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
0: हमारी अगली और अंतिम खबर अनूपपुर से है। जिले में अपराजिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा।
3: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अनूपपुर में इस समय अपराजित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को शिक्षा सशक्त बनाया जा रहा है, तो वहीं अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। व्यापक ढांचे के भीतर अपराजिता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक राष्ट्रीय नीति है, वहीं अपराजिता इस नीति को धरातल पर उतारने के सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य बेटियों को बचाना है, तो अपराजिता उन्हें आत्मरक्षा की गुण सिखाकर खुद की रक्षा करने के काबिल बनाती है। जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों को यह आत्मविश्वास पैदा किया जाता है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकती है। अनूपपुर जिले के प्रत्येक विकासखंड में 40-40 बालिकाओं को अपराजिता कार्यक्रम के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शिक्षा है, अपराजिता इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए छात्राओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करती है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा बेटी निडर भी हो सकती है। अपराजिता अभियान के तहत आयोजित रैलियां, शपथ ग्रहण समारोह, सेमिनार समाज में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक माहौल तैयार करते हैं। यह सीधे तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिंगानुपात सुधारने के लक्ष्य में मदद कर रही है। अपराजिता कार्यक्रम के माध्यम से समाज की उन महिलाओं और बेटियों को

0: सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बाधाओं को तोड़कर सफलता हासिल की है, या अन्य परिवारों के लिए एक उदाहरण पेश करता है। यदि बेटी को बचाया और पढ़ाया जाए तो वह कुल का नाम रोशन कर सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ती है क्योंकि वे सुरक्षित महसूस करती हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगावित्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवीके 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारत

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा एनडीए की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी सुना जा सकता है। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्र गीत प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रात 9:30 से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुना जा सकता है। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा उस्ताद शराफत हुसैन खां के ख्याल गायन का, राग है मलूहा केदार। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात मंगलवार 5 मई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में बायोगैस के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल में। 8:30 से कार्यक्रम विविधा में आप सुन सकते हैं इंदौर में आयोजित कबीर उत्सव की रेडियो रिपोर्ट। 9 से लोक संगीत में माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीत होंगे। 9:15 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं अतुल भट्ट को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा शंकरलाल बारोट के सारंगी पर बजाए राग गुजरी तोड़ी का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 से सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से। 1 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2 से फिल्म संगीत और 2:30 से आपकी फरमाइश। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:45 से। 6 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में सुनिएगा विभिन्न कलाकारों को। 6:45 से लोक संगीत में आप सुन सकते हैं शिल्पा मिश्रा और मुकेश बागड़ा के गाए लोकगीत। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम खेती।

0: गृहस्थी 8:15 से कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुना जा सकता है। 9:15 से चित्रगीत प्रसारित किए जाएंगे। 9:30 से उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 से कार्यक्रम मन भवन सुना जा सकता है और 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी पर बजाए राग यमन का। तो ये थे हमारे कल अर्थात मंगलवार 5 मई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा सरकार। असम और पुडुचेरी में एनडीए की वापसी। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ी टीवीसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस समेत यूडीएफ सत्ता में लौट रही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ग्वालियर में बनेगा पशुओं के लिए केयर एंड वेलनेस सेंटर। डबरा में खोला जाएगा पशु चिकित्सालय। और प्रदेश में आज भी 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के रुझान और परिणामों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। असम और पुडुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तृणमूल कांग्रेस को 15 साल सत्ता में रहने के बाद इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। राज्य की 294 सीटों के लिए इस महीने के 23 और 29 तारीख को दो चरणों में मतदान हुआ था। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी। 293 सीटों पर हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 124 सीटों पर आगे है, जबकि 80 सीट जीत चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर सिमटती दिख रही है। यहां कांग्रेस महज 2 सीट जीत रही है। असम में बीजेपी की वापसी हुई है। विधानसभा के सभी 126 सीटों की मतगणना में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन 101 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 22 सीटें ही जीत रही है। तमिलनाडु में विधानसभा के सभी 234 सीटों के परिणाम और रुझानों में अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 108 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके के गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन 75 सीटें जीत रही है। केरलम में विधानसभा के सभी 140 सीटों के रुझान के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। यहां यूडीएफ 98 सीटें जीत रहा है। एलडीएफ 35 सीटों पर सिमट रहा है। भाजपा को यहां महज 3 सीटें मिली हैं। पुडुचेरी में विधानसभा की 30 में से एनडीए गठबंधन ने 18 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 6 सीट जीतता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलते ही मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल बन गया। राजधानी भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मिठाई के साथ कार्यकर्ताओं को बंगाल की मशहूर डिश झालमुड़ी खिलाकर बधाई दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल स्थित आवास में झालमुड़ी बंटवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं पूरा विश्वास था कि महाविजय होगी। जो विश्वास था वही नतीजे सामने आए हैं।
1: एक कार्यकर्ता के नाते आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उनकी आत्मा गदगद होगी। आज हमारे वो नेता जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, मन से प्रसन्न होंगे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल, आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है।
0: ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की बढ़त को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि होली दिवाली जैसे त्योहारों की तरह आज आनंद का माहौल है। यहां अहंकारियों के पराजय और राष्ट्रवाद की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में केरलम की जनता को मिले निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गांधी ने हर यूडीएफ नेता और कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत से चलाए गए और सफल चुनाव प्रचार के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है। अब यहां यूडीएफ की ऐसी सरकार है जो इन दोनों का सदुपयोग करने की दृष्टि रखती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ग्वालियर में राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन में विचार साझा कर पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध व्यवसाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के हर किसान और पशुपालक को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर में पशुओं के लिए केयर एंड वेलनेस सेंटर बनाने, पशु स्वास्थ्य और उपचार केंद्र का उन्नयन करने के साथ ही डबरा में नया पशु चिकित्सालय भी खोला जाएगा।
3: अब किसान की जमीन लेने के लिए कोई पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। बाजार का जो कीमत है, जो गाइडलाइन है, उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और किसी भी किसान का गेहूं कहीं भी हो, स्लॉट बुकिंग करे जो 2625 रुपए क्विंटल हम सारा गेहूं खरीदेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ग्वालियर जिले के ग्राम बेला में आयोजित कृषि गालव विश्वविद्यालय की भूमि पूजन समारोह में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि गालव विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ग्वालियर नया इतिहास करने जा रहा है। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के साथ ही राष्ट्र निर्माण के स्थल भी होते हैं। कृषि गालव के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय भी हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संस्कृति और कौशल से सुसज्जित कर राष्ट्र निर्माण का अग्रदूत बनाएगा। भारत की सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री जोशी साहित्य, विज्ञान, सिनेमा और सार्वजनिक संचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित हैं। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से तेज गर्मी की जगह आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदला हुआ मौसम अभी कुछ और दिन बने रहने वाला है। विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सुसनेर और नलखेड़ा के कई गांवों में तेज हवाओं के साथ आज बारिश हुई, वहीं कुछ गांवों में ओले भी गिरे। उधर अनूपपुर जिले में दोपहर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। अचानक बदले मौसम ने पूरे जिले में ठंडक घोल दी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी झाबुआ स्थित कलेक्टर कार्यालय में आज महीने के प्रथम दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मध्यप्रदेश गान का सामूहिक गायन हुआ। सिंगरौली जिले में

नवीन नलकूप खनन प्रतिबंधित किया गया है। जिला कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किये हैं। आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर 10 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी के पहले 23 दिनों में ही 14,311 किसानों से 62,520 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सीहोर के अटल चौक पर जिला भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में प्रचंड बहुमत से मिली विजय पर जीत का जश्न मनाया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जल संरक्षण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नीमच में संचालित निजी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, सामुदायिक भवनों के संचालकों की बैठक आज तहसील कार्यालय में एसडीएम संजीव साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाले सबई किसान भाई बहन ख अनुराधा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में बात करा जल संरक्षण का बारे में। ना अपन देखी रहा है कि हमारी बहन न जी छे वो जल संरक्षण को अर्थ बहुत अच्छा तरीका से समझी रही, क्योंकि जल संरक्षण को अर्थ अच्छे कि पानी को कुशलतापूर्वक उपयोग करनू ना अनावश्यक जल की खपत का कम करनू। ना हमारी बहन ना एका लेना तो बहुत उपयोग जी करें नहीं, पानी को बड़ो बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीका से करज नव भविष्य का लेना भी ओख बचाई रही। अमा वो ये भी ध्यान रखा घर में कि भाई अपना घर का नल ठीक से बंद हुआ कि नहीं हुआ है, असो तो नहीं है कि थोड़ी सी लापरवाही का कारण एक एक बूंद पानी टपकी रोज न टप टप टप का करी ना बहुत सारो पानी व्यर्थ बह जाएगा। तो हर समय उन्हीं बात को ध्यान रखज कि भाई कोई नल का पास गए तो पीछे जाए ना देखी ले कि नल ठीक तरीका से बंद हुए कि नहीं हुए। एका साथ साथ हमारी बहन ने ये भी करी रही कि भाई उन दाल चावल धोया, किचन को कोई पानी धोयो, सब्जी भाजी धोई तो वो पानी नाड़े में नहीं नाखती है, उसका बजाय पौधाना में नाखी देज। कपड़ा धोयल पानी ख घर की सफाई का लेना उपयोग कर लेज। पर अपन नखर लगाज कि भाई ये सब उपाय जी छे वो पर्याप्त छे, पर असोन्य है। एका साथ साथ हम ख भू जल का बढ़ावना का बारे में भी बहुत सारो विचार करने की आवश्यकता छे, क्योंकि अपन ये समझा कि ताजा पानी जी छे वो प्रकृति में बड़ो सीमित मात्रा में छे ना असो प्राकृतिक संसाधन छे कि एको सतत प्रबंधन करनु बहुत आवश्यक छे, क्योंकि वर्तमान अभी जी चली रोज अपनो ना अपनो भविष्य ये सब एका लेना अपनी मानवीय आवश्यकता न मा जल की सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा। क्योंकि वो नहीं होएगा तो अपन ये समझा कि अपना पूरा पारिस्थितिक तंत्र जी छे वो अपना पानी पर केंद्रित है। भले ही अपनो खेती बाड़ी होए, अपना घर का काम होए, भोजन बनावने की बात होए, अपना कपड़ा बनावने की बात होए, कहीं का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनी रहा हो, उसकी उत्पादन की बात होए, अवशिष्ट प्रबंधन को की बात होए, प्राकृतिक पर्यावरण कोई भी काम होए, सब काम न का लेना जल की आवश्यकता रहज। तो एका लेना ई जल को सतत जल प्रबंधन करनू न को व्यर्थ नहीं जाए, जरा भी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाए, इन्हीं बात को बहुत ध्यान रखनू अव आवश्यक छे। तो पानी को बुद्धिमता न कुशलता का साथ उपयोग करने का साथ साथ ओका बारे में ये भी सोचनो कि ओको रचनात्मक उपयोग हो ना ओको पुनरुपयोग भी आवश्यक हुई गोज। अपनी जितनी जल प्रणाली न छे नी, फिर चाहे वो कुआ होए, बावड़ी होए, नदी होए, तालाब होए, छोटा मोटा पोखर होए, उनका भी गंदगी से बचावनो, क्योंकि एक बार वो गंदा होएगा तो अपना साफ पानी खत्म हो जाएगा, उको अपनो नुकसान हो जाएगा। अपनो जितो भी पानी अपना समुद्र में छे वो अपना उपयोग को नहीं है, अपना उपयोग को उच पानी छे जी छोटा छोटा साफ पानी का अपना जल स्रोत छे। तो उनका बचाई ने ना राखनू, उनका साफ राखनू, ये सब आवश्यकता छे अव इना समय। तो जल संरक्षण का बारे में हमारी बहन ने जी काम करी रही वो भी कम नहीं है, पर ओका साथ साथ सभी देशवासी नख मिली न एक बारे में विचार करनू पड़ेगा ना, विचार करने से ज्यादा ओका पर काम करनू पड़ेगा। तो ये तो थी अपनी आज की बात। भाई बहनों ने कार्यक्रम में आज बहुत सारी चीज न छे अपना लेना, अलग अलग लोकगीत भी सुनांगा, पर शुरुआत करांच एक वार्ता सी। प्राकृतिक खेती में पोषण प्रबंधन का बारे में डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंड अपन नख जानकारी दे रहा है, जी की वैज्ञानिक छे शस्य विभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में शस्य वैज्ञानिक का रूप में कार्यरत डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंड की ये वार्ता सुनाएं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंड शस्य वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। मैं आज आप सब लोगों को सोयाबीन की प्राकृतिक खेती के अंदर पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो सोयाबीन प्राकृतिक खेती के अंदर पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में आप घनजीवामृत अप्लाई करेंगे, इसका कब करना है, कितना मात्रा में करना है मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि घनजीवामृत है उसको 500 केजी प्रति हेक्टर के रूप से आपको अप्लाई करना है। इसके जिस 500 केजी को आप दो स्पीड में अप्लाई करना है, पहले स्पीड जो है वो आप बेसल के रूप में 50%, जैसे कि 250 केजी प्रति हेक्टर एज ए बेसल मतलब बुआई के टाइम पे आपको करना है, और रिमेनिंग 50% जो है वो आप दो इक्वल स्पीड में आपको अप्लाई करना है, जैसे 125 केजी जो है वो पूल बनने के टाइम और 125 केजी जो है वो आप फल के अंदर दाना जो पड़ता है उस स्टेज में आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो है वो जीवामृत छिड़काव करना है। जीवामृत को आप 10% से 15 दिन के इंटरवल पे आप छिड़काव कर सकते हैं, या 50 लीटर की जीवामृत लेके 500 लीटर में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरा जो है फसल के अवशेष को आप मल्चिंग करना है। जैसे 5 टन प्रति हेक्टर जो फसल के अवशेष है, गेहूं का 60% और चना और सोयाबीन की फसल अवशेष जो है वो 40% दोनों मिक्स करके आप जैसे बुआई की करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद एक धोरा चला के आप इस फसल अवशेष जो मिक्स किया हुआ गेहूं और चना सोयाबीन की जो फसल अवशेष मिक्स किया हुआ उसको आप मल्चिंग कर सकते हैं। और चौथा जो है वो दहींचा को हरी खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जहां असुड पानी का उपलब्ध है वहां आप ये तकनीक को जो आप अपना सकते हैं। स्पेशली जैसे कि गेहूं काटते हैं, गेहूं काटने के बाद जो दहींचा की बीज है उसको 60 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग करना है और बाकिंग करके तुरंत एक पानी देना है। एक पानी देने के बाद आप अगर एक और आपके पास पानी को उपलब्ध है तो वो आप 15 से 20 दिन के बाद एक पानी और देना है। अगर नहीं है तो भी एक पानी में भी काम चल जाता है। जैसे ये जो दहींचा है वो 45 से 50 दिन के दिन का हो जाता है या फूल बनने शुरू हो जाता है, उससे पहले पहले आपको वापस इसको मिट्टी के अंदर पलटाना है। तो ये इस जो हरी खाद के रूप में दहींचा जो करते हैं उसकी जो उपयोग जो है वो आपकी जो मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन है उसको बढ़ाता है और जो भी पोषक तत्व की कमियां रहता है उसको पूरी करता है और जो खरपतवार का जो रहता है वो भी नियंत्रण हो जाता है। तो ये कुल मिला के 4 बिंदु है वो आपको ध्यान में रखना है।

0: है, जैसे प्राकृतिक खेती सोयाबीन के अंदर करते हो, तो उसका जो पोषक तत्व है उसको मैनेज करने के लिए। धन्यवाद।
1: अभी अपन सुनी रहा था प्राकृतिक खेती में पोषण प्रबंधन। जानकारी दे रहा था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का सस्य विज्ञान का वैज्ञानिक डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंड। उनका पूर्ण का इतनी अच्छी जानकारी दी, अपन उनका धन्यवाद देवान। न कार्यक्रम में अवा सुनांगा एक लोकगीत। भाई बहनों ने याओ शादी न की मौसर न चली रही, अपना कार्यक्रम में भी अपन एक ब्याह को गीत सुनाएं, प्रीति देव लेखो गायल।

0: भाई बहनों ने अभी अपन देख ही रहे हैं कि घाम अच्छो चटाकेदार पड़ी रोज न छते 4 बजे से लाइन है ना 12 बजे से लाइन है ना 4 बजे तक को समय जी रहे नहीं वो काम लू बहुत अच्छी तेजी से चली रही। तो अपन सारा समय घर तो नहीं बैठी सकता है, निकलनू भी पड़े, काम भी अपना रहे। पर ऐसी स्थिति में कभी थोड़ा सा घर से अपन इन्हीं बात को ध्यान राखी लेवा कि भाई थोड़े सोए साय का साथ निकला तो एकदम से लू को असर नहीं होता है ना। अपन जैसे देखा कि इतना समय हमारी बहन ने जी छे वो खूब अच्छे अच्छे कैरी का उपयोग करी करी ना नई नई चीज़ ने बनाई रही ना। कैरी को पन्नो तो अपन ने कहा कि इना गर्मी का मौसम में बिल्कुल अमृत का समान हुई जाए, क्योंकि आम को पन्नो या कैरी को पन्नो गर्मी ने बहुत पौष्टिक का साथ साथ ताजो शरीर का ताजगी देज न का साथ साथ शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं न। यदि अपन ना पानी पी ले तब लू कसी बची जावांगा यदि अपन घर से पना पीना ना निकला है। एक में आयरन की कमी भी दूर हो जाए ना शरीर में जी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो कासी कभी कभी चक्कर आवणु हो जाए तो उन कभी उन्हीं समस्या का भी कम कर दे। पर बनावणु कसो तो हमारी बहन नखो तो इतना अच्छा तरीका से बनावना आवेज कि बस कहनु नहीं, झट जराक देर में बनाई लेज। कच्चा आम नखो उबाड़िया कभी कभी कुकर में धर दे उनका ने एक सीटी ली नौकर छत मछली ना नौको गुदो अलग कर लेज ओका में मिलाई देज वो ओके छिलका नखा अलग हटायो ओका में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाई देगा ओका साथ में उबाड़ी लेगा न। सबसे ज़्यादा जी स्वाद आवे नहीं कैरी का पन्ना में वो आवज पुदीना का ताजा पत्ता को तो झट हरी हरी पत्ती न तोड़ी ना नौका में नाखी देज। कभी कभी वो नहीं हो हरी पत्ती तो पुदीना को पाउडर भी लाई लेज न। भुना जीरा से भी जी छे ठंडक भी रह न स्वाद भी बढ़ी जाए। हल्की सी लाल मिर्ची को उपयोग न थोड़ो सो काली मिर्ची एकदम स्वाद बढ़े देज। बस एक मिलाणुज ओका में न साथ में बनी वो अपनो खट्टो मीठो कैरी को पनो आवा एक अच्छा ठंडा बर्फ का टुकड़ा कभी बैंड नाखी ने दई देज तो छोटा छोटा बच्चा भी झट गट गट पी जाए। उनका भी असो नहीं लगता है कि हमको दूसरी चीज़ पेणूज हम वो कैरी का पन्ना से भी उनका उतनी ठंडक मिली जाए। तो हमारी बहन ना कोई एक हाथ में उनका ऐसा पुण कमान नहीं कि असो छे जादू कि वो हर समय का हिसाब से हर मौसम का अनुसार चीज न बनाई ले न अपना घर भर का स्वस्थ राखज। कार्यक्रम में ये देखा कि हमारी जी बहन अलग अलग तरीका की चीज़ न बढ़े रही पर कभी कभी का ही हो कि उनकी विपणन की समस्या उनका आई जाए कि कृषि का क्षेत्र में किना तरीका से अपनी चीज का बाजार में बेचेगा। तो ओकाज बारे में आज अपने एक वार्ता सुनी लेवाज कृषि का क्षेत्र में विपणन को महत्व अपन नखे का बारे में जानकारी दे रहा ऋचा शर्मा।
1: बहनों राम राम, मैं ऋचा शर्मा आज आपको कृषि क्षेत्र में बाजार या विपणन का महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। हम जानेंगे कि किस प्रकार अपने उत्पाद की ज्यादा मात्रा में बिक्री की जा सकती है और किस प्रकार हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बहनों इसका सबसे सरल उपाय जो होता है वह मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग को सरल भाषा में विपणन भी कहते हैं। मार्केटिंग अर्थात अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर हम यह मुमकिन कर सकते हैं कि आपके जो उत्पाद हैं जो आपने इन अपने उत्पादनों का निर्माण किया है उन्हें आप आसान तरीके से बेच सकें। अब यह बहुत ही सरल माध्यम से मुमकिन हो सकता है। अब आप सोच रही होंगी कि मार्केटिंग क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, तो पहले हम मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो बहनों मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें शुरू से एक प्लान बनाकर चलना पड़ता है और जिसकी जरूरत एक छोटे व्यापार से लेकर बड़े व्यापारियों में पड़ती है। मार्केटिंग को सरल भाषा में विपणन भी कहा जाता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। यह एक ऐसा तरीका भी है जिससे आपकी वस्तुएं तथा उत्पाद या सामग्री ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है। तो बहनों इसके जो तरीके रहते हैं वो 4 प्रकार के तरीके होते हैं इस

के चार प्रकार के अल्पांश होते हैं जिनको हम मार्केटिंग के चार पी बोलते हैं। तो पहला पी प्रोडक्ट का होता है, इसका अर्थ है प्रोडक्ट अर्थात वस्तु। इसका अर्थ है कि आप क्या बेचने वाले हो, इसका चुनाव करना। दूसरा पी प्राइस का होता है, प्राइस अर्थात दाम। इसका अर्थ है कि आप जिस वस्तु का चुनाव, आपने जिस वस्तु का चुनाव किया है उसका दाम क्या होगा, यह बताना। तीसरा पी जो होता है वो प्लेस का होता है, प्लेस अर्थात स्थान। आपके ग्राहक उस उत्पाद को अथवा जो सामग्री आपने बनाई है या आप बेचने चाहती हैं उसे कहाँ से खरीद सकते हैं। चौथा पी जो होता है वो प्रमोशन का होता है, प्रमोशन अर्थात विज्ञापन। इसका मतलब कैसे आप अपने ग्राहकों को उत्पाद के बारे में बताएंगे, आपके जो ग्राहक हैं आपके उत्पादन के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कैसे जान सकते हैं। तो बहनों, आपका व्यापार कितना सफल होगा यह इन चार अल्पांशों पर निर्भर करता है। आप इन चारों अल्पांशों को कितना अच्छे से व्यापार में इस्तेमाल करती हैं यह आपकी बिक्री में दिखता है। जैसा कि हमने देखा कि पहला पी प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट अर्थात वस्तु। ये जानने के लिए कि आपको क्या बेचना है, आपको कोई भी उत्पाद बनाने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ग्राहकों की जरूरतें क्या हैं, उसी हिसाब से आप अपने व्यापार के लिए उत्पादनों का चुनाव करें। आप जितना ज्यादा लोगों की जरूरतें समझेंगी, अपने उत्पाद से पूरी करेंगी उनकी जरूरतें, उतने की ज्यादा गारंटी है कि वो आपसे खरीदी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे और दोबारा आपके पास खरीदी के लिए आएंगे। तो हमने देखा कि जो वस्तु रहती है उसका चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो था पी वो प्राइस का था, प्राइस अर्थात दाम। वस्तु का दाम क्या है, आपके उत्पाद की कीमत आपके व्यापार में बिक्री पर बहुत असर डालती है। अगर आपकी वस्तु सस्ती है तो वो ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की नहीं लगेगी, इससे आप कम फायदा कमा पाएंगी। और अगर प्रोडक्ट महंगा है, आपका जो सामग्री है वो महंगी है, तो ग्राहक उसे कम खरीदेंगे। इसलिए वस्तुओं के दाम उचित तरीके से चुनना जरूरी है। इसके लिए आप अपनी लागत, अपने प्रतिस्पर्धियों के दाम तथा ग्राहकों के आपके उत्पादन के लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं, इन सभी बातों का ध्यान रख सकती हैं और अपने जो सामग्री है उसके उचित दाम चुन सकती हैं। तीसरा पी जो होता है वो प्लेस का होता है, प्लेस अर्थात स्थान होता है। इसका मतलब कि आपके ग्राहक कहाँ से आपके उत्पादनों की खरीदी करेंगे। क्या आप सीधा अपने ग्राहकों को सामान बेचेंगी या फिर बीच में किसी के माध्यम से बेचेंगी। तो जो प्लेस रहता है अर्थात स्थान होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चौथा पी आता है प्रमोशन का, प्रमोशन अर्थात विज्ञापन। लोगों को कैसे आपके उत्पादनों के बारे में पता चलेगा यह सब प्रमोशन में आता है। बहनों, आपके उत्पादन को खरीदने के लिए लोगों को पहले उसे जानना जरूरी है, उसके बारे में एक सकारात्मक सोच होनी जरूरी है और उसे खरीदने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप अपने उत्पादनों का विज्ञापन कैसे करती हैं, उनका विज्ञापन, उनको प्रमोट कैसे करती हैं। तो बहनों, विज्ञापन कैसे किया जा सकता है हम यह भी जान लेते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप विज्ञापन इंटरनेट के द्वारा करें, या आम तरीका जो होता है जैसे टीवी में या जो मैगजीनें आती हैं अखबारों में और अखबारों में एक आर्टिकल के द्वारा या रेडियो द्वारा आप विज्ञापन कर सकती हैं। अभी तक हमने देखा, हमने यह जाना कि मार्केटिंग क्या होता है अर्थात विपणन क्या होता है और इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आज कृषि क्षेत्र में कृषि विपणन की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के उपाय को सरकार ने भी अपनाया है, जैसे विनियमित बाजारों की स्थापना करना, गोदामों का निर्माण करना, उपज श्रेणी निर्धारण व मानकीकरण का प्रावधान करना और ऑल इंडिया रेडियो पर कृषि फसलों की बाजार में कीमतों का दैनिक प्रसारण करना, परिवहन सुविधा में सुधार आदि, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। तो कृषि सामग्री विपणन प्रणाली के कुछ चरण भी होते हैं जिनसे आप अपने व्यापार को बेहतर बना सकती हैं। इसमें प्रणाली पहल व्यवसाय की सभी वस्तुओं यथा इनपुट आपूर्ति से उपजाना, जोड़ना, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण एवं अंत में उत्पाद का उपभोग
सभी आपसी संबंध को बल देते हैं। कृषि विपणन के कुछ मुख्य चरण भी होते हैं। पहला जो होता है चरण, वह सामग्री एकत्रित करना होता है। दूसरा परिवहन, इसमें आता है कि स्वतंत्र ट्रक मालिक क्या होगा, कौन सा होगा, ट्रक कंपनियां कौन सी होंगी, रेल, विमान आदि सब। तो तीसरा जो होता है वो छटाई एवं वर्गीकरण का होता है, मतलब सामग्री की उचित छटाई की जा रही है या नहीं, कि सामग्री अपने उचित आकार में है या नहीं, सामान उपयोग में लाने लायक है भी या नहीं, यह सब छटाई एवं वर्गीकरण में आता है। चौथा होता है पैकिंग का, कि सामग्री तथा उत्पादन को किन डब्बों में पैक किया जाए, टीन के डब्बा, कार्डबोर्ड बक्सा, फर्म थैला आदि इत्यादि, जिसमें भी आप करना चाहती हैं, यह पैकिंग में आता है। पांचवा जो होता है वह होता है वितरक का, इसका अर्थ है कि सामग्री को आप स्वयं बेचेंगे या किसी के माध्यम से बेचेंगे। तो बहनों, अभी तक हमने देखा विपणन प्रणाली के बारे में कि विपणन क्या होता है और किस प्रकार हमारे व्यापार के लिए यह लाभदायक होता है। हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार हमारा जो सामग्री है वो ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है, ग्राहकों को किन किन चीजों की आवश्यकता है यह हम कैसे पता कर सकते हैं। तो विपणन को बेहतर बनाने के लिए हम जितने प्रयास करेंगे मेरी बहनों, उतना ही बेहतर हमारा व्यापार होगा। इस बात पर मैं फिर से जोर देना चाहूंगी, विपणन जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर हमारा व्यापार होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम विपणन प्रणाली में कोई भी लापरवाही न बरतें। किसी भी व्यापार को सक्षम बनाने हेतु हमें एक चीज जानना बहुत आवश्यक है और वह है उपभोक्ताओं के व्यवहार की प्रकृति, अर्थात हमारे उपभोक्ता की जरूरतें क्या हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, यह भी व्यापार करने से पहले जान लेना आवश्यक है। व्यापार का मतलब केवल यही नहीं होता है बहनों कि हमने सामग्री का निर्माण कर दिया और हम उन्हें अपने ग्राहकों तक बेचने चले गए, इसका अर्थ केवल यह नहीं होता। व्यापार में विपणन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे जो ग्राहक हैं उनकी चाहत क्या है, वो किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, उनकी जो डिमांड है वो क्या है, यह सब जो बिंदु हैं, जो अल्पांश हैं, इन सब पे हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो बहनों, उपभोक्ता व्यापार का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन है वह मानता है कि उपभोक्ता बाजार में अभिनेता होता है। उपभोक्ता व्यवहार स्थिर नहीं होता है, यह बदलता रहता है। इसका जो व्यवहार है उपभोक्ताओं का, वह उत्पादनों की प्रकृति के आधार पर समय की अवधि में बदलाव से गुजरता है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो छोटे बच्चे रहते हैं वह रंगीन और फैंसी जूते पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वे किशोर और युवा के रूप में बड़े होते हैं वे आधुनिक जूते पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा कि व्यवहार में कितना अंतर आया। इसलिए व्यवहार, शिक्षा स्तर और विपणन कारकों में वृद्धि जैसे कई अनेक कारकों के कारण व्यवहार खरीदने में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, कई बार उपभोक्ता से उपभोक्ता में बदलता है, मतलब कभी भी सभी उपभोक्ता एक ही तरह के व्यवहार नहीं करते। कुछ उपभोक्ता खरीदी पर जाते हैं और अपने साधनों से परे खर्च करते हैं, और कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो अधिशेष धन होने के बावजूद नियमित खरीदी के लिए भी नहीं जाते हैं। कई बार उपभोक्ता उत्पाद डिजाइन, उत्पाद की कीमत, उत्पाद का प्रचार, पैकेजिंग, वितरण का स्थान इत्यादि के कारण उत्पादनों को खरीदते हैं। इसलिए उत्पाद निर्माण तथा बिक्री के समय इन अल्पांशों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बहनों, एक उपभोक्ता भिन्न खरीद उद्देश्यों के आधार पर उत्पाद खरीदने का निर्णय ले सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसकी अलग पसंद होती है और अलग तरीके से वो उत्पादनों का चयन करता है। इसलिए व्यापार के समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो अभी तक हमने देखा कि विपणन जो होता है एक शक्तिशाली यंत्र होता है व्यापार का। अगर आप विपणन अच्छे से नहीं करेंगी तो आपके द्वारा बनाई गई जो सामग्री है वो किसी मतलब की नहीं रहेगी, उसके लिए आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे और आपका व्यापार निरंतर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे

0: अनुरोध है कि आप विपणन प्रणाली को अच्छे से समझें, जानें और अच्छे से अपना विपणन का तरीका अपनाएं। आशा है आपको विपणन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।
1: अपुन ऋचा शर्मा जी का धन्यवाद देवान, क्योंकि अपुन नखा इतनी बढ़िया तरीका से उन बहुत आसान भाषा में अपुन नखा समझाया कि कृषि क्षेत्र में विपणन को काई महत्व छे, बाजार को काई महत्व छे, किना समय अपनी वस्तु वहाँ छे पहुँचनी चाहिए, कहाँ अपुन नखा को अच्छो दाम मिलेगा, ये सब बात ने अपुन ने इन वार्ता में जानी। भाई बहनों ने अमा मारा हाथ में आएगा कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। हाँ, हमारा किसान भाई बहन नखा वो पहले बता दो, आज जी छे सोयाबीन को भाव थो 4,395 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव, न अधिकतम भाव तो 6,275 रुपया, वहाँ जेको मॉडल भाव रहे 5,700 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं की बात करा तो गेहूं आज 2,100 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव से शुरू हुआ था, अधिकतम भाव थो 2,915 रुपया, न 2,501 रुपया एको मॉडल भाव रहे। चना डॉलर 6,000 न्यूनतम भाव से शुरू हुआ था, अधिकतम भाव 9,185 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से भी किया, वहाँ जो मॉडल भाव तो 7,500 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी 2,705 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव तो 6,860 रुपया अधिकतम भाव तो, न वहाँ जो मॉडल भाव रहे 5,260 रुपया प्रति क्विंटल। एक साथ मूंग की अपन देखांगा तो मूंग 7,850 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव का साथ शुरू हुई थी, वहाँ एक मॉडल भाव थो 8,290 रुपया प्रति क्विंटल, वहाँ जो मॉडल भाव भी उज रहे हो ना, अधिकतम भाव भी उज रहे हो। एक साथ तुअर का पुण देखी ले, वहाँ तुअर को भाव जी आज थो 5,405 रुपया, न अधिकतम भाव रहे 6,315 रुपया प्रति क्विंटल, ये जो मॉडल भाव थो 6,315 रुपया प्रति क्विंटल को। मिर्ची, मिर्ची में बहुत बड़ो अंतर थो, 10,080 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से न्यूनतम भाव पर बिकी थी, न वहाँ जो मॉडल भाव थो 18,390 रुपया प्रति क्विंटल, ये अधिकतम भाव रहे, न मॉडल भाव रहे 10,500 रुपया प्रति क्विंटल। बाजरा 2,110 रुपया एकज भाव से आज बिकिया, वहाँ राजमा भी आज एकज भाव 7,000 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकिया। मक्का में जरूर अंतर थो, 1,948 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव तो, 1,951 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव तो, मॉडल भाव रहो 1,948 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का अनाज मंडी का भाव। भाई बहनों ने कार्यक्रम में पुनः आगे बढ़ांगा न सुनांगा एक लोकगीत शारदा पगारे को गायल।

भाई बहनों ने अभी अपन सुनी रहा था शारदा पगारे को गायल ये निमाड़ी लोकगीत। अब हमारी बैंड की बात करें तो अपनी बैंड का ही करज कि जब हम चौका में काम करें तो सौंफ को खूब अच्छो उपयोग करज, सब्जी भाजी ने बनावना में या फिर अचार बनावना में या सोच कर कि मुखवास का लेना फकई ली खाई ली। तो देखो सौंफ में का है कि बहुत अच्छा गुण रज, पाचन में सुधार करने का गुण, गैस या एसिडिटी से राहत का गुण, वजन घटावना का गुण। क्योंकि एका में अपन देखा है कि कच की सौंफ में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहे, जब अपन खावान तब अपन नखन न कहें कि कुचा कुचा आई रह जाए में वो का में फाइबर रहे, एका साथ साथ ओका में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी रहे न एंटी ऑक्सीडेंट भी रहे। तो एका सी का ही रहे कि ये जी है जब एको सेवन करें नी तो ये एंटी ऑक्सीडेंट अपनी त्वचा पर ओको अच्छो चमक दिखाने लगी जाए न। साथ में अपन कहें कि भाई भोजन का बाद थोड़ी सी सौंफ मुंडा में राखी ली तो कभी मुख्य दुर्गंध की बात आई रही हो तो ऐसी स्थिति में ही एक अच्छी नेचुरल का अब लोग कर नहीं आजकल के माउथ फ्रेशनर का रूप में हमने कहीं खाई लियो तो सौंफ खाई लियोगा तो अच्छो भी लगेगा, मुंडा से अच्छी खुशबू भी आवेगा। एक साथ साथ अपन देखा है कि लोग कह कि भाई एक में विटामिन ई की मात्रा भी बहुत अच्छी रह है नी, जानकार लोगों की जान बतायल छे कि विटामिन ई अच्छी रह तो एकासी आँख की रोशनी न अच्छी बढ़ी जाए। साथ में यदि सौंफ में पोटेशियम छे तो अपन मानी रहा कि वही रक्तचाप को नियंत्रित करना में भी उपयोगी हो रही ने, खून साफ करी रही शरीर से जी विषाक्त तत्व छे उनका बाहर निकाल रही न। साथ में एको सेवन करना को जी तरीको छे वो हमारी बहन ने सब मालूम छे, कच्ची तरीका से सौंफ खाई रही जो सौंफ का पानी का बहुत सारा लोग लेज कि भाई रात भर ओखा सौंफ का पानी में नाखी दियो सवेरे उठी न नोखा छानी न पी लियो, बहुत सारा लोग सौंफ की चाय बनावे भी पी लेज। तो कोई भी तरीका से हो सौंफ अपना अंदर जानू चाहिए ना, गर्मी का मौसम है तो बहुत अच्छो ठंडक भी देज। तो सौंफ को सेवन जी छे हमारी बहन ना खुद भी करज ना अपना परिवार का सदस्य न का भी कराड़ी देज, कहीं ना कहीं चीज़ न में नाखी देज तो उनका पेट में भी सौंफ पोछी जाए। अब देखो घड़ी कही रही कि भाई काल का कार्यक्रम का बारे में बात कर ले, काल खेती की बात में अपन बायोगैस का बारे में जानेगा कि वो काई छे को काई उपयोग छे। संजय का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपन AI को खेती में काई महत्व छे एका बारे में जानेगा, लोग भी सुनागा ना एक भेंटवार्ता में जायद की फसल में सब्जी न फल न की खेती एका बारे में भी जानकारी लेवांगा। तो मिलांगा काल बैठांगा, अब अनुराधा का देव आज्ञा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, माफ कीजिएगा पूर्व घोषित कार्यक्रम हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। पेश ये कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कि सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। चलते हैं कार्यक्रम के आज के सफर पर। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पर आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो।

0: अपने अंदाज का अकेला था, इसलिए मैं बड़ा अकेला था।
1: कुछ साए, कुछ परछाइयां, कुछ चाहत के सजदे, कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रहीं, तरसती रहीं। चांद आसमान में जड़े सुराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वां उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

ये दिल बचकर जमाने भर से चलना चाहे है, लेकिन जब अपनी राह चलता है अकेला होने लगता है।

हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शोक में कुछ भी नहीं गया, शोक की जिंदगी गई।

यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी के सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
2: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के

0: बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है। सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो। तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
3: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक

0: में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थटेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म चंबल की कसम में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है खय्याम ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
1: KV Prasad, sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkarji rightly said, that the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas but every other areas too have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
2: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, from right from the top leadership led by the Prime Minister himself during his entire campaign and everybody else. That's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big into campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course forward. But I said, we'll have to hit the ground running without delay.
3: प्रफुल जी, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहां पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजॉरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे है वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
4: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उनको और उल्टे तरीके से देखता हूं। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें हैं उतनी टीवीके को है।
1: ट्रू दैट,
4: वन। सेकेंडली, फर्स्ट टाइम एवर, मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहां पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
3: जी।
4: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविडियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम पीएमके, एमडीएमके, ये छोटे छोटे दल वहां के देखे तो उनका हरेक का अपना 2-5% का वोट शेयर है, दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। टीवी के पक्ष में 35% वोट शेयर है द

0: पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम.
1: बिल्कुल.
0: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था. उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविड़ियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए. करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड. नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस. यू नो वर्चुअली उदयनिधि स्टालिन इज कंट्रोलिंग द फिल्म इंडस्ट्री और वो फिल्म इंडस्ट्री का रिफ्ट है विजय कमिंग फ्रॉम द सेम फील्ड. ही इज गिविंग अ न्यू होप फॉर तमिल फिल्म इंडस्ट्री. इसीलिए हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है. वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशंस उन्होंने एड्रेस किए. तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है, तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं. तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है. दे वेर लुकिंग फॉर यू नो लुकिंग एट विजय एज अ होप. वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा.
1: एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी.
0: डीएमके के खिलाफ सेंटीमेंट था वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था. विजय हैज डेफिनेटली
2: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी, एंड एज यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकम्बेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes they were looking for a change and now they have exercised their right that yes we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations? I believe
1: सुशील जी आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है. आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका कारण क्या है आपके आप पर्सपेक्टिव हमें?
3: देखिए, मैं एक चीज जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूं. आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे. उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा. और उसके बाद
1: और कमल हासन की पार्टी
3: थी लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं. और भी थे नीमम, और भी 2-4 लोग हैं नीमम जो वहां पे वो थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था. कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी. तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए और 2 साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी. अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है उस फैंस क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए. तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया. उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी. तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है. और सबसे बड़ा मानता हूं कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी. करुणानिधि खुद, एमजी रामचंद्र, जयललिता सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए. तो वो एक इम्पोर्टेंट कनेक्ट वापस जुड़ा है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में. दूसरा ये एक युवा होने के कारण नया उम्मीद लेके लोग उनके साथ आए हैं. और तमिलनाडु में जितनी राजनीति मैंने कई सालों से देखी, ये जरूर था उनके पास कि एक विकल्प जरूर देते थे, कोई तीसरा विकल्प दोनों द्रविड़ियन पार्टी से अलग.
1: चेन्नई से सुशील तिवारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं. सुशील जी, बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
4: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए

0: से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स जो पेरियार आंदोलन था वहां से लेकर के राजनीति जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो उठाते रहते थे, और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बन करके आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया। अगली पीढ़ी में वो जो पर्दे पर वो जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया। और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाए। वो पीढ़ी भी पुरानी थी, नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया। तो एक तो ये रहा, और दूसरा हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो
1: सिंबल भी
0: था वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए।
1: तो जोश बहुत है
0: पार्टी वर्कर्स के पास। तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए। और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को।
1: सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं। टीवी के 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो बीजेपी और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है। दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
2: देखिए, जो 2016-17 के बाद बीजेपी ने वहां पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहां की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया बीजेपी में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए बीजेपी ने अलायंस किया। ये बीजेपी दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी, पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहां पे जीत मिली है। यहां पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और बीजेपी और उसके अलाइज इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी ऑन इट्स ओन हैज अ 13% वोट शेयर हियर। तो वहां पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वो ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है, और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और बीजेपी, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहां पे मेजोरिटी हासिल की है। AIADMK उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया है। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो DMK और कांग्रेस इनका मिलाकर लगभग 30% तक का वोट शेयर है। कांग्रेस 17% पर है, DMK 13% पर है, लेकिन फिर भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अंदरूनी केमिस्ट्री नहीं है।
3: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी,
2: ये समझना बहुत जरूरी है पुदुचेरी के मामले।
3: वेल, लेट्स understand more as to what are the situations in Puducherry, we go over live to our correspondent in Puducherry, the Akashwani correspondent Bibin S. Nath. Bibin ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How do you see this victory of the BJP of national issues being considered by the people, the national leaders being considered by regional people or regional areas, and them giving a chance to the BJP once again in Puducherry? How the best Puducherry vision of 2021 has borne fruit?
4: Thank you. Good evening. In my perspective, actually, at the heart of the victory in Puducherry, rather than the double engine government, I can say it is once again the central figure of Chief Minister N. Rengasamy. So his performance is central to this, to understand this mandate, because we know that he has led the India Alliance with such a grace. And on the other side, if you see in the secular progressive alliance, there are so many problems in the seat sharing arrangements. But when you take the India Alliance, Rengasamy, the way Rengasamy handled all the things, I can say that the Rengasamy factor actually combined closely with the alliance arithmetic. The All India NL Congress remains the backbone of this alliance. They have actually been 12 seats out of the 16 seats they have contested. So we can say this chemistry between Rengasamy and the All India NL Congress and the Bharatiya Janata Party is that which paved the way for this grand victory in Puducherry against the state. And that one factor you can see is the delivery versus promise. Because India's campaign leaned heavily on the development project, welfare scheme, and the visible government outcome. But in contrast, the opposition focused on larger structural issues like a state should. But it did not appear to resonate as strongly at the bottom level. The people in Puducherry have this clear intention in mind that they have a union territory. So, getting the welfare measures and development schemes from the center, they want the same government at the center and the union territory level. So that is a fact that actually worked for NDA alliance in Puducherry. That's what I'm thinking.
1: थैंक यू मिस्टर नाथ फॉर योर पर्सपेक्टिव. एंड मिस्टर प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे, असम की तरफ अगर हम नजर डालें तो वहां पर तीसरी बार लगातार भाजपा और एनडीए की सरकार आई है. इनफैक्ट 65 है वहां का जो मैजिक फिगर था, और 102 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिल चुकी हैं. कैसे देखते हैं आप ये जो तीसरी बार वहां का आना है, ये भरोसा जो जताया है इलेक्टोरेट ने, इसके पीछे क्या कारण मान रहे
5: हैं? सबसे बड़ा तो यही लगता है जी, जो वहां की सरकार है उसने काम किया जो जनता को पसंद आया. वरना उतना ही साल तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, बंगाल ने 15 साल उनको एंटी इनकम्बेंसी घेर गया, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी कहिए.
1: तो इसका कारण है जो विकास
5: हाँ, वहां पे जो खबर निकल के आई वो यही था कि जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं, जो तमाम सारे सीएम ने कार्यक्रम चलाए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसकी लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसमें काफी हद तक वो खरे उतरे.
3: KVC, my question to you would be that is this the time when the people in various states or union territories are considering the fact that having a double engine government, एक डबल इंजन की सरकार जिसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों भाजपा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोहराते रहते हैं इस बात को. How important is the fact that people are now realizing that the same party in the center, the same party in the state could help them more to prosper, to bring peace, to having free and fair elections, and for a vision of one India which is growing and making amends to the lives and standards of living of the people?
5: So I can argue it both ways.
3: All right.
5: Okay. But to be fair, the first way would be, if you look at the larger picture, definitely this has an impact on people when they see if there is a government of the center and a similar persuasion in the state, there will be less friction, political friction among the parties, and the possibility of, because we seen in Bengal earlier in Delhi, the Aam Aadmi Party did not roll out the central government schemes or something else. But if you look at the flip side, which is what I was saying, I argue it both ways, is if the Prime Minister is always saying that the BJP government, BJP at the center does not discriminate with states.
3: True.
5: So we send them funds. So it, there is a dichotomy, if you notice it.
3: True that.
5: It contradicts, you know, so that's why I said I can, one can argue it both ways as a political observer.
3: Absolutely.
5: But what crosses the people's mind is something different.

0: when they go to vote, they have a lot of things in mind, and the uppermost thing in the mind, which I believe in all state elections, is what will the government do for me?
1: Praful ji, how important is the fact that on one hand the Prime Minister says that we do not discriminate, but on the other hand we see states not implementing central policies, and even the Prime Minister in his victory speech from the BJP headquarters saying that the first decision of the West Bengal government would be to implement Ayushman Bharat.
2: State government for political reasons many a times, you know, you are talking about the double engine ki sarkar in states like Tamil Nadu or Kerala, or earlier even in the Northeast, anti-Delhi sentiments were used to galvanize the regional sentiments.
1: Ji.
2: Hemanta Biswa Sarma is doing it the other way around. He is using Assamese identity to strengthen the relationship with
1: Delhi.
2: And
1: I would say unapologetically.
2: One is his stand on illegal migration issue, because Assamese identity was a very, very sentimental issue since 2000.
1: Absolutely.
2: Actually from AGP's agitation, ASU agitation, then AGP. The way, again, many times we do not understand, 102 is a huge number in 126 assembly. But again, I will insist on chemistry. AGP, Bodoland Party and BJP together has, 102 seats. And again, BJP just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
1: True that.
2: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
3: In fact, प्रधानमंत्री ने अपने उसमें कहा संबोधन में कि अब जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं वो भी हमारे लिए वोट करें, तो जो अभी तक जो भी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स थे जो प्रो बीजेपी नहीं थे, जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कल्चरल आइडेंटिटी या रीजनल, जैसा बंगाल में भी हमने देखा, तो वो भी अब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है।
2: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खासकर के बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खासकर के टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही, जिसका सेंटिमेंटल पहली बार उनको लैंड राइट मिला है। आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है। That has been the game changer. Unfortunately, Congress or Trinamool Congress didn't pay attention to. वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो एक मैसेज है। और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट।
3: ओके,
2: तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर। तो असम में और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है।
1: एब्सोल्युटली।
3: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहां पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है। सो इसको आप इस चेंज को कैसे देखते हैं, क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते?
0: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी या वो उसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज है जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में, जैसे तो ऑल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया, क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें।
1: एब्सोल्युटली। बट केवी सर, एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, यू सेड दैट यू हैव बीन कवरिंग इलेक्शंस।

0: probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed, and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
1: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहां पर अलायंस बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की नेगोशिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए?
2: देखिए, टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा, और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी. विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम. वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूं. तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस. अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के है. एक, वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया, ये पक्का है. लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में. बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो. लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर.
1: और प्रफुल्ल जी, पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए. भाजपा ने चार सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को दो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली है. इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
2: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार की सीट है, हाईएस्ट मार्जिन से जीती है बारामती की. तो अजित पवार के निधन के बाद वो सीट वैकेंट हुई थी, इसलिए वहां पे बायपोल हुआ है. मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है. नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहां की स्थानीय पार्टियों को हराकर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है.
3: Views on the victories of the by-elections so far, and how does it?
0: Well, normally we see by-elections, the government of the day gets to carry the by-elections.
3: Mm-hmm.
0: So if you look at the last in Karnataka, BJP has, Congress has. In Gujarat, BJP. And of course, as
3: Maharashtra again, BJP.
0: Maharashtra,
3: yes.
0: But Maharashtra there was less of a contest because there was more out of sentiments. People had
3: absolutely
0: not contested that seat. That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections by polls usually go with the government of the day is more or less in place.
1: समय समाप्त हो रहा है, सो अब हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे. प्रफुल्ल जी, प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और आपने जो आज जनादेश आया है उसका विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए किया.
0: धन्यवाद.
1: और अब मेरी तरफ से और मेरे को एंकर वैभव श्रीवास्तव की तरफ से आपको नमस्कार. जनादेश 2026 की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं.
3: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी.
4: जनादेश 2026.
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

कार्यक्रम मनभावन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म मेरा नाम जोकर से। आवाज है मन्नाडे की, बोल नीरज के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, चापाखेड़ा तहसील खाचरोद से प्रेमशंकर शर्मा, पूजा, राधेश्याम, कुमकुम, मनोरमा, रामगोपाल, लक्की, विवेक और राधा प्रजापत, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हिप्पी, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार, बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर, राज, आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका और अंजलि, श्वेता वर्मा, रिधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला और मंगेश बोराखड़े, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश, दत्रंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सदस्य, अमरावती से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, असमा, शोएब, मुस्तबा, रऊफ और शाहिद, अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, मोनू हरदे और शैलेंद्र राय, चांदा मेटा छिंदवाड़ा से सादिया खान, जारा, आलिया, अलीशा, ज्योति और उनकी सखियां, नानखेड़ वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चेताली चुमले और प्रीति चांदड़े। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत मन्नाडे की आवाज़ में।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

धर्म करम फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश भेजिए कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। धाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे।

दीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे ने, लाबरा भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार ने, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले ने, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने, कोल्हापुर से तुषार कुर्णे, प्रासिक कामले, एकता कामले, मेघना कुर्णे, उत्कर्ष कामले, अरुण यलगुड़कर, अतुल गौतमी, धमदीना, अरुण काले, एडी कामले और इनके परिवार के सदस्यों ने, छपड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, हाथगांव से बिट्टू और श्यामराव पणघ ने, अमरावती से चंदूजी हातोले, सातारा से सतीश वाघमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमण वाघमारे, कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विश्वनाथ साहू, गुलाबदास मानुपुरी और भागवत वर्मा ने, नेवासा से बंडू पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे, हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभी, मंजूषा, गौतम इंगोले, माटेगांव पूर्णा से शेषराव बोबड़े, सोनाजी, सीताराम, वैष्णवी, सुवर्णा, वेणुताई, शुभम बोबड़े, हिंगोली से ही सुनील जबड़े और आरडी इंगोले। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म धर्म करम का गीत मुकेश की आवाज़ में।

श्री 420। इस फिल्म का गीत सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है मोरटा का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। सोमानी नगर इंदौर से बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, टोनी, निधि और उनके परिवार के सदस्यों ने। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे ने। दरियापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले और नवदीप येले ने। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद ने। गांव भड़बुंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवी, रीना मालवी, सुषमा, दुर्गा, परी, सुषमा कपूर और मधुबाला ने। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललित नारायण खर्चे ने। दुबे के बगीचे इंदौर से नितिन रायकवार, अमृता रायकवार, कृष्णवीर, सरिता, महेश, अहिल्याबाई रायकवार और उनके परिवार के सदस्यों ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म चोरी चोरी का गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत को सुनना चाहते हैं धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, सायमा, हसनैन और खुशी। लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक, ब्रूनो, उषा सोरना, स्वाति और मालती चौधरी। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। शिवाजी चौक राजीव

अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, आदि और युवराज, सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो, मोहम्मद आरिश, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, रेहान और माहिरा, द्वारकापुरी इंदौर से राजेन शर्मा, भावना शर्मा, जयदीप, अर्पिता, हिमांशु, ओशिन, अद्विका, निशिता और शर्मा परिवार, जामरूल से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानंद, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी जोशी, स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कवचाले, सभिया, सुषमा, सीमा, स्मिता, पूजा और उनके साथी, ग्राम गुरावा हरसूद से नंदलाल राजपूत, राजू मनका भाई और नंदनी भाई राजपूत, बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और भैया तड़वी।

इस गीत के साथ ही आज का मनभावन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनभावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है उस्ताद शराफत हुसैन खान का गाया राग मलूहा केदार।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शराफत हुसैन खां का गाया राग मलूहा केदार। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट

0: से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरीडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर एमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after special intensive revision SIR of electoral roll. With a win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clenched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front, AIUDF, clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Himanta Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Nyog. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 105 seats and is leading on 2 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 229 results have been declared, while trends are available from other 5 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munnetra Karagam, DMK, led by Chief Minister N.K. Stalin, has won 28 seats and is leading on 2 seats, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Karagam, AIADMK, has won 46 seats and is leading at 1 seat. PMK has won 2 seats, Indian National Congress, INC, has won 5 seats, BJP, DMDK and AMMKMNKZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi this evening, Mr. Modi said today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: एंड विद दैट वी एंड दिस न्यूज बुलेटिन।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर इसी मीटर पर फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। जय हिंद।